हर दिन जियरा रह न सके जो बालक खीर अधारी, अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी। मन रे हर कीरत तर तारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ। सनक सनंदन नारद मुन सेवे, अन दिन जपत रहे।

तब आ गया हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी। गुजरी महला पंजवा, कर चौथा इको ओंकार सतगुर प्रसाद। नाथ नर हर दीन बंदव, पतित पावन देव, पै त्रास नास कृपाल गुण निधि।

मदमोह दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिदमंत छेद अहं बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त

एहो जगत ममता मुआ जीवन की बिद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसे गुरमुख सह समाए। महला तीजा, अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कब है न जागे माया मो प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवें करे तिस बिन अवर न कोई। श्लोक महला तीजा, साहिब मेरा सदा है दिसे शब्द कमाए, ओ औहाणी कदे नाहे ना आवे ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है जम में ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने, अपना अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा, सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर शब्द सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायुन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा, सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर कै पाणे।

पौड़ी। माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरिये तारी। अन दिन पगति रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हो मैं छड़ विकारी। हर हर नाम त्याय है हर

होए सो जाए। हो मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुर मिले हो मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाइए दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सबदे हो मैं खोइए हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुर स्यो चित न लायो नाम न वस्यो मन आए। त्रिग इवे आ जीविया क्या जुग मैं पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुर स्यो चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यो हर नाम रहे लिव लाए। नानक सतगुर सो तन सौंपिया जे जी मेरिया समाए। रंग तिसे को अगला वन्नी चढ़े चढ़ाए।

पाई जल मोई कंत न लायो पाओ नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता उपाय किते न पाई हर कर्म विदाता गुर शब्दी हर मन वसे हर सहजे जाता अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता।

छड़ जाए, केसनो कूड़ बोल के खवा लिए, जे चल दिया नाल न जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हों ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जी रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन, होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए सेती रव रहा, जीए ना ले जाए। पूरे गुरते पाईए मन मुख पले न पाए, तन वापारी नानका जिना नाम तन खटियाए। पौड़ी, मेरा साहिब अत वड्डा सच गैर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई है नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसै पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा, त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मन मुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत कोई सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा, मन मुख ऊदा कौल है ना तिस भगत ना नाओ, शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ, ओए तरम रलाए ना रलन ओना अंदर कूड़ सुहाओ। नानक करते बनत बनाई मन मुख कूड़ बोल बोल डुबे, गुरमुख तरे जप हर नाओ। पौड़ी,

हर सुख दाता मन वसै। हों मैं जाय गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता। तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता। सबना दाता एक है इको हर मिता, श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए, जे अंदिन हर लिवलाए। सतगुर पुछे

समाए। नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई, जे अंदिन हर नाम त्याय महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बुलाए। कपट कीते हर पुरख न पीजे, नित वेखे सुने सुवाए। दूजे पाए जाए जग प्रबोधे, बिख माया मोह सुवाए। इत कमाणे सदा दुख पावे, जम्मे मरे फिर आवे जाए। सहसा मूल ना चुकई, विच विष्टा पचे पचाए। जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, तिस गुर की सिख सुनाए। हर नाम त्यावे हर नामो गावे, हर नामो अंत छड़ाए पौड़ी। जिन्ना हुक्म मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार। हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन्हो मैं विचो मार। नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उरधार। श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे, सच नाम चित लाया। गुरमुख अंदिन रहे रंग राता, हर का नाम मन पाया। गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले, गुरमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनो कर्म होवे तुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा। सत गुर जिना

पे रस होगी। आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे हर करे सो होगी, हर गुरुमुख नाम ते आई है लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह आप अखाएदा।

आई वड पागिया वाहो वाहो मोह कढाई वाहो वाहो करें सही जन सोने तिन को प्रजा पूजने आई वाहो वाहो कर्म प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर कूड़ कुसत अभिमानी परम पूले नदर ना आवनी मनमुख अंध अज्ञानी उपाय किते ना लबनी कर पेख थके पेखवानी गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत

कौ जात ना जाए सी मन मुख दुख खाता रसना हर रस ना चखियो फीका बोलाता जिना गुरमुख अमृत चाखिया से जन तृप्ताता। श्लोक महला तीजा। वाह वाह तिसनो आखिए जे सच्चा गहर गंभीर वाह वाह तिसनो आखिए जे गुणदाता मत तीर

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा, वाह वाह गुरुमुख सदा करें, मनमुख मरे बिख खाए, ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए, गुरुमुख अमृत पीवना वाह वाह करें लिब लाए, नानक वाह वाह करें से जन निर्मले, त्रिभुवन सोजी पाए पौड़ी, हर कै पाणे गुरु मिले सेवा भगत बनी जाय, हर कै पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जाय, हर कै पाणे सुख पाई हर लाहा नित ली जाय, हर कै तख्त बहालिए।

आए वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे हों मैं विच्चों जाए वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहार है जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है समाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमती हर रस चाखिया से पुन पराणी। बिन गुर किने न पायो पच मोए अजानी। श्लोक महला तीजा। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोए।

पाए खुआए, जम्मण मरण न चुकई होमे विच दुख पाए। जिना सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना होवई ना ओए दुख सहाए। नानक गुरुमुख उबरे।

चार टाडी दर कर पाए सी सच रखे उर तार टाडी का महल अगला हर कहना है प्यार टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार श्लोक महला तीजा गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना जिस सतगुर मिले तिस तौ पवे सा कुलवंती नार सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा की ती करतार ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार पै पय मल कटिए निर्मल हो वै शरीर अंतर प्रगास मत उत्तम हो वै हर जप गुणी गहीर पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार कैथे सुख वड्याईयां दर

तैया तिथे सोग विजोग ना व्यापये अस्थिर जगतिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आप परवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया अमृत हर का नाव सदा ते आया संत जना के संग दुख मिटाया नानक पय अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा। खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णो महल पगती कर सरे सज्जन पाहुण्यो बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा। मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याए जी जंत सब तेरिया तू रहा समाए जो दास तेरे की निंदा करे तिस्मार पचाए चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा। आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए नानक आशा पूरिया सच्चे स्यों चित लाए। महला तीजा। आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए पौड़ी आपे जग तो पायुन कर पूरा थाट आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट आपे सागर आपे

वाह जप गुरु नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुमना गुरु नाओ सतगुर से तीरतिया दरगे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वत दे जग में उत्तम काडिये विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन साप जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माए बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किच तेरी तारी है सबसे दे दातार जेत उपारी है इकत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत मित लकी ना जाए हौ तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर मह पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा किती बहन बहने मुच बजाएन वज नानक सच्चे नाम बिन किसे न रहिया लज। पौड़ी तुद त्यायन बेद कते बां सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना शंकर विष्ण अवतार हर जस मुखपणा पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार कटकट मौलिए।

पंजवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याय सदा हर सो लगा सत गुर सेव जा को करम तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लै हिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई।

जब त्या पहुंच न सके कोई तेरी टेक जन। गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन। गुर पै सिफ्त पंडार कर्मी पाये। सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना पाये। रखे आप दयाल कर दासा अपने। हर हर हर हर नाम जीवा सुन सुने। श्लोक महला पंजवां।

तेंदे सिमरन हब किछ लद्दम बिखम ना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट न सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभ चित आए पूरन होवे आस नाए मन बसाए कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए तिन पाए सभी थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौसे चरणी मैडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुरमत बंजे मित्र असाडड़े से हौ टूडे दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया मन की कटिए मैल सात संग उठिया जन्म मरण पौ कटिए जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यो लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जहां आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग ना की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी। सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोले त्या हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना मंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी। तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हाथ निधान पावे तिस दे जिसनो होए दयाल हर नाम से ले अगम अगोचर बेअंत अंत न पाये जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। करछिया फिरन सुआव ना जान सुनिया से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तैसे दिती वाड़ नानक खेत ना छिजई। पौड़ी। आरा दियो सच्चा सोए सब किछ जिस पास दोहा सिरिया खसम आप खिन में करे रास त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो पौ सरनाई पज सुखी हो सुख लहो कर्म कर्म तत ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन न लगे कोय जिसनु आप दयाल तिस मन उठिया पायन सब निधान साहिब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लदम लबन हार कर्म करन दो मापिरी इको सिरजन हार नानक बिया ना पसी है। महला पंजवा। पापड़िया पछाड़ बाण सचावा सन कै गुर मंत्रड़ा चितार नानक दुख न थी वही। पौड़ी। वाह वाह सिरजन हार पायन ठाड आप जी जंत मेरवान तिसनो सदा जाप दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियन अपनी रख गरीब निवाज थाप
आपे लयन छाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख त्राप वड्डी हूँ वड्डा अपार खसम जिस लेप न पुन पाप। श्लोक महला पंजवा। जाको पै कृपाल प्रभ हर हर से जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटत साध संगात। महला पंजवा। राम रमो बड़ पागी हो जल थल मही अल सोए नानक नाम अराध्य है बिघन न लागे कोए पौड़ी। पगता का बोलिया परवान है दरगे पवे थाए पगता तेरी टेक रते सच नाए जिसनो होए कृपाल तिसका दुख जाए। पगत तेरे दयाल ओ ना मेहर पाए दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए। पगता एहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको इक त्याए पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। श्लोक महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अंदिन बिलपते ज्यो सुन्जै कर काओ। महला पंजवा। प्री मिलावा जाथी है साई सुहावी रुत कड़ी मोहत न विसरै नानक रवि है नित पौड़ी। सूर वीर वरी आम किने न होड़ी है फौज पानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी औ दूत देन चमोड़ी है जिन जिन लैन रलाए एहो ए ना लोड़ी है त्रै गुण इन कै वस किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपुरा आराध विखम दल फोड़ी है हौ तिस अगे दिन रात रहा कर जोड़ी है। श्लोक महला पंजवा। किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ। महला पंजवा। नानक सतगुर पेटिया पूरी हो वै जुगत हसंदिया खेलंदिया पैनंदिया खावंदिया विचे हो वै मुक्त पौड़ी। सो सतगुर तन तन जिन परम गर तोड़िया सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यो जोड़िया नाम निधान अखुट गुर दे दारुओ महारोग विकराल तिने बिदारुओ पाया नाम निधान बहुत खजानिया जिता जन्म अपार आप पछानिया महिमा कही न जाए गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। श्लोक महला पंजवा। उद्यम करेंदिया जियो तू कमाउंदिया सुख पुंच त्याइंदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डर पिए जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए आए चित निहाल साहिब बेसुमार तिसनो पोहे कवन जिस वाल निरंकार सब किछ तिस कै वस ना कोई बारा सो पगता मन बुठा सच समाहरा तेरे दास ते आयन तुद तू रखन वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार राख लियो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा। खांदिया खांदिया मोह कटा पैनंदिया सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीविया जिन सच ना लगो रंग पौड़ी। ज्यो ज्यो तेरा हुक्म त्यों त्यों होना जय जय रखे आप तह जाए खड़ोवना नाम तेरे कै रंग दुर्मत तोवना जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना जो तेरे रंग रते से जोन ना जोवना अंतर बाहर इक नैन अलोवना जिनी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। श्लोक महला पंजवा। जीवन दिया ना चेत्यो मुआ रलंदड़ो खाक नानक दुनिया संग गुदारिया साकत मूड नपाक। महला पंजवा। जीवन दिया हर चेत्या मरन दिया हर रंग जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी। आप जुगादी आप रखन वालिया सच नाम करतार सच पसारिया ऊना कही ना होए कट्टे कट सारिया
मेहरवान समरथ आपे ही कालिया, जिन मन उठा आप से सदा सुखा लिया, आपे रचन रचाए आपे ही पालिया, सब किस आपे आप बेअंत अपारिया, गुर पूरे की टेक नानक समालिया। श्लोक महला पंजवा। आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया, सतगुरु दिता हर नाम अमृत चखिया, सादा संग अपार अंदिन हर गुण रवे, पाए मनोरथ सब जोनी न पवे, सब किच करते हथ कारण जो करे, नानक मंगे दान संता तूर तरे। महला पंजवा। तिसनो मन वसाए जिन उपाया, जिन जनते आया कसम तिन सुख पाया, सफल जन्म परवान गुरुमुख आया, हुक्मे बुझ निहाल खसम फुरमाया, जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया, जो जो दिता खसम सोई सुख पाया, नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित, जिसे पुलाए आप मर मर जमे नित। पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिन टिकन न दिते, प्रभ दास का दुख ना खब सके, हर जोनी जुते मत्थे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते, दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते, कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते। श्लोक महला पंजवा।

महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ, नानक अनदिन बिलपते ज्यों सुंजे कर काव पौड़ी। सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया, इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया। पाया नाम निधान जिसनो पालदा, जोत मिली संग जोत रहया कालदा। सुख सहज आनंद उठे तित कर, आवन जान रहे जन्म ना तहां मर।

मुख तब कैसे गुन गई है। ऊठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगई है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महा प्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरियो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत ते लक के कप ज्यो।

मुसमुसरो है कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर रहाओ। जब लग ताजा बाहो बेही, तब लग बिसरे राम स्नेही। ओछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लेओ मैं लाहा। कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। गुजरी श्री नाम देव जी के पदे कर पहला इको अंकार। सतगुरु प्रसाद जो राज दे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई। सत

मले ना लाछे पार मलो, पर मलियो बैठो री आई, आवत किने ना पेख्यो, कमने जाने री बाई, कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई, रहाओ जो आकाश है पंखियलो खोज निरख्यो ना जाई, जो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई, जो आकाश है कड़ुअलो मृग तृष्णा परया, नामे चे स्वामी बीठलो जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे करती जा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। दूध त बछरे थनो बिटारियो, फूल पवर जल मीन बिगारियो, माई गोविंद पूजा कहा ले चरावो, अवर ना फूल अनूप ना पावो, रहाओ मैलागर बेरे है पयंगा, बिख अमृत बसे इक संगा, तूप दीप नई बेदे बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा।

अंतरमल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी।

बेसवा जोन वल वल अवतर है। अंत काल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सूकर जोन वल वल अवतर है। अंत काल जो मंदर सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे प्रेत जोन वल वल

सतगुरु प्रसाद। परमाद पुरुष मनोपिमं सत आद पावरतं परमद पुतं परकृत परं जग चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नादनोत जसमरणेन जन्म जराद मरण पयं रहाओ इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्त सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्मिदं लोभाद दृष्ट परगृहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर भगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

महला चौथा कर पहला। सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे, जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख पास सबागे।

सुंदर कहो मिले कित गली, हर को संत बताओ मार्गी, हम पीछे लाज चली रहो, प्रिय के वचन सुखा में ही रे, ये चाल बनी है पली, लकड़ी मदरी ठाकुर पाई, ओ सुंदर हर कुल मिली।

अरे जो आओ शरण ठाकुर प्रभ तुमरी किस राखो कृपा थार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार देव गंधारी हर गुण गावे हो किस बलिहारी देख देख जीवा साध गुर दर्शन जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी हम क्यों कर मिले जुठारी हमरे जिए होर मुख होर हो तो है हम कर्म ही पूर्यारी हमरी मुदर नाम हर स्वामी रुद अंतर दुष्ट दुष्टारी जो पावे क्यों राखो स्वामी जन नाम शरण तुम्हारी देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नट्टी जो बेसुआ के कर पूत जमत है किस नाम परयो है प्रकटी रहाओ जिनका हृदय नाहि हर स्वामी ते बिगड़ रूप बिनरक्ती जो निगुरा बहु बाता जाने ओह हर दरगे है प्रस्ती जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिना साध जना पग चकती नानक पतित पवित मिल संगत गुर सतगुर पाछे चुकती छक्का पहला देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद माई गुर चरणी चितलाये प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे सदा सदा हर त्याये रहाओ अंतर एको बार एको सब में एक समाय है काट अवघट गविया सब खाई हर पूरन ब्रह्म दिखाई है पुस्तक करें सेवक मुन के तेरा अंत ना कतहू पाये सुख दाते दुख पंजन स्वामी जन नाम सद बल जाये देव गंधारी माई होनहार सो होई है राज रहो रचना प्रभ अपनी कहां लाभ कहां खोई है रहो कै फूले आनंद बिखे सोग कब हसनो कब रोई है कब नू मैल परे अभिमानी कब साधु संग तोई है कोई न मेटे प्रभ का किया दूसर नाही अलोई है कहो नानक किस गुर बलिहारी जिन पर साग सुख सोई है देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत मेर ते तजो अभिमाना शरण स्वामी की परत रहाओ जो जो कहे सोई पल मानो नाही ना का बोल करत निमुख न बिसरो हिये मोरे ते बिसरत जाई हों मरत सुखदाई पूरन प्रभ करता।

पूरे मनोरथ साध संग तद लभूं देव गंधारी। मन जो अपने प्रभ पावो नीचो नीच, नीच अपनाना होए गरीब बुलावो रहाओ। अंत अडंबर माया के बिरते तासो प्रीत कटावो, जो अपनो स्वामी सुख माने ताम है शोभा पावो। दासन दास रे दासन की जन की टहल कमावो, सर्व सुख बढ़ियाई नानक जीवो मुखो बुलावो। देव गंधारी प्रभ जी तो प्रसाद प्रम डार्यो, तुमरी कृपा ते सबको अपना मन में यह विचार्यो रहाओ। कोट पराध मिटे तेरी सेवा, दर्शन दुख उतार्यो, नाम जपत महासुख पायो, चिंता रोग विदार्यो। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिसार्यो, माया बंद काटे कृपा निध नाम आप उधार्यो। देव गंधारी मन सगल स्यान रही, कर्म कराम हार स्वामी नाम कोट गही रहाओ। आप मेक पै शरणाई इन मत साधु कही, प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा नहीं। जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी अही, खिन में खाप उठापन हारे कुदरत की मना पही। देव गंधारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते, गुरु प्रसाद पाहुं जाते रहा।

होनी तरम तरम किछ उपजी ना आयो नहीं उपजी निर्मल करनी छार सियानक संजम नानक लागो गुर की चरणी देव गंदारी महला पंजवा हर राम नाम जप लाहा गत पावे सुख सहज आनंदा काटे जम के पाहा रहा खोजत खोजत खोज विचारो हर संत जना पह आहा तिना प्राप्त एव निधाना जिनके कर्म लिखा से बड़ पागी से पतवंते से ही पूरे साहा सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक जिन हर हर नाम विसाहा देव नारी महला पंजवा मन कह अंकार अफारा दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर जो दिशा सोचारा रहा।

अंध गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा तरह करावन हार समरथा क्या नानक जंत विचारा देव गंधारी महला पंजा सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरत आए गाय गुण गोविंद दिन रैन सांझ सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपे रे करी न मोहत न चसा विलंब हो काल नित हेरे अंध बिलास

कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल बिसारे। देव नदारी महला पंजवा। हर जप सेवक पार उतारियो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारियो रहाओ। साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारियो। प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया

ऊंचा आन न संसर को लागे, टूट रहे हम ऊंचा रहाओ, बहु व्यंत अत बड़ो बारो, खा नहीं अगूचा, तोल न तुलिय मोल न मुलिय, कत पाई है मन रूचा, खोज असंख्या अनित पंखा, बिन गुर नहीं पहुंचा, कहो नानक कृपा करी ठाकुर, मिल साधु रस पूंचा देव। गंधारी महला पंजवा।

अगम अगम्मा कवन महमा मन जीवे सुन सो चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे शेर को गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान रहाओ काहे परमत हो तुम प्रमोद।

देवगंधारी महला पंजवा जानी न जाई ताकी गात रहाओ कह के थारो हो कर कतराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अन कोही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथे है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभु मेरा कट कट अंतर सर्व मेरा ताकि शरण आसर प्रभु नानक जाका अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे साक्ष्यों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे।

जो चीत अंधकार संगी नह को ए अचरज है रीत। मन मूरख अजहू ने संगत सिख गए हारियो नीत। नानक पौजल पार परे जो गावे प्रभु के गीत। इको अंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल अमृत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद राग विहागड़ा चौक दे।

मन सिंधियाला फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत उठदा मेरी जिंदड़ी है मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी है मन सुनिए हर लिव लाए राम। चिरी विचुना हर प्रभ पाया गल मिलिया सहज सुपाए राम। जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़ी है अनहत शब्द बजाए।

कोई हर सब आन मिलावे राम। हाँ मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी, हर सब की हर कथा सुनावे राम। गुरुमुख सदा आराध हर मेरी जिंदगी, मन सिंदेरा फल पावे राम। नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी, वड पागी नाम ते आवे राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी, गुरमत नाम प्रगासे राम। हाँ हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी, जो जल बिन कमल।

राज विहागड़ा महला चौथा। अमृत हर नाम है मेरी जिंदगी, अमृत गुरमत पाए राम। हो में माया दिखे मेरी जिंदगी, हर अमृत दिख ले जाए राम। मन सुखा हया होया मेरी जिंदगी, हर हर नाम से आए राम। हर काज बड़े लिख पाया मेरी जिंदगी, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन भेदिया मेरी जिंदगी, जो बालक लग दुख खीरे राम। हर दिन सांस ना

जय नाम घर में लाया मेरी जिंदड़ी करवा जी शब्द कनेरे राम। मन हो मैं विचड़े मेरी जिंदड़ी बिग बांधे हो मैं जाले राम। जो पंखी कपो

ये गुर सतगुर वीर लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जप हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वड पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगत निस्तारे राम जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंतर

जिन हर हर नाम आधारो राम, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़ी ए, बिख औजल तारन हारो राम, जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़ी ए, तिन संत जना जयकारो राम, नाम तुहार।

तर्क पाताल आकाश है मेरी जिंदगी ये सब हर हर नाम से आवे राम पौन पानी बैसंतरो मेरी जिंदगी ये नित हर हर हर जस गावे राम वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदगी ये मुख हर हर नाम से

जिन्नी एक मानू एक आराध्या मेरी जिंदड़ी है तिना नाही किसे दी किछ कदाराम गुर सेविया हर महल पाया मेरी जिंदड़ी है चक मारन सब निंदक कंडाराम जन नानक नाम से आया मेरी जिंदड़ी है तुर मस्तक हर लिख छाराम बिहागड़ा महला चौथा सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ तू जाने जो जिए कमाए राम हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदगी है सब वेखे मन मुकराए राम मन मुखानो हर

ये पार ब्रह्म प्रभु दाता राम ताका अंत ना पाये मेरी जिंदड़ी पूरन पुरुष विधाता राम सर्व जिया।

कर जो हो संत इकत्र होए मेरे लाल जियो। अविनाशी पुरुष पूजे हाराम, बहुविध पूजा खोजी है मेरे लाल जियो। ए मन तन सब अर्पे हाराम, मन तन तन सब प्रभु केरा। क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी। सो प्रभु अंक समावे पाग मस्तक होए जिसके, तिस गुर नाल सुनेहा। जन कहे नानक मिल साध संगत, हर हर नाम पूजे हा। देह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम। हर मंदर हर जियो साजिया।

जन कहे नानक सतगुर मिलाया हर पाए अड़ा कर आए। राज बिहागरा महला पंजवा अत प्रीतम मन मोहना कट सोहना प्राण अधारा राम सुंदर शोभा लाल गोप।

खान पान सिगार बिरते हर कंत बिन क्यों जीए। आसा प्यासी रहन दुनियर रह न सकिए इक तिले, नानक पयम पे संत दासी तो प्रसाद मेरा फिर मिले। सेज एक प्रियो संग दर्श ना पाए राम, आवदन मोहे अनेक कत महल बुलाये राम। निर्गुण निमानी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निदे, प्रम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेशक नव निदे। गृह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाये, नाम पयम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाये। संतन के प्रसाद हर हर पाया।

कवन रसना गुण कना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे।

पर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरख मुग्ध अनाथ चंचल बलहीन नीच अजाना।

جن بداتا پایا نام راتے جی داتے نت دن چڑھے سوایا رد سدھ نو ہر

हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम, हर नाम जपत सो हंस प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊंच अगम अपार, बिनवंत नानक सफल सब किछ प्रभु मिले अति प्यारे।

महामोहन जिन नाम हर के सुख नहीं सहस सियानक उपाव साके जह पावत कह जाहि आद अंते मद पूरन सर्वत्र कट कट आहि बिन वंश नानक जिन साध संगम से पत से

पौड़ी। सब तेरी तू सब सदा, सब तुद्ध उपाया, सबना विच तू वरतदा, तू सबनी प्याया, तिसकी तू भगत खाए पाए, जो तुद मन पाया, जो

नानक सब किछ आप है अवर न दूजी जाए पौड़ी। तेरी वडियाई तू है जानदा, तुझ जेवड़ अवर न कोई, तुझ जेवड़ होर शरीक।

मन पर कीट न आया सहज न लगो पाओ शब्द साद न पायो मन हथ क्या गुण गाए। नानक आया सो परवान है जो गुरमुख सच समाए।

सतगुर कै तै पन ना करो रह अंक समाए। अंदिन सहसा कदे न चूके बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला

आए पिसावे, आप पकावे, आप पांडे दे परोसे, आपे ही बैठावे, आपे जल

बंधन तोड़े सच वसें, अज्ञान अंधेरा जाए, सब किस देखे तिसे का, जिनकी आतन साजे, नानक शरण करतार की, करता राखे लाजे। पौड़ी जदों आपे खाट किया, जदों आपे खाट किया बह करते, तदों कुछ ना सेवक दिया, तदों क्या को लेवे क्या को देवे, जा अवर ना दूजा किया, फिर आपे जगत उपाया करते।

कहे कथे ना पाए अंगिन रहे सदा गुण गाए जिन कर में किने ना पायो पौके मुए बिन लाए गुरु के शब्द मन तन सुजे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कटीजे आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख देवे करता आपे बख्श करीजे आपे सुख दुख देवे करता आपे बख्श करीजे श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड तू पौ कर चल गवाए गुर कह तै के ते निस्तरे तै विच निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए खाए नानक काम क्रोध किने न पायो पुछो ज्ञानी जाए महला तीजा मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार दिख माया तन संच मरे अंते हुए सब छार कर्म तरह सुच

पार पवे जिना अंदर सच्चा सोए नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए पौड़ी आपे पारस आप ताप है आप की कौन कंचन आपे ठाकुर सेवक आपे आपे ही पाप खंडन आपे सब कट भोग है स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब देता आपे गुरुमुख पंजन जन नानक सालाहे नारद तुझ करके तू हर सुख दाता वडन श्लोक महला चौथा।

संध्या प्रवान है, जित हर प्रभु मेरा चित आवे है। हर्षो प्रीत उपजे माया मोह जलावे, गुर प्रसादी दुबदा मरे, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या करे मनमुखी जी।

नानक सतगुरु मिले मेरी प्यास गई, फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे संत परम संत सब आपे, आपे ठाकुर दास पाया, आपे दस अठ वर्तु पायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया, आप अपुल न पुले कभी, सब सच कपाव से सच किया, आपे जिना बुझाए गुरमुख, तिन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा, हर नाम न सुमिरे।

आए हो, सतगुर का पाना चित रखो, संजम सच्चा नेहो, नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी, अग्गे हर्षो केल करे हो पौड़ी। आपे पार अठारे बनस्पत, आपे ही फल लाए, आपे माली आप सब सिंचे, आपे ही मोह पाए, आपे करता आपे पुगता, आपे दे दिवाए, आपे साहिब आपे है राखा, आपे रहा समाए, जन नानक वडिआई आखे हर करके की, जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा। मानस परिया आया, मानस परिया आए, जित पीते मत दूर होए, बरल पवे विच आए, अपना पराया

0: पौड़ी
1: जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाम हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप।

नानक आप अमयो है गुर कृपा ते रहा समाए आपे मिलिया मिल रहा आपे मिलिया आए। महला तीजा

बस सब जो तेरे बस है, तू सच्चा चाहो भगत रते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर रज रज जन साहो, सब पदार्थ पाई।

सतगुरु मोको हर दिया, सतगुरु मोको हर दिया बुझाए रहाओ, दुहागनी खड़िया बिल्ला दिया, सिना मैल न पाए, दूजे पाए करूपी दुख पावे आगे जाए, गुणवंती नित गुण।

हर जियो मन वसाया, हर कर कृपा सतगुरु मिलाया, पूरे सतगुर हर नाम से आया रहाओ। ब्रह्म वेद वाणी प्रगासी माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वर्ते कर अपने तामस बहुत अंकारा। किसन सदा अवतारी रूदा, किस लग करे संसार।

एक को सच वर्त है सब अंतर सब ना करे सतपाला नानक इक्कस दिन मैं अवर ना जाना सबना दीवान दयाला वड हंस महला तीजा गुरुमुख सच संजम तत ज्ञान है गुरुमुख साचे लगे ध्यान

गुरुमुख जात पत खट सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वडाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच करण।

ए मन नाम निदान तू पाए अपने गुर की मन लै रजाए रहाओ गुर के शब्द विचों मैल गवाए निर्मल नाम वसै मन आए करमे पूला फिरे संसार मर जन में जम करे खुआर नानक सेवड पागी जिन हर नाम से आया गुर प्रसादी मन वसाया वडहंस महला तीजा हों में नावे नाल विरोध है दोए ना वसे इक ठाए हों में विच सेवा ना हो वही ता मन बिरखा जाए हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए हुक्म मन्ने ता हर मिले ता विच्चों हों में जाए रहाओ हों में सब शरीर है हों में ओपत होए हों में वड्डा गुबार है हों में विच बुझ ना पके कोए हों में विच पगत ना हो वही हुक्म ना बुझे आ जाए हों में विच जियो बंद है नाम ना वसे मन आए नानक सतगुर मिले हों में गई ता सच वसिया मन आए सच कमावे।

अपने गुरु को जाता रहाओ। मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे, जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया, थे मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया, हूँ कर साका उपाव बहु तेरे, नानक गरीब राखो हर मेरे। वडहंस महला चौथा, मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी, हूँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोवाने, हों क्यों कर पिर को मिलो एयानी, जो पिर पावे सा सुहागन साई, पिर को मिले सियानी रहाओ। मैं विच दोष हों क्यों कर पिर पावा, तेरे अनेक प्यारे हों पिर चित नावा, जिन पिर रावया सापली सुहागन, थे मैं गुण नाही हों क्या करी दुहागन, नित सुहागन सदा फिर रावे, मैं कर्महीन कब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण बस नानक बेचारा। वडहंस महला।

जो हर हर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम से आवा। गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी तित वेले मर जाए जियो मेरा। हर वेखन को सब कोई लोचे सो वेखे जित आप विखाले। जिसनो नजर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले। सो हर हर नाम सदा सदा संभाले। जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया नानक हर जन हर इक्के होए। हर जप हर तेती।

रहाओ। लाख भगत जाको आराधे, लाख पति सर तप ही साधे, लाख जोगी सर करते जोगा, लाख पोगी सर पोगे पोगा, कट कट वक्त है जाने तोरा, है कोई साजन पर्दा तोरा, करो जतन जे होए मेहरवाना, करो जतन जे होए मेहरवाना, ताको दे जियो कुर्बाना, फिरत संतन पे आया, दुख परम हमारा सगल मिटाया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा। वढ़हंस महला पंजवा, तन सोवेला जित दर्शन करना, हौ बलिहारी सतगुर चरणा, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम चितेरे। रहाओ सत मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजानी, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी, तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब पर पुर लीना। वढ़हंस महला पंजवा, तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को

तिन्हे तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता नानक साधु देख मन राशा वढ़हंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभु पूरा दान दे साधु की दूरा।

जल सल मैयल रहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सर्व परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा उवड़ दाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू चीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ कह निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंच

मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे हो क्यों पाई गुरपुरे ये तो खेल खिलाए बालक रह ना सके बिन खीरे मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे तो भोजन मैं नीरे मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हौ एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिन लाता हौ क्या गुण तेरे सार समाली मैं निर्गुण को रख लेता हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा एहो कापड़ तन ना सुखावई।

मैं सब सिंगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए जा सह बात ना पुछिया अमाली ता बिरसा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागनी अमाली जिन सो रहा समाए हों वारिया तिन सुहागनी अमाली तिनके तोवा सद पाए जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं

सच तुन सच शब्द विचारा अंदिन सच सलाना तन तन वड भाग हमारा मन मेरे साचे नाम विटों बल जाओ दासन दासा।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वा पारा अन दिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाहे गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहे समाहे अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए जो पावे त्यो रखती आपे करे रजाए वडहंस महला तीजा मनुआ देह दिस्ताम दा ओ कैसे हर गुण गावे इंद्री व्याप रही अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस जुग में दुर्लभ है गुरमत हर रस पीजै रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काड लिया साची वड्याई दिख से अमृत भय गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पए अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंग है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिन कै हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

आई नाता सो प्रवान सच कमाई है। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है। जिथे जाए बई है भला कही है सुरत शब्द लिखाई है। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाई है। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया अमृत हर का नाम मेरे मन पाया। नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया। सुख मन में आए वस्या जाम तै फुरमाया। नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसे नाख झगड़ा पावना। नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना। जिस नाल संगत कर सरी की जाए क्या रुआवना। जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब उपायन आप आपे नजर करे। कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे। सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे। किछ पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समतरे। नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुर कदे। सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना। सब उपाय है आप आपे सर्व समाना। सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया। एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवा।

नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाणा, दुख गया सुख आए समाना, गावन सुरनर सुगड़ सुजाना, सुरनर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे, माया मुहे चेते नाही ऐला जन्म गवावे, एक मूड मुगद ना चेते मूले जो आया तिस जाना, नाम तेरा।

रित चढ़े सवाया, एक करम करम ना होए संजम, जाम ना एक पछाणी, वक्त सुहावा सदा तेरा, अमृत तेरी बाणी। हौ बलिहारी साचे नावे, राज तेरा कब हो ना जावे, राजो ता तेरा सदा नहीं चले, एहो कब हो ना जावे, चाकरता तेरा सोए होवे, जोए सहज समावे, दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे, हौ बलिहारी सदा होवा, एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे, कीरत करें स्वामी तेरे द्वारे, जब

करो कृपा ले हो जमो बारे जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनंती हूं आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

तेरे बंके लोएन दंत रिसाला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोयने की टाला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बग्गा।

आप वाणी इच मन की पूरी है, सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम आप संदूरे, श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी बिनवंत नानक।

राजी जय हम दिन नाम वखाणे गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्द रस तीजे नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरले की जय गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा ले परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए बूजे गुर विचारा मन मुख खेती वणज कर थाके कृष्णा पुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर सच्चे शब्द सुहाए हर व्यापार से जन लागे जिना मस्तक मणि वड़ पागो राम गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साज रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना सब दे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावे मस्तक पागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई स्वधंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वसे कोहे ना सके जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साके साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए

पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पे करें पुकारा राम। माया मोह अंतर मल लागे, माया के वा पारा राम। माया के वा पारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाए। बिख का कीड़ा बिख्यो लागा, बिष्टा माए समाए। जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई न मेटन हारा। नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, होर मूरख कूक मुए गावारा। माया मोह मन रंगिया, मोहे सुध न काई राम। गुरमुख ए मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम। दूजा रंग जाई साच समाई, सच परे पंडारा। गुरमुख होवे सोई बूझे, सच सवारण हारा। आपे मेले सो हर मिले, होर कै

ए मन मेरिया आवागौन संसार है, अंत सच निवेड़ा राम। आपे सच्चा बख्श ले, फिर होए ना फेरा राम। फिर होए ना फेरा, अंत सच निवेड़ा। गुरुमुख मिले वड्याई, साचे रंग राते सहजे माते, सहजे रहे समाई। सच्चा मन पाया सच वसा।

सब बरल है दूजे पाए कुआई राम। माता पिता सब हेत है हेते पलचाई राम। हेते पलचाई पूर्व कमाई मेट ना सके कोई जिन सृष्ट साजी।

सो कर वेखै तिस जेवड़ अवर न कोई, मन मुख अंधा तप तप खपै बिन शब्द सांत न आई, नानक बिन नावे सब कोई भुला माया मोहि खुआई। ए जगत जलता देख के भज पै हर सरनाई राम, अरदास करी गुर पूरे आगे रख ले वो देहो वडाई राम, रख ले वो सरनाई हर नाम वडाई, तुद जेवड़ अवर ना दाता सेवा लागे सेवड़ पागे जुग जुग एको जाता, जत सत संजम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई, नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर सरनाई, जो हर मत दे सा उपजे होर मत ना काई राम, अंतर बाहर एक तू आपे दे बुझाई राम, आपे दे बुझाई अवर ना पाई, गुरमुख हर रस चाखिया दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया कर मैं निज कर पाया सतगुर दे वडाई, नानक जो नाम रते सही महल पाइन मत परवान।

दृढ़ाए। जप हर हर नाम विकसे राम, जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नवंग निध पाई, हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई।

मेरा सतगुरु पूरा राम हो मन तन देवा किस काट शरीरा राम हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए मेरे मन बैराग पया बैरागी मिल गुरु दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो।

गुरजेवर गुरजेवर दाता मैं अवर न कोई। वडहंस मैला चौथा हाँ गुरबिन खरी निवाणी राम। जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम।

हर हर नाम मेरा प्राण सखाए, किस दिन कड़ी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हो वारी गुर सिख नीत्यारे। हर आपे पुरुष निरंजन सोई राम। हर आपे मिले करे सोई राम। जो हर प्रभावे सोई होवे, अवर न करना जाए। बहुत स्याणप लया न जाए, कर था के सब चतराए। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर दिन अवर न कोई। हर आपे पुरुष निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा। हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम। सिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर

निफल जन्म चिन बिछा गवाया ते सापक मोए मर चूरे कर होंदै रतन पदार्थ सूखे भागहीन हर दूरे। हर हर तिन सा दर्श न करियो जिनी हर हर नाम न प्याया जिनी दर्शन सतगुरु पुरख न पाया। हम चात्रिक दीन।

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम सात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुखदा।

कलग हत जीना जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभु कृपा तारी सुख दाते दुख लाके पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम सब दिन से हों मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोग तय शरीरा। अन दिन सहज समाध हर लागी हर गतिया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन आया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा।

विकंपयंगा अनतरंगा गुरुमुख पार लंघाए हर गोहित चढ़वड़ पागी लंगे गुरु सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर गुण।

महामार्ग पंख बिखरा जन नानक पार लंघाया। कोरी तेजन दे राम पाया राम, जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाया राम। जित हर प्रभ जापै

हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जंग आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वधाई। वडहंस महला चौथा दे तेज नड़ी।

हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलो किया करते हर राम नाम वखानिया हर राम नाम सलाए हर प्रभु हर

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया, जन नानक हर

ठाकुर माने से प्रधाने हर सेती रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कै सब कुरबान श्लोक।

साख अगाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा अमयोग उठा सुख पाए दुख नाश परम विनाश संते जग जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन कनिये वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडया नानक जाने सत साईं।

सब जगत बाल गोपाला, जो शरण आवे गुण निधान पावे, सो बहुर जन्म न मरता, दिनवंत नानक दास तेरा, सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम, मन इच्छा फल पाये राम, मन इच्छ पाये।

आप निरालम तंदे बांधी कर हुकम छडावन हारो अज कल कर दिया काल दिया पै दूजे पाए विकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई।

वडहंस है, सच नाम उद्धार, सत संग्रह है, सद सत रहे, सच्चे नाम प्यार, सदा निर्मल मैल न लग गई, नदर की करतार, नानक हो तिन

पूरा तन तन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्टि सवारी नित जप्यो संतो राम नाम पौजल विकतारे गुर पूरे हर उपदेशया गुर विटड़ो हो सदवारी श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा चाकरी सुखी हूँ सुख सार एथ।

के मुख गिरात ऐठे दुखो दुख कमावना मोया नरक निवास। मन मुख मोहे मैल शब्दे ना जानने काम क्रोध में आस सतगुर का पौछ।

नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाए बिन गुरु।

सोदे मन हर सरणी पड़ रही है, हर बिन कोई मार जीवाल न सके, मन होए निचिंद निसल होए रही है, उठंदियां बहंदियां सुतियां सदा सदा हर नाम के आई।

शब्द सवार निहारा। सूरत महला तीजा। हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे, जिचर कट अंतर है।

लिया उल्टी भाई भाई जीवत मरे ता बूझ पाए सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मिलाए मंगे हर हर से ती लिवलाए मन हर जख मीठा लागे पाई

गुरशरणाई उबरे भाई राम नाम लिव लाए नानक नाओ बेड़ा नाओ कुलहड़ा पाई जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा हर पहला।

सतगुरु सेवै तां सुख पावै, नाहै तां जाएगा जन्म गवाए। रहाओ त्रै गुण ताप बहु कर्म कमावै, हर रस साधना आया। संध्या तर्पण करें गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुरु सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मिलाए। हर रस पी जन सदा तृप्ता, से विचों आप गवाए। यह जग अंधा सब अंग कमावे, बिन गुर मग न पाए। नानक सतगुर मिले ता

सुन उपजे दतमत तब ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुरु सब जग बोराना मन मुख अंधा शब्द ना जाने झूठे परम पुला ना रहाओ त्रैगुण माया परम पुलाया होमे बंधन कमाए जमन मरण सिर ऊपर उबो गर्भ जोन दुख पाए त्रैगुण वर्ते सगल संसारा होमे विच पत खोई गुरमुख होवे चौथा पद चीने राम नाम सुख होई।

इस नाम निधान है प्यारा, कर दया अमृत मुख चोए रहाओ, आपे जल फल सबत है प्यारा, प्रव आपे करे सो होए, सबना रिज्क समादा प्यारा, दूजा अवर न कोए, आपे खेल खेला।

पर बालक रूप उपायदा प्यारा चंदूर कंस के सुनारा है। आपे ही बल आप है प्यारा बल पन्ने मूर्ख मुगदा है। सब आपे जगत उपायदा।

सांप आई दुर्मत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सब संगत पुरुष तुम्हारी पुरख है पुरख मिलिया गुर पाया जिनको कृपा कही तुम्हारी नानक अतुल सहज सुख पाया अंदिन जागत रहे बनवारी सोरठ महला चौथा हर सो प्रीत अंतर मन भेदया हर दिन रह न जाई।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए है, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तां सीतर, तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई, गुरमत राम नाम पर गासो, सदा रहूं शरणा।

कोई। सोरठ महला पंजवा कर पहला सिख के एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। किस हो जाची किस आरादी जा सबको कीता हो सी जो जो दी सै वडा वडेरा सो सो फाकूरा।

रहाओ। जिन हर त्याया सब किस तिसका तिसकी पूत गवाई, ऐसा तन दिया सुख दाता निखुट न कभी जाई। आनंद भया सुख सहज समाने सतगुर मेल मिलाई, मन नाम जप नाम आराध अन दिन नाम वखाणी उपदेश सुन।

तू सर्व जिया दयाला सब कुछ कीता तेरा वरतै क्या हम बाल गोपाला राख ले हो नानक जन तुमरा ज्यो पिता पूत के पाला। सोरठ महला पंजवा कर पहला चौथ पे गुरु गोविंद सलाहिय पाई मन तन हृदय पार साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार जित तन नाम न उपजै पाई से तन होए छार साध संगत को वारिया भाई जिन एक ओंकार आधार सोई सत आराधना पाई जिससे सब किछ होए गुर पूरे जानाया पाई तिस बिन अवर न कोए रहाओ। नाम विहुने पच मोए भाई गणत न जाए गणी बिन सच सोच न पाये भाई साचा अगम धनी। आवन जान न चुके भाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी। सिमरत शास्त सो दिया भाई बिन सतगुर परम न जाए अमित कर्म कर था क्या भाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सो दिया भाई।

सच सदा है निर्मला भाई, निर्मल साचे सोए, नजर करे जिस अपनी पाई, तिस प्राप्त होए। कोट मदे जन पाए भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके

हो बुझाई सेवों साध गहो ओट चरना नै बिचरे मोत चसाई रहाओ। रे मन मुग्ध अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई प्राण पत त्याग आन तू रचिया उर्जो संग बैराई सोग न व्यापे आप न खापे साध संगत बुद्ध पाई साकत का बतना यूं जानो जैसे पान चुलाई कोट पराध अछाद्यो ए मन कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया संबंधेही अंत की बार को खरा न होसी सब मिथ्या अपने ही। रे नर काहे पपोरो देही उड़ जाएगो तुम।

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुर ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा। गुर पूरा पेट्यो वड़ पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार, आगे सुख पाछे सुख सह।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है विहोन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया राखे, नानक को गुरु पूरा पेटे हो, सगले दुख विनाशे, सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी, करण करावन हार स्वामी, आपन हाथ संजोगी।

पाए, तेरी अकथ कथा कथन ना जाए, गुण निदान सुख दाते स्वामी, सबते ऊंच बढ़ाए रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अभाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जाको तुद आप बुझाई, गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना, प्रगट पय सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई प्यानी, सोई पुरख सुभाई, कहो नानक जिस कहे दयाला, ताको मन ते बिसर न जाए। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री मोहे व्यापी, कब ऊंचे कब नीचे, शुद्ध न होइए काहू जतना, ओढ़क को ना।

ते जन्म मरण न रही, फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओहो जो करम फुलावा कहियत, तिन में उर्जियो सगल संसारा। पूरन भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा। निंदो नाही काहू बात है, एहो खसम का किया। जासो कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध संगत ना ओलिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना कर तू धारा। कहु नानक गुर बिन नहीं करिय, एह पूरन सत्य बिचारा। सोरठ महला पंजवा। खोजत खोजत खोज बिचार्यो, राम नाम सत सारा। किल बिख काटे निमख अरादया, गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा कृपत मन पावे। साधु अमृत बानी रहाओ, मुक्त फुगत जुगत सच पाये। सर्व सुखा का दाता, अपने दास को भगत दान देवे। पूरन पुरख विधाता, श्रवणी सुनिए रसना गाये। हृदय त्याय सोई, करण कारण सम

साध संग नानक गुण गावे सिमरे सदा गोपाला सूरत महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाखे प्रभ सरणा प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई तगत वचल दयाला संता की पैज रखदा आया आग बिरद प्रतिपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा पाप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बने आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे

सागर सर्व घटा भरपूरी रे, देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हर बेअंत हूँ मित्र वर्णो, क्या जाना होए कैसो रे, करो बेनती सतगुर अपने, मैं मूर्ख देओ उपदेशो रे। मैं मूर्ख की के तक बात है, कोट पराधी तरियारे, गुरु नानक।

आवत ते भयानक भया करे बेनती राज ठाकुर से हम तेरी शरणया। जह भंडार गोविंद का खुलिया जह प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थया। एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया। सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यो जा का मन लीना से जन कृत अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिखाई। हर आराधे अरोग अनबाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ। जे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने। जे गुरमान प्रभु लिवलाए ते महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया। जिसको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक से पकड़ी संतन की हृदय पै मगन चरनारा। सोरठ महला पंजवा राजन में राजा उरझायो।

एक निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्त पावे रहाओ अमलम स्यो अमली लग पायो कूमन कूम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रसना साग लुभानी क्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन।

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंड।

न जाने तुम सदा सदा दयाला है, तुम सुखदाई पुरुष विधाते, तुम रखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाते, कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन के पाछे, सोरठ महला पंजवा कर दूजा, माप गर्भ में आपन सिमरन दे, कह तुम राख तुम हारे, पावक सागर

त्रिन जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब खाने खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे खाद संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यो बन आई पूरब लिखिया पाई ए मन तेरा भाई रहाओ संतन स्यो मेरी लेवा देवी संतन स्यो व्योहारा संतन स्यो हम लाहा खाटिया हर भगत परे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का सोखा कर्म राय अब कहाँ करेगो जो फाटियो सगलो लेखा मां आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते विस्मा दे सोरठ महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी प्यारे तू मेरो सुखदाता गुरपुरे दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमाना का मैं सुख नहीं पाये हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अनद मंगल सुख पाये काल न पाने अंतर विद जाने ताकी कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महला पंजवा मृतक को पायो तम सासा विचरत आन मिलाया पशु प्रेत मुख

डेरा अंग मंगल विश्रामा मन बासत फल मिले अचिंता पूरन होए कामा इहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पे हृदय नाम वस्या अपने सतगुर के मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द क्रम पागा कहो नानक ताके पूर करमा जासा गुर चरनी मन लागा सोरठ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु न पाये पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सभा से आई है सिमरो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाओ मृग कृष्णा अर सुपन मनोरथ काची कछ न गढ़ाई।

जीना। साद विकार बिखे रस्मा तो असंख खते कर फेरे, नान किसी प्रभ पाहे बिनंती, काटो अवगुण मेरे। सोरठ मैला।

साची दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैस सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग

मन वसिया अविनाशी, ताको विघ्न ना को उलावे जो सतगुरु अपने राखे। चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस चाखे, कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की छिप जाई। नानक दास ताके बलिहारे जिन पूरन पैज रखाई। सोरठ महला पंजवा, माया मोह मगन अंधियार है देवन हार न जाने। जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो करमाने। मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी जो किच करे सोई सोई जाने। रहे न कछु छानी रहाओ जेवा स्वाद लोग मद मातो उपजे अनक दिकारा। बहुत जोन परमत दुख पाया हूँ मैं बंधन के पारा। देखिवाड़ अनक पर्दे में परदारा संग थाके। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ठाके। दीन दयाल पूरन दुख पंजन तुम बिन ओट न पाई।

कथा कीर्तन सुखदाई गुरपुरे की बाणी जप अंग करो नित पाणी हर आचा सिमरो भाई साध संग सदा सुख पाये हर विसरन कभू जाई रहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरे सो जीवे जिसनो कर्म परापत होवे सो जन निर्मल थीवे विघ्न विनाशन सब दुख मासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से ही फल पाए हर की कथा सुहेली आद अंत मद नानक को सो कब हुआ बेली सोरठ महला पंजवा पंच पदा बिन से मोह मेरा और तेरा बिन से अपनी सारी संतो यहा बताओ कारी जित हो मैं गर्भ निवारी रहाओ सर्व पूत पार ब्रह्म कर्मान्या होवा सगल रे नारी।

पाये गुरु द्वारी, कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। सोरठ महला पंजवा हर दूजा दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सगल वनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में किया ऊंच नीच में जोत समानी, कट कट माधो जिया संतो कट कट रहा।

जाओ कै सिमरन होए आनंदा, बिनसै जन्म मरण पै दुखी, चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर ना कृष्णा सुखी, जा तो नाम लैत तू सुखी, सास सास से आवो ठाकुर तो मंथन जीरे।

सोरठ मैला संजमा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनके आप छुड़ाओ ए पीतर से इनको डारो आपन निकट बुलाओ अपनी विद आप जनाओ हर जन मंगल गाओ।

जगत जीवन कैसे पावे। सूरठ महला पंजवा अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जत गुरु गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पै सुख पाये बहुत दुख न होई। रहाओ वड भागी साथ संग प्राप्त तिन पेटत दुर्मत खोई

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभु पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे,

और सतगुरे अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार पै जग पीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ मैला पंजवा हमरी गणत ना गणिया काई अपना।

हर के चरण हृदय उधार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिख काटनहार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई,

हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ पए दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुर रखवाला होआ पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ साप दया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाए हलत पलत प्रभ दोवें सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी जंत्र सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेवक की आपे राखे पूरन पई बढ़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुर पूरे पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ अंदिन नानक नाम ध्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ

बेरा अब टूडन कतो न जाई, गोविंद फेटे गुरु गोसाई रहाओ। आया प्रभ दरबारा ता फगली मिटी पुकारा, लबद अपनी पाई ता कत आवे कत जाई। कह सात न्याय निबेरा, ऊहा सम ठाकुर सम चेरा, अंतर जामी जाने बिन बोलत आप पछाने, सर्व थान को राजा ते अनहद शब्द अगाजा।

आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर स्नाना रहाओ। साची गुर वड्याई ताकी कीमत कह ना जाई, सिर साहा पात साहा गुर पेटत मन ओ माहा। सगल पराशत लाथे मिल साध संगत कैसा थे, गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा। गुर कीनो मुकट द्वारा सब सृष्ट करे।

कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिये उठत बैठत हर हर त्याये हम दिन सुकृत करिये रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए कोट जन्म के किल विखनासे हर चरणी सिसलाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया, कोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ मैला पंजवा साहिब गुनी गहेरा, कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला, सब जी भय दयाला। जब अनग रहो गुर चरणा, पौ कत है नहीं प्रभ सरणा। रहाओ तेरिया दासा हृदय मुरारी, प्रभ अवचल नीव उसारी। बल तन तकिया तेरा, तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया, सो प्रभ आप तराया। कर कृपा नाम रख।

सास सास प्रभ त्याई, हर मंगल नानक गाई। सोरठ महला पंजवा, सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा तारी, तागत पई हमारी, हर की प्रेम।

उद्धार हुआ है जी का रहाओ। जय जयकार जग गावे मन चिंदियड़े फल पावे सही सलामत नाए आए अपना प्रभु ते आए। संत सरोवर नावे सोजन परम गत पावे मरे न आवे जाई हर हर नाम ते आए। एहो ब्रह्म विचार सो जाने जिस दयाल होए भगवाने बाबा नानक प्रभ सर।

कुमारे अपने दास का सदा रखवाला पर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रहाओ वड पागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवे से वड पागा हर अमृत बाणी गावे सादा की दूरी नावे अपना नाम

कर कृपा अंतर जामी, दास नानक शरण स्वामी। सोरठ मैला पंजवा, गुरपुरे चरनी लाया, हर संग सहाई पाया, जह जाये ता सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गावो सदा सुभाई, मन चिंदे सगले फल पावो, जी कै संग सहाय रहाओ। नारायण प्राण आधारा, हम संत जना रे नारा, पतित पुनीत कर दीने, कर कृपा हर जस दीने। पार ब्रह्म करे प्रतपाला, सद जी संग रखवाला, हर दिन रहन

पूरी प्रभ रब रहा पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म विटो कुर्बाना गुर के चरण कवल रिद कारे विघ्न ना लागे तिल का कोई कारज सगल सवारे रहाओ मिर साधु दुर्मत खोए पतत पुनीत सब हुए रामदास सरोवर नाते सब लाते पाप कमाते गुण गोविंद नित गाय साध संग मिल त्याय मन बाचत फल पाए गुर पूरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे।

सिद्ध करत लाल तब चतुर पातरो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर कर के पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हौ हौ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो कृपाल।

सर्व गुना निध गायो, सर्व गुना निध रायो, रहाओ दूजा। सोरठ मैला पंजवा

उपाय सुवाई लख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांती बहुड़ पिता दल लावे पिछले अवगण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब विद जाने ता किस ते आख सुनाये कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाये अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाये ओए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने विनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सूरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा।

आपे दाता आपे भुगता, क्या इह जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाणे, कीमत कह न जाई, पेख पेख जीवे प्रब अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत की नी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, प्रब सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी।

करते पुरख ताल दिवाया, पिछे लग चली माया, कोट ना कटहू आवे, मेरे पूरे सतगुरु हावे, सिमर सिमर दयाला, सब जी पय कृपाला, जय जयकार गुसाई, जिन पूरी बंत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, ए पुन पदा।

हर के नाम की वडियाई, आप पहर गुण गाई, गुर पूरे ते पाई रहाओ। प्रभु की अकथ कहानी, जन बोले अमृत।

सतगुरु की वडियाई मन इच्छे फल पाई संतो दिन दिन चढ़े सवाई रहाओ जी जंत सब पै दयाला प्रभ अपने कर दीने सहज सुभाए मिले।

प्रभ अपनिया संता देवै हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साच सुवाखिया सोरठ महला पंजवा सोई कराए जो तुद भावे मोहे सियाणप कछु ना आवे हम बारिक तौ शरणाई प्रभ आपे तेज रखाई मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रति

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन चिंदिया फल पाया रहाओ परा पूर्वला अंकुर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर

प्रभ अपना बिरद संवारे, पतित पावन प्रभ नामा, जन नानक सद कुर्बाना। सोरठ महला पंजवा, पार ब्रह्म साज सवारिया, इहो लोड़ा गुरु उबारिया, अनद करो पित माता, परमेश्वर जी का दाता। शुभ चितवन दास तुम्हारे।

सदा हर जाते प्रभु बालक राखे आते शीतला छाप रहाई बिघन गए हर नाई। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला अरदास सुनी पग

हर सिमरत सब दुख लाथा, अपने दास की सुनी बेनंती, सब नानक सुख सवंती, सोरठ महला पंजवा, अपना गुरु ते आए, मिल कुशल सेती कर आए, अपना गुरु ते आए, मिल कुशल सेती

हर आराधो हर आराध सबो किछ पाये, कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर

वाला प्रभु सतगुरु दीन दयाला कैसे ओसे रखवाला प्रभु सतगुरु दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके।

कृपा करे जिस प्राण पत दाता सोई संत गुण गावे प्रेम पदत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ कहर हर का जस रवना बिखे खगौरी लाती संग मिलाए।

खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे को न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म।

नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपुरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती। रहाओ गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई। नानक नाम ते आया, पूरब लिखिया पाया। सूरत महला पंजवां।

नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी सोरठ महला पंजवा भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे अपने काज को क्यों अलकाये जित सिमरन दर गए मुख उजल सदा सदा सुख पाये रहाओ ज्यो कामी काम लुभावे त्यों हर दास हर जस भावे ज्यो माता

तोरठ मैला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक के मुख छाया पूरे गुर पहराया दिन से दुख सवाया संतो साचे की वड्याई जिन अचरज सोभ बनाई रहाओ बोले साहिब के भाने बोले साहिब के भाने दास बाणी ब्रह्म वखाने नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बनत बनाई सोरठ महला पंजवा।

0: दयाला अपने भगत की गणत न गणनी राखे बाल गोपाला रहाओ हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुरपूरै तुस दिया फिर नानक दुख न सिया हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुरपूरै तुस दिया फिर नानक दुख न सिया।
1: सूरठ महला पंजवां हर मंत्र

मेरे कंठ लाए प्रभ राखे, सतगुर की सच साखे, गुर पूरे पूरी कीती, दुश्मन मार विडारे सगले, दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए, सुख सांद फिर आए, नानक प्रभ शरण आए, जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा। सर्व सुखा का दाता सतगुरता की सरणी पाई है, दर्शन पेटत होत आनंद।

रहाओ तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखे जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए सो

प्रभ जियो खसमा न कर प्यारे, बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार समरथ स्वामी, बंधन काट सवारे। पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारे। सोरठ महला पंजवा। जी जंत सब वस्त्र दीने, सेवक सब दरबारे। अंगीकार कियो प्रभ अपने, पावनिद पार उतारे। संतन के कार्य सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपानिद। पूरन खसम हमारे रहाओ, आओ बैठ आदर सब थाई। ऊन न कतहूं बाता, भगत सिर पाओ दियो जने अपने। प्रताप नानक प्रभ जाता। सोरठ महला नामा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन राम स्यो कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो। अर गाओ रसना गीत रहाओ, कर साध संगत सिमर मादो। होहे पतत पुनीत, काल ब्याल ज्यो परयो डोले। मुख पसारे मीत, आज काल पुन तोहे ग्रस है। समझ राखो चीत, कह नानक राम भजले जात अवसर बीत। सोरठ महला नाम। मन की मन ही माहे रही, ना हर पजे ना तीर्थ सेवे। चोटी काल गही राव, दारा मीत पूत रथ संपत। तन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्या ए जानो। भजन राम को सही, फिरत फिरत बहुते जुग हारे। मानस दे लही, नानक कह।

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहु कैसी, धर्म कौन फुन करी। कौन नाम गुरजा कै सिमरे, पाव सागर को तरी। कल मैं एक नाम कृपा निध, जाहि जपे गत पावे। और धर्म ताके सम नाहिन, एह विद वेद बतावे। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, जा को कहत गुसाई। सो तुम ही मह बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नामा, माई मैं केविद लखो गुसाई। महामोह अज्ञान तिमर मोह, मन रहो उरझाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो, नह अस्थिर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर, नह छूटी अदमाई। साध संग कब हो नहीं कीना, नह कीरत प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुन, राख ले हो सरनाई। सोरठ महला नामा, माई मन मेरो बस नाहे। निस्बासर बिखियन को तावत, के विद्रोह को ताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सुन।

हार सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रचपच रैत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार अजहू समझ कछ बिगड़ियो नाहन पाजले नाम मुरार कहो नानक निज मत साधन को पाक्यो तोहे पुकार सोरठ मैला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागियो।

ओ संग छाड़ सब पागे, कहो कहा जिया मन बौरे को, इनस्यो निहो लगायो, दीना नाथ सकल पै पंजन, जस तां को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यों पयो ना सूदो, बहुत जतन मैं कीनो, नानक लाज बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश, कहां पयो जो मूड मुडायो, भगवो कीनो पेश रहाओ। साथ छोड़ के झूठे लागयो, जन्म अकारत खोयो, कर पर पंच उदर निज पोखे।

नाम रतन बिसराना रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी कहो नानक हर बिरध पछानो पूले सदा प्राणी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अर पै नहीं जाके कंचन माटी माने रहाओ नह निंदिया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना हर सोगते रह न्यारो नाहे मान अप

एको चेतै मनुआ ना डोलै, पावत वर्ज रहावै। सहजे माता सदा रंग राता, साचे के गुण गावै। मनुआ पौन बिंद सुखवासी, नाम वसै सुख पाई। जेबा नेत्र सोत्र सचराते, जल बूजी तुझे बुझाई। आस निरास रह बैरागी, निज कर तारी लाई।

जग जोनी सिर सिर लेख सहामंग करम सो करम कराए आपे आपे भगत दृढ़ामंग मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगामंग जिन चाख्या से साध जान जो गूंगे मिठियाई अकथे का क्या कथिया पाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत न काई ज्यो चलाए त्यों चाले पाई होर क्या को करे चित्राई एक परम पुलाए एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुकम चलावन हारा सेवा करी जे किछ होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम आधारा गगनंतर वासिया गुण प्रगासिया गुण में ज्ञान त्यान नाम मन पावे कह कहावे तत्व तत्व खान शबद गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरान पूरा बैरागी सह सुभागी सच नानक मन मान सोरठ महला पहला तित की आसा मन सा बंदनी पाई करम करम बंदकारी पाप पुन जग जाया पाई बिनसे नाम विसारी एह माया जग मोहनी पाई करम सबे वेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित करम सुख उपजे पाई सो आत्म तत विचारी रहाओ शास्त्र वेद बके खड़ो पाई

कह पारी। दुर्मत कणे विगूती पाई, दूजे पाए खुआई। बिन सतगुर नाम न पाए पाई, बिन नाम में परम न जाई। सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई, आमन जान रहाई। साच सहज गुर ते उपजे पाई, मन निर्मल साज समाई। गुर सेवे सो बूजे पाई, गुर बिन मग्न पाई। जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई, कूड बोल बिख खाई। पंडित दही विलोई है पाई, विचो निकले तथ। जल मछिए जल देखिए पाई, ए जग ए हवथ। गुर बिन परम विगूचिए पाई, कट कट देओ अलख। एह जग तागो सूत को पाई, दैदिस बांधो माए। बिन गुर गांठ न छूटे पाई, थाके कर्म कमाए। एह जग परम फुलाया पाई, कहना किछु न जाए। गुर मिले पौ मन।

बुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई मन वस्या चूका पेख ए तन हाथ सराफ को पाई वखर नाम अपार ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार तन वापारी नानका पाई मेल करे वापार सोरठ मेला पहला जिन्नी सतगुर सेव्या प्यारे तिनके साथ तरे तिना ठाक न

मन हठ कार कमावनी पाई बिन नावे पूड़ियार से गावे जिन मस्तक पाग है पाई पाए सच्चे बैराग अन दिन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग सबना मार जीवालदा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिस दी वड्डी है दात मन मुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ गुरमुख हो वै ता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिखिया नो लो भाई नाम समाले सुख वसे भाई सदा सुख सांत शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदिया इक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ किन कही है क्यों देखिए पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिसते जापे तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किछे पाई नौनिद परे पंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमा पार जी जंत प्रतपा

करनी सुन सुन जीविया पाई, नेचल पाया थाओ, जिस पर तीत ना आवई पाई, सो जीड़ा जल जाओ। बहुगुण मेरे साहिब है पाई, हों तिसके बल जाओ, ओ निर्गुण यारे पालदा पाई, देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास पाई, गूड़ा जाका नाओ, जिस गुर साचा पेटी है पाई, पूरा तिस करमाओ। तिस बिन कड़ी ना जीवी है पाई, सर्व कला भरपूर, सास गिरास ना विसरै पाई, पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई, सर्व रहा भरपूर, जिना प्रीत ना लगिया पाई, से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई, पौजल दुख संसार, कर कृपा नदर निहालिया पाई, की तोन अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई, पोजन नाम आधार, नानक ते शरणागति पाई, जे किलबिक काटनहार। सोरठ महला पंजवा। मात गर्भ दुख सागरो प्यारे, तैं अपना नाम जपाया, बाहर काड बिख पसरिया प्यारे, माया मोह वधाया, जिसनो की तो कर्म आप प्यारे, तिस पूरा गुरु मिलाया, सो आरा दे सास सास प्यारे, राम नाम लिवलाया। मन तन तेरी टेक है प्यारे, मन तन तेरी टेक, तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे, अंतर जामी एक रहाओ। कोट जन्म प्रम आया प्यारे, अनक जोन दुख पाए, साचा साहिब विसरिया प्यारे, बहुती मिले सजाए। जिन पेटे पूरा सतगुरु प्यारे, से लागे साचे नाए, तिना पिछे छुटिया प्यारे, जो साची शरण आए।

योग पुंचाए पुलायन प्यारे उतरे नाही विजोग जो गुर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारे चितना आवे मूल जिन तू विसरे पार ब्रह्म स्वामी से तन होए तूड़ बिल लाट करें बहुते रिया प्यारे उतरे नाही सूल जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाए मन मुख टोई न मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सह सियाण पा प्यारे इक ना चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस्त ना जातियां प्यारे कूड ना चली नाल सतगुर जिना मिलायुन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे अमृत पूर पूर परे दुख सागर तिन लंगिया प्यारे पावजल पार परे जिस पावे तिस मेल ले प्यारे से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिस तरनाई टै पए प्यारे जे अंतर जामी जान हालत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरे प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदिया इक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पुयंगम सादे पंच जना स्यो संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुध बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही कट तीरथ सब तरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत धराए मन की मैल ना उतरे एह विद जेलक जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु विद दान दातारा अन बस्तर कूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंडोत खट कर्मा रत रहता हौ हौ करत बंदन में परया नह मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए भी कर कर रहया वड्डी आरजा फिर जन्मे हर स्यों संग ना गया।

कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

तै पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिगारी नाओ मन कदे न मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावणी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावे अपना गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लब्बई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल बोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया दाता करता आप पोगन हारिया सब तेरा शब्द वरते उपावन हारिया हौं गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया। श्लोक महला तीजा हौं मैं जलते जल मोए प्रम आए दूजे भाए पूरे सतगुर राख ली।

सफलियो सतगुर सेविया तन जन्म प्रवान जिना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरै सेई पुरख सुजान कुल उधारे आपना सो जन होवे प्रवान गुरमुख मोए जीवंदे प्रवान है मन मुख जन्म मरा है नानक मोए ना आखिया जे गुर कै शब्द समाए पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम त्याई है सत संगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है हौ लाला गोला तुद मैं हुक्म फरमाई है हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूरब लिखिया कमावना जे करते आप लिखियास मोठ गौली पायन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मोयास जिन्नी गुरमुख नाम ना चेत्यो से बहन ना मिलनी पास दुख लागा बहुत कणा पुत कलत ना सास कोई जास लोका विच मुह काला होआ अंदर उबे सास मन मुखानो को ना विसही चुक गया वे सास नानक गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए सदगुर का पाना अन दिन करे से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार मन मुख आप स्वार्थी कारज ना सके सवार नानक पूरब लिखिया कमावना कोय ना मेटन हार पौड़ी तुल आपे जगत उपाय कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हो मैं लेखा मंगिए फिर आवे जाया जिना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी।

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया। तंदा करतिया ने फल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है, मनमुखा साध न पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने, परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया, गुरमुख विरले सो जी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे, सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो, जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कहे, गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाई है।

नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर कंधे लाएंदा एक ना भगती लाए एक आप खुआएगा एक ना मार्ग पाए एक उजड़ पाएगा जन नानक नाम से आए गुरमुख गुण गाएगा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हों मैं विच्चों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवे अपना हों तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मन मुख मन अजित है दूजे लगे जाए किसनों सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाग लगाए एह मन वस न आवई थके कर्म कमाए पेख तारी पेख कर थके हर हर तीरथ नाए मन की सार न जाननी हो मैं परम तुलाए गुर प्रसादी पौ पया बड़ भाग वस्या मन आए पै पै मन वस होवा होमे शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले नौ पाया नानक सुख समाए पौड़ी ए पूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एह माया रंग कुसंब खिन मैं ले जावना चलदियां नाल ना चले सिर पाप ले जावना जां पकड़ चलाया काल ता खरा डरा।

फिर मिलन ना पाए नी जमे ते मर जाए सहसा रोग ना छोड़े दुख ही मैं दुख पाहे नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ नानक गुरुमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड़ गया से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया हर सेवे से ही पुरख जिना

तयो हर पोजन अमृत सार, जित खादे मन तृप्ति है पाये मोख द्वार। ए पोजन अलभ है।

नानक नाम रत्या बल जाऊं पौड़ी। से हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपिया। श्लोक महला तीजा। अंतर ज्ञान ना आयो जित कुछ सोजी पाए, विन गिठा क्या साला ही है अंधा अंध कमाए। नानक शब्द पछाणिए, नाम वसै मन आए।

जा। हर गुण तोट न आवई कीमत कहन न जाए, नानक गुरमुख हर गुण रवे गुण में रह समाए पौड़ी। हर चोली दे सवारी कड पैंदी भगत कर, हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद पाठ कर। कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर, सो बूझे एहो विवेक जिस बुझाए आप हर। जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर। श्लोक महला तीजा। पर थाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहाने, गुरमुख होए सो पौ करे।

प्रकृति सब जगत खाए जो रते हर नाए जिन गुर के शब्द सलाहया हर स्यो रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत न हो वही ना कन पल्ले पाए पर थके संतोख न आयो अम दिन जलत विहाए कूक पुकार न चुके न संसार विचों जाए नानक नाम विहोणिया मोकाले उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हो बल जाए गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई बलहारी सतगुरु तिस जिन सो जी पाई श्लोक महला तीजा पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार पंडित पूले दूजे लागे माया कहवा पार।

पाए मन हथ सहजना बीजियो उखा के अगे खाए नाम निधान विसारिया दूजे लगा जाए नानक गुरमुख मिले वडियाया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी हर

पौड़ी। तन संपै माया संचिए अंते दुखदाई, कर मंदर महल सवारिए किछ साथ न जाई। हर रंगी तुरे

पौड़ी। जो हर नाम ते आए दे से हर हर नाम रते मन माही, जिना मन चित इक आराध्या तिना इक सुबिन दूजा को नाही। से पुरख हर सेम दे जिन तुर

तन तन भाग तिना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहतिया। तन तन भाग तिना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनतिया। तन तन भाग तिना साज जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतिया। तन तन

गुरमुख हर कीरत फल पाये, जिनको हर लिख पाए। नानक गुर प्रसादी अंधिन भगत हर उचरे, हर भगति माए समाए पौड़ी। हर हर मेल साध जन संगत, मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा, गुरमती हर रंग सदा मान। हर जप जप औखद खा दिया, सब रोग गवाते दुखा कान। जिना सास गिरास ना।

नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पिर कै पाणे सदा।

पहला चौथा। हर दासन से प्रीत है हर दासन को मित, हर दासन के वश है जो जंती के वश जंत, हर के दास हर

सतगुरु मिले ता पूरा पाया, हर रस रसन रसाई पौड़ी, रैन दिनस प्रभात तू है ही गावना, जी जंत सरबत नाव तेरा त्यावना, तू दाता दातार तेरा जुखा खावना, भगत जना के संग पाप गवावना, जन नानक सद बलिहार है बल बल जावना। श्लोक महला चौथा। अंतर अज्ञान पई मत मद्दम, सतगुर की प्रतीत नाही, अंदर कपट सब कपटो कर जाने, कपटे खपे कपाही, सतगुर का पाना चित ना आवे, अपने स्वाय फिराही, कृपा करे जे अपनी ता नानक सबद।

हौ मैं खपै खपाए अंतर लोभ महा गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कभू न पावे जन्म मरे मर जाए नानक बख्श ले प्रभ साचा जे गुरचरणी चितलाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभ पाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निधान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पय पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा। गुरुमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाये नामो चितवे नाम पढ़े नाम रहे लिवलाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सतगुरु मिले नाम।

न पाई। दर्भ संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। राम

मरकत लो सब लोग कुटुंब भयो आ गए हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया।

निज निर्थत गत व्यवहारा राव कस कुंकम चंदन गारिया बिन रहनो जगत निहारिया पूत पिता इक जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाचक जन दाता।

सिखारी। अछत राज बिचरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछ मर्म जनाया। अनिक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सबका

पानी आपन बापे नहीं किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास।

लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हौं बिन गांठे जाए पहुंचा, रविदास जपे राम नामा, मुझ जम स्यो नाही कामा, राग सोरठ बाणी भगत की खन की।

कहीं ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन तीखन पावो मोख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया।

चित चेते सुख होई तो पीखन दोए नैन संतोखे जह देखा तै सोई। तनासरी मैला पहला कर पहला चौक दे।

साहिब अपना अवर न जाचो कोए, नानक ता का दास है बिंद बिंद चुक चुक होए, साहिब तेरे नाम बिटो बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ। तनासरी महला पहला, हम आदमी हाँ इक दमी, मोलत मोहत न जाना, नानक बिनवै तिसे सरेवो, जाके जी पराना, अंधे जीव ना विचार, देख केते के दिना रहाओ। सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा, नानक साहिर एव कहत है सच्चे परवदगारा। जे तू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कड्डे गहना, नानक बिन वै सो किस पाये, पुरब लिखे का लेना। नाम खसम का चितना किया, कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया,

क्यों सिमरी सिमरिया नहीं जाए, तपे ही आओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहा वक्खर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरे आसमाए, तुझ बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे की तै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विण नजरी नानक नहीं कोए, श्री मैला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर्ष्यो चित लागे फिर काल न खाए, रहा सच सिमरिए हो वे प्रगास, ताते बिखिया मह रह उदास, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी स्यो तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चक्षण होए, जिन बोले जाने सब सोए राव, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ,

चीजें। चोर की हामा परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। सुन मन अंधे कुत्ते कुरियार, बिन बोले बूझिए सचियार रहाओ। चोर सवालियो चोर सियाणा, फोटे का मूल एक दुगाना। जे साथ रखिए दी जैर लाए,

सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचार है आप तरह सगले कुलकार है। दान सुबंग सोई दिल धोवे मुसलमान सोई मलकोवे पढ़िया बूझे सो प्रवान जिस सिर दरगे का निशान। तना श्री मेला पहला हर तीजा

माला आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तूप मले आमलो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत बेरी रहा। सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूरत नन्ना एक तोही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही।

ही होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंगनो मोहे आई प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वा।

ए तन अखुट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर को सद बल जाए, गुर कृपा से हर मन वसाए, से तनवंत हर नाम लिवलाए, गुर पूरे हर तन पर गासिया, हर कृपा से वसे मन आए रहाओ, अब गुण काट गुण हृदय समाए, पूरे गुर कैसे सुवाए, पूरे गुर की साची बाणी, सुखमन अंतर सहज समाणे, एक अचरज जन देखो भाई, दुखदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक न पाया जाए, गुर प्रसाद वसे मन आए, सब में वसे प्रभ एक को सोए, गुरमति कट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, त्रात्री मैला तीजा, हर नाम तन निर्मल अच्छा।

तारा, गुर के शब्द परे पंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जले अभिमान, गुरमुख हर रस चाखे कोए, तिस सदा आनंद होवे दिन राती पूरे पाक प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरते ते लोए, जो चाखे सो निर्मल होए, निर्मल नाम हो मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिस सदा हरख नाही कदे सोग, आप

समाने शब्द मिले प्रीतम सदा ते आए साच नाम वडे आई पाए आपे करता जुग जुग सोए नदर करे मेलावा होए गुरबाणी ते हर मन वसाए नानक साच रते प्रभ आप मिलाए तनासी मैला तीजा।

खाए अपनी पत खोई। गुर सेवा से जन निर्मल होए, अंतर नाम वसे पत उत्तम होए रहाओ। गुरमुख उगरे हर शरणाई, राम नाम राते पगत दृढ़ाई।

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभ साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी सब सुनाए। प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर सेवै तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुखनाओ, साचो साच समालो दुख जाए। साचे शब्द वसे मने आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा अग्न बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाने चले ताँ आप जाए। साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ता सुख पाए। हों मैं विच्चों ठाक रहाए, किसनों कही है दाता एक सोए। कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा धावा, त्रासी मैला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन हुए कैसे हर पाए। ए मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे हर देव डियाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे, पाइस मन की सो जी पावे। मन में मत मैगल मितदारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा। मन असाद साधे जन कोई, अचर चरे ता निर्मल होई। गुरमुख ए मन लया सवार, हो मैं विच्चों तजै विकार। जो तुर रखियन मेल मिलाए, कदे ना विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे प्रभ जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणे। त्रासी मैला तीजा, काचा तन संचे मूर्ख गावार। मनमुख पूले अंध गवार, विख्या कै तन सदा दुख होए। ना साथ जाए ना प्राप्त होए, साचा तन गुरमती पाए। काचा तन सुन आवे जाए रहाओ, मन मुख पूले सब मरे गवार। पर जल डूबे ना उरवार ना पार,

सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहा हम मूरख मूरख मन माहे हों मैं विच सब कार कमाहे गुर प्रसादी हों मैं जाए आपे बख्शे ले मिलाए बिख्या का कान बहुत अभिमान।

परम पट फूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर से मन मानिया। तना श्री मैला चौथा कर पहला चौक दे

निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कहे ना सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी। जो कंचन बै संतर पायो, मल पापी कटक उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर्धारी। हर हर हर औषध जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तना श्री मैला चौथा। हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ पागी। अपनी सेवा आग कराई, गुरमत अंतर जागी। हर के नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लिग लागी। रहाओ संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक की रे, तुम वड पुरख वडागी। तुमरी गत मिस कह न सके।

नानक दासन दास करो प्रभु हम हर कथा कथा की। तना श्री मेरा चौथा हर का संत सतगुरु सतपुरखा जो बोले हर हर वाणी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम तिसके सद कुर्बानी। हर के संत सुनो जस्तानी हर हर कथा सुनो एक निमक पल सब के लिए पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरुष वडानी तिनकी तूर मंगे प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफल्यो बिरत प्रभ स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुकानी। जिनके बड़े पाग वड ऊंचे तिन हर जपियो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी। तना श्री मैला चौथा।

तुर पाओ। जब मन राम में नाम हर जस उत्तम काम, जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, हूँ तिनके सब दलिहारे जाऊं रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देओ सोई हो पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजे, नानक हर सिमरन का है चाओ। सांसरी मेला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी। गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करमानी।

रहाओ। आपे गुरचेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिल से, और सब त्याग को है हर पानी। सनातनी मैला चौथा। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाओ के वस है काम देना, सो ऐसा हर त्याय मेरे जीड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मन सत नाम सदा सत नाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना राव, जय हर सिमरन भया ते उपाद गत कीनी, वड पागी हर जपना, जन नानक कौ।

पावखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचन निरंकारे कोट पराग मिटे किन पीतर जा गुरुमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभु कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा खान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप न लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल नैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अदनासी पुरख मुरारे जो पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। धनाश्री मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो।

सद ही संगे सतगुर सबदी कीना रहाओ। काम हेत कुंचर ले फांक्यो ओ परवस पयो बिचारा, नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बिदारा। देख कुटंब लोग मोहयो प्राणी, माया को लपटाना अतरचियो कर लीनो अपना, उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोविंद अवर संग नेहा, को जानो सदा दुहेला, कहो नानक गुर एह बुझायो प्रीत प्रभु सदकेला। सनासरी मैला तन्या, कर कृपा दियो मोहिनामा, बंधन से छुटकाए मन से।

कयो परदास सदा सुख मन में सतगुरु पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद पीतर वसिया ता दुख परम को पागा कई तरह पथवस्त अगोचर राम नाम रंग लागा चिंत अचिंत।

होते, तिनकी बात बिलानी अलंकार मिर थैली हुई है, तांसे कनक वखानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर की ओ बंदानी। तनासरी मैला पंजवा, वडे वडे राजन अर पूमन ताकि तृष्ण न बूझी, लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु न सूझी, दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई जो पावक ईदन नहीं तापे, बिन हर कहां अगाई रहाओ, दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटे न भूखा, उद्यम करे स्वान की न्याई चारे कुंटा कोखा, काम वंत कामी बहु नारी पर ग्रह जो न चूके, दिन प्रप करे करे पछतापे सोग लोभ महसूके, हर हर नाम अपार अमोला अमृत एक निधाना, सुख सहज आनंद संतन के नानक गुर ते जाना। तनासरी मैला पंजवा, लवे ना लागन कौ है कछुए जाको फिर ए तावे, जाको गुर दीनो ए अमृत किसी को बने आवे, जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदिया, ताके चितना बसा रहाओ, मौल्यो मन तन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई, वर्ण न साको उस्तत ताकी कीमत कहन न जाई, काल न मिलियो सेव न मिलियो मिलियो आए अचिंता, जाको दया करी मेरे ठाकुर तिन गुरे कमानो ममता, दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला, पोत पोत नानक संग रविया जो माता बाल गोपाला। तनासरी मैला पंजवा, बार जाऊं गुर अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया, महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग दिखाया, हमरे प्राण गोपाल गोविंद इहा उहा सर्व शोक की जिसे हमारी चिंद रहाओ, जाके सिमरन सर्व निधाना मान महत पत पूरी, नाम लैत कोट अगना से पगत बांछे सब तूरी, सर्व मनोरथ जे को चाहे सेवे एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी सिमरत पार कराना, शीतल शांत मह सुख पाया संत संग रहे ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन यह नानक कीनो चोला।

प्रीत अमृत संग नए रुच आवत दिखे ठगौरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी इस युग में पवित्र पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काच बाद जीत जन्म जन्म के किल विख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख से निक्षो नानक एक परीत रात्रि मैला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस गाई साफ साफ मन नाम समारे ए विश्राम निध पाई तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ त्याई रहाओ तुम्हारी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई अनद रूप रवियो सब मध्य जब कत पे सो जाई तुम दयाल कृपाल कृपा निध पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख से निमुख बुलाए जात पात पगत खा पूरी जो प्रभ कह मन पाई नाम जपत तिस्मा सब बुझी है नानक तृप्त अभाई तनासी मैला पंजवा जिनकी ने बस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा प्रभ की ओट गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज सब हूटो रहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोह ओडी थी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सब के लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेलियो दुआ किसी वाद काट किसी पे सगले लर लर मुआ हूँ बलिहारी सतगुरु आपने जिन ए चलत दिखाया गुजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया खाटे सनातनी मैला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खत्म हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे जेवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लही है रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझ

सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके बोले त्रासरी मैला पंजवा पूजा वर्त तिलक इसनाना पुन दान बहु देन कहू न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन प्रभ जी को नाम जगत मन चैन बहु प्रकार खोजे सबका को बिकम न जाई लैन राव जात ताप तमन गसबा कर उर्ग ताप लै गैन ए विद नै पतिया नो ठाकुर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन त्रासरी मैला पंजवा बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे हर हर नाम सुनावे अस्थिर करे ने चल ए मनवा बहुर न कठूतावे है को ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो हियो देओ अर्पो अपनो चीत रहाओ पर तन पर तन पर की निंदा इनस्यो प्रीत न लागे संत संग संत संबाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरुष प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला त्रासरी मैला पंजवा हर हर लीने संतो बार हर के दास।

नानक शरण परयो दुख पंजन, गुण गावे सदा आकार, निंदक का मुख काला हुआ, दीन दुनिया के दरबार। त्रासरी मैला पंजवा, अधर राखन हा चितारिया, पतित पुनीत किए खिन पीतर, सगला रोग बिदारिया रहाओ, गोष्ट पई साध के संगम, काम क्रोध लोभ मारिया, सिमर सिमर पूरन नारायण, फुंगी सगले तारिया, औखद मंत्र मूल मन एक है, मन विश्वास प्रभ तारिया, चरण रेन बांचे नित नानक, पुनः पुनः बलिहारिया। त्रासरी मैला पंजवा, मेरा लागो राम स्यो हेत, सतगुर मेरा सदा सहाई, जिन दुख का काटिया केत रहाओ, हाथ दे राख्यो।

आधार जनका रास पूंजी एक तार मान दी बाण साचा नानक की प्रवटेक सनातरी मैला पंजवा। फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम ते आया।

0: सब कुल कारण हर हर नाम ते आए, नानक नाम निरंजन गाये पाये सर्व निधाना, कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना।
1: कनाश्री महला पंजवा कर दूजा चौपदे टिको अंकार सतगुर प्रसाद, छोड़ जाहे से करे पराल कामना आवे से जंजाल, संग ना चाले तिन स्यो हीत जो बैराई से ही मीत, ऐसे परम पुले संसारा जन्म सदा

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारन तरन हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पारगम सेवा, के उपदेश मोको गुरदीना जियो। किस त्यों ना लाई हीत, जा को किस ना ही बीत। संत की बार ओ संग न चाले, मन पर तू आराध हर के प्रीतम साथ। जा के संग तेरे बंधन छूटे, गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण। अवर आस कट पटल न की जय, सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई। नानक जा को कृपा की जय, तना श्री मेला पंजवा। मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना, देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन। प्राण पक चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिख्या विकार देख सगल है फीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन। तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जाको रे कर्म पला, तिन ओट गही संत पला। तिन नाही रे जम संतावे, साधु की संगना। पायो रे परम निधान, मिट्यो है अभिमान। एक है निरंकार, नानक मन लगना। तनाश्री मैला पंजवा, कर सतवा इको ओंकार। सतगुर प्रसाद हर एक सिमर, एक सिमर एक सिमर प्यारे। कल कलेश लोभ मोह, मां पौ जल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक, दिन सुरैन चितारे। साध संग जप निसंग, मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार, गुण गोविंद विचारे। साध जना की रेन नानक, मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा, कार अठवा दो पदे इको ओंकार। सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। साथ साथ संभाले, ए लोक परलोक संग सहाई। जत कत मोहि रखवाले, गुर का बचन बसे जी नाले। जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए न साके जाले रहाओ। निरसन को तन अंधले कौटिक, मात दूध जैसे बाले। सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। तनाश्री मैला पंजवा, पै कृपाल दयाल गोविंदा। अमृत हृदय सिंचाई, नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अनग सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का। रब रहा सर्व ठाई राव, पाको कोए न पहुंचन हारा। जाके अंग गुसाई, जम की त्रास मिटे जिस सिमरत। नानक नाम से आई, तनाश्री मैला पंजवा। दर्बवंत दर्ब देख गर्बे, पोमवंत अभिमानी। राजा जाने सगल राज हमरा, क्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट संवारे, जैसा बित तैसा हुए वर्त है। अपना बल नहीं हारे रहाओ। आन त्याग पे इक आसर, शरण शरण करे आए। संत अनग्रह पे मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। तनाश्री मैला पंजवा, जांको हर रंग लागो इस जुग में। सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्तां के। जांका सतगुरु पूरा, ठाकुर गाये आत्म रंग। शरणी पावन नाम से आवन, सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसे मेरे ही अरे, संग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा निद, नानक कह सुखे ही। तनाश्री मैला पंजवा,
जतन करे मानुख डहकावे को अंतर जामी जाने पाप करे कर्म कर पावे पेख करे निर्वाने जानक दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताके उतते उतते है आवे लोभी फेर रहाओ जब लग तुते नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई तनासरी मेला पंजवा नाम गुरु दियो है अपने जाके मस्तक करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह नाम व्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा तनाश्री मेला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परों रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे उपाल तनासरी मेला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे मैं तारी बार तो तैसे ही प्रपाल रहाओ नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा तनाश्री मेला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राज माल जोवन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानक की सरदा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे तनासरी मेला पंजवा छाए लियो महाबली पे अपने चरण परात एक नाम दियो मन मनता दिल सुना कतहू जात सत गुर पूरे की नीदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने पगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात नासरी मेला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी तनासरी मेला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कह चरण कमल निज साती रहाओ जिसका साथिन ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती तनासरी मेला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नानक आनंद भये दुख पागे सदा सदा हर जाप तनासरी मेला पंजवा
चतुर्दिशा तीनों बले अपना श्री ऊपर कर तारे हो, कृपा कटाक्ष सब लोकन कीनो, दास का दुख बिदारे हो। हर जन राखे गुरु गोविंद, कंस लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शन।

औखी करी न देखन दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राख अपने को साथ साथ प्रताले प्रभ क्यों लाग रहे हो मेरा चीत आब अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ मन विलास पहे साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई तनासरी मैला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पतदाता सोई गनो अबागा चरण कमल जाका मन राग्यो हमें सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस खीज गया सब तन के प्रीतम से मन लागा रहाओ जय जय पेखो ते नारायण सगल कटा में तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब नुरागा तनासरी मैला पंजवा जन के पूर्ण होए काम कली काल मां बिख्या में लज्जा राखी राम राव सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सद कुरबान तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो सोग अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुर जन्म न छापन तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाई है प्रभ के सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा चंद सेव सच पाई है दोवे सुहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पे काटे मिल साधु बिन से शोक तनासरी मैला पंजवा कृष्णा बुझे हर के नाम महा संतोष होवे गुरबचनी प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान रहाओ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया तुर करता है नानक जन के पूरन काम तनासरी मैला पंजवा जन की नी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन न पावन मूले।

तें तें स्वामी कोई न पहुँचन हार, जो जो करे अवज्ञा जन की होए गया तत्सार, करण हार रखवाला हुआ जाका अंत न पारा वार, नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभ तारो कृपा कर तारो पूजा कह कूप से काट ले वो रहाओ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दो खातन साध पूरे। प्रभ बिना आन न राखन हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। तनाश्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सदा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नाम।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाओ। वडे भाग पेते गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जाका मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेड़े जम जंदार ना वे नेड़े। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाए नानक उदरे प्रभ शरणाई। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग्रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए आन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा। समुद्र सागर जिन खिन में तारा रहाओ। कोई होआ कर्मरत कोई तीरथ नाया दासी हर का नाम से आया। बंधन का तन हार स्वामी जन नानक सिमरै।

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा ओही संग समाई। रहाओ पोप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, सट ही खोजो पाई। बाहर पीतरे को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई। सनासरी मेला नामा, साधो ए जग परम तुलाना। राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। रहाओ मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना। जो बन तन प्रभ ताके मद में, एन सरह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, सांस्यों मन न लगाना। जन नानक को तन में किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी मेला नावा, तिन जोगी को जुगत न जानो। लोभ मोह माया ममता फुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा पुस्तक नह जाके, कंचन लो समानो। हर्ष शोक ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन देह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो। कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। सनासरी मेला नावा, अब मैं कौन उपाय करूं। जे बिद मन को संसा चूके, पौनिद पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डरो। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, पत्यो दर परो। कहो नानक प्रभ बिद पछानो, तब हो पत करो।

पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पय निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, खावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुरु बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैठे, नारे ना पुरख कहो कहो कैसे, त्रिभुवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल तय काटन हारे, हो मैं मार मिले भगतारे, अनिक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, सनासरी मैला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, ना स्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जह देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुरु पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुरु करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुपेखे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पड़ पर फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पै उदासा, मन मैले सूचा क्यों हुए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभ तुझ सा लाही, तुद बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुद पावे त्यों राख रजाए, नानक सहज पाए।

जायो मानस जन्म संयोग पाया ताकि है ओत साध राखो दे कर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म प्रमचित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकुर सो मेरा रंग लावे परे रे सगल वेद नह चूके मन तेद एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगल अश्रम कीने मनुआ ने पति ने विवेकहीन देही तोए कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों के खै मन हठ जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभु की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी को प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पेत्यो निरपय गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल जातरा हावन जान रहे।

तीरथ नामन जाओ तीरथ नाम है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशाहरा। हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ करनी तरा। संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। गुरवाक निर्मल सदा चानन नित सात तीर्थ मजना। साच ना लागे मैल क्या मल धोइए। गुणे हार परोए किसको रोइए। विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे। आप पारस परम त्यानी साच साचे भावे। आनंद अनदिन हर्ष साचा दुख किल रिख पर हरे। सच नाम पाया गुरु दिखाया मैल नाही सच मने। संगत मीत मिलाप पूरा नावनो। गावे गावन हार सब सुहावनो। साला है साचे मन सतगुर पुन दान दयामते। तिर संग पावे सहज नावे बेड़ी त संगम सत्सते। आराध एकंकार साचा नित दे करे सवाया। गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया। कहन कहे सब को एके वड आखी है। हौ मूर्ख नीच अजान समझा साखी है। सतगुर की साखी अमृत पाखी तित मन मान्या मेरा। पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा। आखन कोट न पगत पंडारी पर पुर रहे सोई। नानक सात कह बेनंती मन मांजे सच सोई। सनासरी मेला पहला। जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो। साचो साचा नाव गुण गोविंद है जियो। गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा जिन सृजी तिन गोई। परवाना आया हुकुम पठाया फिर न सच्चे कोई। आपे कर वेखे सिर सिर लेखे आपे सुरत बुझाई। नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई। तुम सर अवर न कोए आया जाए सी जियो। हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो। गुर परम चुकाए अकत सहाए सच में साच समाना। आप उपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना। सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई। नानक साहिब अवरना दूजा नाम तेरे वड्याई। तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो। एक साहिब दोए रहा वाद वदंदे आजियो। दोए रहा चलाए हुक्म सबाए जन्म हुआ संसारा। नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा। हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारन हारा। नानक साहिब सबक सिंजापे साचा सिरजनहारा। भगत सोहे दरबार शब्द सुहाया जियो। बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो। रसन रसाए नाम तिसाए गुर कै शब्द विकाने। पारस पर से पारस होए जा तेरे मन पाने। अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी। नानक भगत सोहंदर साचे साचे के वापारी। भूख प्यासो आस क्यों दर जाए सा जियो। सतगुरु पूछो जाए नाम ते आए सा जियो। सच नाम ते आए साच चवाई गुरमुख साच पछाणा। दीना नाथ दयाल निरंजन अंदन नाम वखाना। करनी कार तुरु फुरमाई आप मुआ मन मारी। नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी। तनासी संत मैला पहला। तिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जियो। मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो। लेख ना मिटई पूर्व कमाया क्या जाना क्या होसी। गुणी अचार नहीं रंग राती हम गुण बै बैरोसी। तन जोबन आख की छाया बिर्द पए दिन पुन्या। नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुन्या।
बूढ़ी कर का लियो गुर के पाए चलो, साचा नाम से आए पावे सुख मैलो, हर नाम से आए ता सुख पाए, पेयड़े दिन चारे निज कर जाए बह सत पाए, अन दिन नाल प्यारे बिन पगती कर वास न होवी, सुनियो लोक सभाए नानक सरसी ता फिर पाए, राती साचे नाए फिर तन पावे ता फिर पावे, नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर के शब्द विचारी, जियो गुर शब्द विचारी ना प्यारी, निज निज भगत करे माया मोह जलाए, प्रीतम रस में रंग करे प्रभ साचे सेती, रंग रंगेती लाल पई मन मारी, नानक साच वसी सोहागण फिर स्यो प्रीत प्यारी, फिर कर सो है नार जे फिर पावे, जियो झूठे वैन चवे काम ना आवे, जियो झूठ अलावे काम ना आवे, ना फिर देखे नैनी अवगुणियारी, कंत विसारी छूटी विदन रहनी, गुर शब्द ना माने फाई फाथी सा तन मेल न पाए, नानक आपे आप पछाणे गुरमुख सहज समाए, तन सुहागण नार जिन फिर जानिया, जियो नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया, जियो हर भगत सुहावी साचे भावी, पाए भगत प्रभ राती तिर रलियाला, जो बन बाला तिस रावे रंग राती, गुर शब्द विगासी सोरा वासी फल पाया गुणकारी, नानक साच मिले वडियाई तिर कर सो है नारी। तनाश्री संत महला चौथा कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है, जियो सतगुर मिले सुभाए सहज गुण।

सहज नाम समावे। आप करता करे सोई, आप देह सा पाए, हर जियो कृपा करे ता नाम।

हलत पलत शोभा जग अंतर राम नाम लिव लागी। हरख सोग दोहा ते मुक्ता जो प्रभ करे सोभावे, सत संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो, हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो। माया दुख मोया हों मैं रोया, मेरी मेरी करत जिहावे। जो प्रभ दे तिस चेते नाही अंत गया पछतावे। बिन नामे को साथ ना चाले, पुत्र कलत्र माया तोया। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो, सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो। प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे, हुक्म मन सुख पाया। अन दिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम से आया। नामो नाम मिली।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं गुन जाना। चार वेद अर सिमरत पुराना, कमला पत कवला नहीं जाना। कह कबीर सो पर मैं नाही, पगलग राम रहे सर नाही।

रहाओ। जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो, ज्यो जल जल में पैस ना निकसे, त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन कांसी तजे कबीरा, रमैये कहां निहोरा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई, क्या कांसी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई। इंद्र लोक शिव लोके जैबो, पूछे तप कर बाहुर ऐबो, क्या मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही। रहाओ सोबा राज बिबे बड़ियाई, अंत न पाहू संग सहाई, पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, इनते कहो कमने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई। रहाओ बनता सुत दे ग्रे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजामल गज गनका।

ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाए जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ कर।

बारह जो जन छकर चले था, देही गिरज न खाई, सर्व सोयन की लंका होती, रावण से अधकाई, कहां भयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा स्यो करत ठगौरी, जादव ए फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए। दस बैरागन मोह बत्कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दो परे अमृत सर, बिख को मार कडावो, पाछे बौर न आवन पावो, अमृत बाणी करते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया न लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, ते तज दर्शन पावो। इत कर भगत करे जो जन, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम दियो बाहर क्या परमो, ए संजम हर पाई है। मारवार जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो कुरंक निस्नाद बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो, अतरंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पवरला, जो कोकिल को अंब बालहा, क्यों मेरे मन रामैया। चकवी को जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसुला, जो तरणी को कंत बालहा, त्यों मेरे मन रामैया। बारिक को जैसे खीर बालहा, चात्रिक मुख जैसे जल तरा, मछली को जैसे नीर बालहा, त्यों मेरे मन रामैया। साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला। पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसा बिरा, अथोन पुरसाद मरा, असदा अस उसदा हर का बागरा, नाचे पिंडी में सागरा रहाओ।

जमकारणा। पतित पावन माधो बिरद तेरा, तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा। मेरे माथे लागी।

गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तना श्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एक जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सके रहाओ साध संगत बिना पाव नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर्ष्यों पैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे रहाओ। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई पय उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे। तनाश्री बाणी भगता की त्रिलोचन इको ओंकार। सतगुर प्रसाद नारायण निंदस काए फूली गवारी दुकृत सुकृत थारो कर्मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफी तसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे। स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा कर्म कर अरुण पिंगलारी अनित पातक हरता त्रिभुवन नाथरी। तीरथ तीरथ प्रमता लहे न पारवी कर्म कर कपाल मफी तसरी। अमृत सत्य तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथं। कर्म कर खार मफी तसरी दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण। बन फल बिसल आन तोखी ले हरी कर्म कर कछौटी मफी तसरी। पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोह जापी अले। राम चे नामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन। तूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ। उत्तम दियरा निर्मल बाती तू ही निरंजन कमला पाती। रामा भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने। मदन मूरत पैतार गोविंदे सैन पने पज परमानंदे। पीपा कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाती कायो तूप दीप नहीं वेदा कायो पूजो पाती।
काया बहु खंड खोजते नव निद पाई, ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु होए लखावे। सन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सवारता रहाओ। दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया साधननी का अनाज मंगो सबसी का, गौ पैस मंगो लावेरी इक साजन तुरी चंगेरी, सार की गीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी। जैसरी महला चौथा कर पहला चौप दे इकोंकार सतगुर प्रसाद। मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया, गुर हाथ तरयो मेरे माथा, जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन पज राम नाम सब अर्था, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ। बिन गुर मूड पए है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा, तिन साधु चरण न सेवे कबहु, तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल्यो जन्म सनाता। मोको की जय दास दास दासन को, हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चले मिलन था। जैसरी मैला चौथा। हीरा लाल अमोलक है पारी, बिन गाहक मीका खाका। रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बिकानो लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु। गुर मिले हीर पराखा रहाओ, मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा। तिन कर रतन न लाखा, ते उजड़ परम मोए गावारी, माया पुअंग दिख चाखा। हर हर साध मेलो जननी के, हर साधु शरण हम राखा। हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी, हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाने, तुम वड अगम वड पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी, पाखान डुबत हर राखा। जैसरी महला चौथा। हम बारक कछु न जाने, गत मित तेरे मूरख मुग्ध याना। हर कृपा तार दीजे मत उत्तम, कर लीजे मुग्ध सियाना। मेरा मन आलसिया उगलाना, हर हर आन मिलायो गुर साधु। मिल साधु कपट खुलाना रहाओ, गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे ही रे। मेरे प्रीतम नाम पराना, दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर, ज्यो अमली अमल लुवाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी, तिन तुर पाग पुराना। तिन हम चरण सरे वे खिन खिन, जिन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर, जन बिछरिया चिरी मिलाना। तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया, जन नानक तिस कुर्बाना। जैसरी मैला चौथा। सत गुरु साजन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लागबा। माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुर बचनी बिस हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतित पवित्र मिल साध। गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ,
तन तन वड भाग मिलियो गुरु साधु, मिल साधु लिव उन मन लाग बा, तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गाए बा, तिनके भाग खीर तुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाए बा, ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाए बा, हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे, हम हर मीठ लगाए बा, जन नानक रेण साध पग मांगे, हर होए दयाल दिवाए बा। जैतरी महला चौथा, जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जय हर बांजा, तिन सुन्नी दे फिरें बिन नावे, होए खप खप मोए करांजा, मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ, हर कीरत कल युग पद उत्तम, हर पाई है सतगुरु माजा, हाँ बलिहारी सतगुरु अपने, जिन गुप्त नाम पर गाजा, दर्शन साध मिलियो वडपागी, सब किल विख गए गवाजा, सतगुरु साओ पाया वडदाना, हर किए बहुगुण साजा, जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उतारियो मन माजा, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जैत श्री महला चौथा, सत संगत साध पाई वडपागी, मन चल तो पयो अरूड़ा, अनहत तुन वाजे नित वाजे, हर अमृत तार रस लीड़ा, मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई, सतगुर हर मिलियो लाए चपीड़ा, रहाओ साकत बंद पए है माया, बिख संचे लाए जकीड़ा, हर के अर्थ खर्च नह साके, जम काल सहे सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुरु साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा, हलत पलत हर शोभा पावे, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु।

जन नानक प्रीत लगी पग साध गुर मिल साधु पाखान हरयो मन मूड़ा जैसरी मैला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगम अपारा जित सिमरत दुख मिटे हमारा हर हर सतगुर पुरख मिलावो गुर मिले सुख होई राम हर गुण गावो मीत हमारे हर हर नाम रखो उधारे हर हर अमृत बचन सुनावो गुर मिले प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माडो प्राणा मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना हर हर दया करो गुर मेलो पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता हर के रंग मेरा मन राता हर हर महापुरख गुर मेलो गुरु नानक नाम सुखोई राम। जैसरी महला चौथा हर हर हर हर नाम जपाहा गुरमुख नाम सदा ले लाहा हर हर हर हर भगत दृढ़ावो हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा हर के रंग सदा गुण गाहा हर हर हर जस कुमर पावो मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा सुन हर कथा नाम ले लाहा हर हर कृपा तार गुर मेलो गुर मिले हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा खिन खिन राम नाम गावाहा मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते हर नानक भगत ओ महाराम। जैसरी महला चौथा रस रस राम रसाल सलाहा मन राम नाम पीना ले लाहा खिन खिन भगत करे दिन राती गुरमत भगत ओ महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा मन तन जीत शब्द ले लाहा गुरमत पंच दूत वस आवे मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा हर गुण गाए सदा ले लाहा दीन दयाल कृपा करमा दो हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा हर हर जगन्नाथ जग लाहा तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे जप नानक भगत ओ महाराम। जैसरी महला चौथा आपे जोगी जुगत जुगाहा आपे निरपव ताड़ी लाहा आपे ही आप वरते आपे नाम ओ महाराम। आपे दीप लो दीपाहा आपे सतगुर समुंद मथाहा आपे मथ मथ तत कड़ाए जप नाम रतन ओ महाराम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा गुरमुख नाम जपो हर लाहा हर हर भगत दृढ़ी मन पाई हर हर नाम ओ महाराम। आपे वड दाना वड साहा गुरमुख पूंजी नाम विसाहा हर हर दात करो प्रभ पावे गुण नानक नाम ओ महाराम। जैसरी महला चौथा मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वे साहा हर हर कृपा तार मधुसूदन मिल सत्संग उमाहाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा कर कृपा सतगुरु मिलाहा गुण गावे गुण बोले बाणी हर गुण जप उमाहाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा हर हर नाम ना पुजे पुजाहा हर हर अतुल तोल अत पारी गुरमत जप ओ महाराम। सब कर्म तर्म हर नाम जपाहा किलविक

सतगुर प्रसाद। कोई जाने कौन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विध बूझे, ताकि निर्मल रीत रहाओ, मात पिता बनता सुत बंदत, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाय, मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवदह, तामह संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी, पूमन चतरांगा, संग न चालियो इनमें कछुए, ऊंट सिदायो नांगा, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाये, नानक की हां सुख आगे मुख उजल, संग संतन कह पाये। जैत सरी महला पंजवा, करती जा दुपदे इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। देहो संदेशरो कहियो प्रिय कहियो, विषम पई मैं बहु विध सुनते, कहो सुहागन सहियो रहाओ, को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब महियो, वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए, सुहागन शांत बुझियो, सर्व निवासी कट कट वासी, लेप नहीं अल्पयो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बचहियो। जैत सरी महला पंजवा, तीरो सुन तीरो प्रभु को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरो पेश प्रभु को नीरो, बेकुमार बेअंत बड़ दाता, मन है गहीरो पेख प्रभु को, जो चाहो सोई सोई पावो, आशा मनसा पूरो जप प्रभ को, गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को। जैत सरी महला पंजवा, लोड़िंदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट तिसे बसेरा रहाओ, सुख अरादन दुख अरादन, बिसरे न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर।

तेरा संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा। वैसरी महला पंजवा कल चौथा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहंक छोड्यो है त्याग रहाओ जो देखो तौ सगल मोय मोहियो तौ शरण पर्यो गुर पाग कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जाओ संत पेटे वड पाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग। जैत सरी मैला पंजवा मन में सतगुरु ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ ताल जाल अर महाजंजाला छुटके जमे डरा आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा अपियो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा जाको पय गोविंद सहाय सुख सहज आनंद सगल स्यों वाको ब्याज न काई रहाओ दीसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुध पाई दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुण गाई। जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप हार परयो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप। जैत सरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों दे वै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपा ते महा बिखिया ते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन

पंजवा चात्रिक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेख देह आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरना ते हैं हम अनाथ ना

ज्ञान कर कृपा साधु संग पेटे पूरन पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगोरी जिनको पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कह न जाई कुदरत कवन हमारी लाए लाए लड़दास जन अपने उदरे उदरन हारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जैत सरी मैला पंजवा आए अनक जन्म प्रम

न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाय तरणी। सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी। जैत श्री मैला पन्नवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ। कोट बिगन बिनसे हर सेवा नेचल गोविंद काम पगवंत पगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम। ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय।

फूल्यो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रचियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन कौता।

महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा कै मरबे को बिसरत नाहिन ते चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस को उठ धाया काट ही पीतर बसे निरंजन ताको मर्म न पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप कौन कर्म अब की जय नानक हार पर्यो शरणागत अभय दान प्रभ दी जय। जय श्री महला नावा। मन रे साचा गहो बिचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसारा रहाओ। जाको जोगी खोज तुहारे पायो ना इतने पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाए संभारा नानक शरण पर्यो जग बंदन राखो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा। संत कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। दर्शन प्यासी दिन सुरात चितवो अन दिन नीत खोल।

आप गवाया जय तन पाग मथाने बहा पकड़ ठाकुर हौ खिद्दी गुण अवगुण ना पछाने गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किछ सुहंदा जन नानक तन सुहागन साई जिस संग पतार वसंदा यार वे नित सुख सुखेंदी सा में पाई वर लोड़ींदा आया वजी वधाई मां मंगल रहस थिया फिर दयाल सद नव रंगिया वड पाग पाया गुर मिलाया साध के सतसंगिया आसा मनसा सगल पूरी त्रै अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सु

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूली है मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूली है लूक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया सलोक निरत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाई है आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाई है तज मान मोह विकार दूजा एक स्यों लिवलाई है अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाई है बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाई है श्लोक रे मन पासो त्याई है सब विद्या के हाथ राम नाम तन संचिय नानक निभे साथ संत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मई अल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुणता के क्या गनी पज शरण स्वामी सुख गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति जोत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिक बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया की ने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैसरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गर्व अटिया करते पाप अनेक माया रंग रटिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीत ना आवे पुत्र मित्र व्योहार बनता ए करत बिहावे कुछ दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु ना आवे बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हारंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक परमे परमाए खिन एक टिकन न पावही जोगन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया नह नैन दीस है बिन भजन ईस है छोड़ माया चालिया कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूरन ने निमख मन में वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया चरण कमल शरणाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया।

अखंड ब्रह्मंड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास।

कदाचन सिमरंत नानक तेजंत विस्तार में मुझे अडंबर हब क्यों मंज मोहब्बत ने।

छतर चमर तक आसनं रटंत मूड अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबर।

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

नच भोग रश्मिस्तं नच मिस्तं सुख माया मिस्तं साध संग हर नानके दात मिस्तं प्रभु दर्शनं लगना सोने मन मजाहू रतिया विधड़े सच थोक नानक मिठड़ा सोधनी पौड़ी।

दौलत भला संजोग है जित मिले गुसाई। आठ पहर हर ध्याय कै मनीष पुजाई। वडे भाव सत्संग।

जपंत नानक हर हर हरे। छड़ियो हब आपे लगनो चरणा पास नठड़ो।

करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तने। दयाल।

भोजन भिखम असगाम गुर बोते तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी।

اجو نہ پتے آئے نگم بھے ساکھی گوتم نار اما

ऐसो अमर मिल्यो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा मरा, हर जने नहीं निकटानी। निरपो होए रहे लिव एकै, नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा, हर बिसरत सदा खुआरी। ताको तो खा कहां ब्यापै, जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे, अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन्ही गाए, जाको कृपा धारी। सो सुखिया तन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा, कर दूजा चौपदे एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद आयो रे मन दह दिस्तायो, माया मगन स्वाद लोभ मोयो। तिन प्रभ आप भुलायो, रहाओ। हर कथा हर जस साध संगत स्यो, एक मोहत ना ए मन लायो। बिकस्यो पेख रंग कुसम को, पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो, ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बहु पाती, ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो, एक निमख न कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोख्यो, न बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए, नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट, मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर, भगत वचन सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे, राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा, मानुक बिन बूझे बिर

आया अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया रहाओ। ताए ताए कृपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज न आया। कर अपरण सवारी से जा कामन थाट बनाया संग न पायो।

भयो अनुग्रहो जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निद बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो महापतित ते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो त्वारो पावो जो तू दे सही ए तृप्त है आन न कथू तावो सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभु अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभु हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग ना चाले मिले कृपा गुणगाम रहाओ राज माल अनेक पोगरस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविद को तावे सगल निरारथ काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है खाम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगार है।

योग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रह इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहले सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। टोडी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता लाए हमारी, रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। हम निर्गुण लेहो बारी। सद बख्शिंद सदा मेहरवाना, सबना दे अधारी। नानक दा संत पाछे पर्यो, राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निद गायन, सांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलायन रहाओ, जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहुते छूटे। कवजल जगत तरायन, खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे। जे नानक सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा। निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला। शिव कै बाण सिर काट्यो।

जाल जाल जम जोहे ना साके सच का पंखा थाट्यो खात खर्चत किछ निखुटत नाही राम रतन तन खाट्यो पसमा पूत हुआ खिन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखे लोग सवाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किलविख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को इक हरे रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत थाम न जाही करे जिसका बोहित तिस आरादे खोटे संग खरे गली सैल उठावत चाहे ओए उहां ही है तरे जोर सकत नानक किछ नाही प्रभ राखो शरण परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुख रास पाप

बाल बुद्ध पूरन सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवा। हर हर नाम सदा सद जाप पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नी आप रहाओ। जिसके से फिर तिन ही संभाले बिन से शोक संताप हाथ दे राखे जन अपने हर होए माई बाप। जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हर नाथ नानक शरण परे दुख पंजन जाका बड़ प्रताप टोडी महला पंजवा। स्वामी शरण परे ओ दरबारे कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारे रहाओ। खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ विचारे साध संग परम गत पाये माया रत बंधारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप।

आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ, नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो, सो संचयो जित पूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो, काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। टोडी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी, आन अवर सिंहान न करी रहाओ, वड़े पाग गुर अपना पायो, गुरमो को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर त्याय कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिसके।

देखा गुरमिल परम गवाया है ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्भ गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो डीहर न्याई मोहे।

आए संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्रासित मिट्यो रे। जा को लैणो महराज री गाठड़ियो।

ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग ए तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते, गुरु को शब्द मेरा ही रह दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हरखे पतीन। तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म तरम जप एही, राम नाम निर्मल है रीत। रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत। बाट काट तो सा संग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पे मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक ही रहते। अपने भगत को पूरन दान, रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम। अंतर जामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान। आठ पैर रसना गुण गावे, जसपुर अगावे समरथ कान। तेरी

दीन दयाल प्रीतम मनमोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ दह विस रव रया जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जस गावे करते से जन कहो न मरते चूर कंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग।

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ। सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नास। पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास। सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन।

सब बेता रिद्धदास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन विस्मन विषम पय विस्मादा आन न बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियान बहु चतुराई दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस देखा ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुरु मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरु डीठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनते मद पीठे अस्थिर पै सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर पजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुर पूरा पेट्यो बड़ पागी जा को अंत न पारा वारा कर गए काढ लियो जन अपना दिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुर न संकट द्वारा नानक शरण गए।

तार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गई सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उधार सिमर स्वामी सतगुरु अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पारगम अपने कीने तिनका बहुर कछ ना विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नावा

कनक कामनी के रस नह कीरत प्रभ गाए रहाओ। जब चूठे को साथ जान के पासों रुच उपजाई, दीन बंद सुमरियो नहीं कभू होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस दिन छुटी न मन की काई, कह नानक अब नाहि अनत गत बिन हर की शरणाई।

कोई बोले निर्वा, कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिने छपायो, रहाओ पंडित होए के देख बखाने, मूरख नाम जो राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित भय राम कहत ही, रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव।

कुम्हार के पर हांडी अच्छे राजा के कर सांडी दो बामन के कर रांडी अच्छे रांडी सांडी हांडी गो बाणे के कर हिंग अच्छे पैसर माथे सिंह गो देवल मदे लीग अच्छे लीग सीग हीग गो तेली के कर तेल अच्छे जंगल मदे देल गो माली के कर केल अच्छे केल बेल तेल गो संता मदे गोविंद अच्छे गोकल मदे श्याम गो नाने मदे राम अच्छे राम श्याम गोविंद गो राग बैराली महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे पज गुरमते हर राम राम रहाओ नाना ज्ञान पुराण जस उत्तम खट दर्शन गावे राम शंकर करोड़ तेतीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नारे गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत पले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुरु दान दिवायो रहाओ किस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपै किस देवो जिन हर मीत मिलायो किन किन चक कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस प्यायो जन नानक को हर पेते स्वामी दुख हमें रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो कुछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे हर आपे पंच तत्व विस्तारा विचता तू पंच आप पावे।

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोटन करके पाप सब खो गए, हर पवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निरपो निर्वैर निरंकारा, हर मुक्त बस्त कछ नगर न आवे, हर लादा गुरु विचारा। हर आपे साव सराफ रतन हीरा, हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर त्याय सुखदाता जहाँ का अंश न पारावारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर रात है उधर मंजारा सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंश छदावन हारा। जहाँ के हृदय बसिया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कारा हर कृपा के पाये हर जप नानक नाम आधारा। बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम हित त्याए जो इच्छे सोई फल पावे फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर्षो प्रीत लगाए दिन हर प्रीत होर प्रीत सब चूठी एक दिन में बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा किस कीमत कहीं न जाए नाम के शरण तुम।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। राज तुलंग महला पहला कर पहला

मैं दर मांगत पीखिया पाए रहा केसर कुसुम मृगम हरणा सर्व शरीरी चरना चंदन पगता जोत नेही सर्वे परमल करना। क्या पट पांडा कहे ना कोए ऐसा पगत वर्ण में होए तेरे नाम निवे रहे लिव लाए नानक सिंह दर की।

लीतना लब रंगाए। मेरा कंत न भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों तन से जय जाए। हो कुर्बाने जाओ मेरवाना, हो कुर्बाने जाओ, हो कुर्बाने जाओ।

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामन कंते भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला प्यामड़िए मानरा काय।

करम करम दो छपल होए कूड़ सिरे प्रधान वे लालो काजना बामना की जल थकी अगर पड़े शैतान वे लालो मुसलमानियां पढ़े कतेबा कष्ट में करें खुदाए वे लालो जात सनाती होर हिंदवानियां एदी लेखे लाए वे लालो खून के सोई ने गावे नानक रत का कुंगू पाए वे लालो साहिब के गुरु नानक गावे मासपुरी आत्म सोला जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वक्त अकेला सच्चा सो साहिब सच तपास सचना न्याओ करे गुम सोला काया तपल टुक टुक होसी हिंदुस्तान समाल सी बोला आन अड़त्रे जान सतानवे होर भी उसकी मर्द का

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहिब साचा केले सब हर तनी साला है सच सब ऊपर हर तनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ कौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्त नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में दिन सह सब झूठ मेरे मन से आए रामा रहाओ सावेला चित ना आवे जित आए चंतक काल ग्रस है किस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै।

तेरा जोर तेरी मन सेत सदा सदा जप नानक एक सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार तेरी टेक तेरा आधार रहाओ है तू होनहार अगम आगाद ऊंच अपार जो तुझ से है तिन पौ दुख नाही गुर प्रसाद नानक गुण गा है जो दिन सहसो तेरा रूप गुण निदान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक करम प्राप्त होए जिन जपया किसको बलिहार किसके संग तरह संसार करुणा नानक।

अचरज तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे में दीप। खुद कसम खलक जहान अल्लाह मेहरबान खुदाए दिन सुरैन जे खुद अरादे सो क्यों दोजक जाए। अजराइल या

वारी कंक लिया सुहागनी मैं ते वदनी एहे से गुण मुझे न आवनी कै जी दोष करे हे जिनी सखी सौरावया तिन पूछोगी जाए पाए लगो बेनती करो लियोगी पंथ बताए हुकम पछाने नानका तो चंदन लावे गुण कामन कामन करे तो प्यारे को पावे जो दिल मिलिया सो मिल रहा मिलिया कही रे सोई जे बो तेरा लोची है बाकी मेल न होई ताप मिले कुन ताप को लिव लिवे को तावे गुर पर सादी जानिए तो अन को पावे पानावारी हुए कर खर सार न जाने रसिया होवे मुस्का तब फूल पछाने अप्यो पीवे जो ना

हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया। बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया। आए मिल गुर सुख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ। हर ते गुण हर पाऊंगे से गुरु ते पाए। जिन गुर का पाना मन्या तिन तुम कुम जाए। जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को है वारी। जिन गुर की चाकरी तिन सद बलिहारी। हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा। गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना। तिन वित्तो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। सा हर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे। जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे। जिना हर से की पिरहड़ी तिना जीव प्रभ नाले। कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया। कोई आप छुटे परवार सो सब जग छाया। गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तनो। गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो। जो

गुरु प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुरु के प्यार रंग रलिया माने सतगुरु दाता आखिए उस परे पसाओ हौ गुरु विटो सदवारिया जिन बिटड़ा नाओ सो तन गुरु सावास है हर देख नेहा हौ वेख वेख गुरु विकसिया गुरु सतगुरु देहा गुरु रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुरु मन्या तिन्ना पुख सब जावी हर का मार्ग आखिए कहो कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वद दाने हौ सतगुरु को सगवारिया गुरु बचन समाने तू ठाकर तू साहिबो तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी।

तेज कतेज इस तरह पाई दिल का फिक्र न जाए, सुख दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, ते जो दुनिया सिर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताहे, हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान म्याने लहंग दरिया गुसल करदन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर हो।

तार क्या करी नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी बल बल जाओ हो बल बल जाओ नीची तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ कुजा आमद कुजा रखती।

चंगी हजार आलम एकल खाना हम सुनी पाक्षा सामले बरना अस्पत गजपत नर नरिंद नाम के स्वामी मीर मुकंद।

दूध करम पुन सुरत समायण होए निराश जमावो। जपो ताए को नामा अवर निराशुल कामा रहाओ। ए मन की हाथ करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिय इन दिग अमृत पावो। मन संपटे जित सत्सर नावन तावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रहे। कहें कहे कह जावे तुम सर अवर न कोई।

अंतर वसे ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिखाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सोचा कर होए, जल तल मैयल रव रहा।

साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण होवे गंठड़िया मेले दा सोई मिलिया होए ना विछड़े जे मिलिया होई आवा गुण निवारिया है साचा सोई हों मैं मार निवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया सहते अमृत बोला नानक तह कहे लियो सौ खरा प्यारा हम सह केरिया दासियां साचा कसम हमारा सुई महला पहला जिनको पांडे पाओ तिना सवार सी सुखी करे पसाओ दुख विसार सी सहसा मूले नाने सर प्रकार सी तिना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया अमृत हर का नाम देवे दिखिया चाले सतगुरु पाए पवे ना सीखिया जा को महल हजूर दूजे निवे किस दर दरवाई नाहे मूले पुछ तिस छुटे ताके बोल साहिब नगर जिस कल्ले आए आप जिस नाही दूजा मते कोए चाहे उसारे साज जाने सब सोए नाव नानक बख्शीस नदरी कर्म होए सुही महला पहला पांडा हच्छा सोए जो तिस पावसी पांडा अतमलीन तोता हच्छा न होए सी गुरु द्वारे होए सो जी पाए सी एक द्वारे तो हच्छा होए सी मैंने हच्छे का विचार आप वर्ताए सी मत को जाने जाए अग्गे पाए सी जे ही कर्म कमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाम आप वर्ताए सी चलिया पक्षों जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या विचारा ते लोक सुनाए सी नानक आप निहाल सब कुल तार सी सुही महला पहला जोगी होवे जोग वे पोगी होवे खाए तपिया होवे तप करे तीर्थ मल मल नाए तेरा सदना सुनी जय पाई जे तो बह अलाए रहाओ जैसा बीज है सो लुने जो खते सो खाए अग्गे पुछ न हो गई जैसा निशाने जाए कैसो जैसा काढ़िए जैसी कार कमाए जो दम चित ना आवई सो दम दिखा जाए ए तन वेची बैकरी जे को ले विकाए नानक कम ना आ

जोग ना कुंसा, जोग ना दंडे, जोग ना पसंद कराये, जोग ना मुंडी मूल मुडाये, जोग ना सुनिवाये, अंजन मन निरंजन रही है, जोग जुगत तुर पाये, गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई रहाओ, जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना तारी लाये, जोग ना देश दिशंकर पवे, जोग ना तीर्थ नाये, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, सतगुरु पेटे कांच ऐसा टूटे, तावत वर्ज रहाई है, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाये, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, नानक जीव पिया मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजो सुजी वाजे तो निरपो पद पाये, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाये, सुई महला पहला, कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब बुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कह कह मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैया।

रहा वा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वंजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना वे तिल जा।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सब गुर केरी, गुण गावे हर प्रब के, हर कृपा तार मेलो सब संगत, हम तो में पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाठी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से दाल दलगा, तौ जन्म मरना मेट्यो गुर तब्दी, हर अस्थिर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आ गए, सिर बेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राज रंग रसमान, दिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हाथ पलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वडे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सद तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर पुठे हर रंग चालिया, फिर दौड़ न होली पंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुठे हर उपदेशिया, हर के प्यारा निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रवचित न आयो मन दूजा पाओ सैलंग, हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाते किलित पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, निर संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सुही महला चौथा, हर हर करे नित कपट कमावे, हिरदा सिद्ध न हुई, अंगिन कर्म करे वो तेरे, सुखने सुख न होई। ज्ञानी गुरबिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पाए खुआई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा जय विस्तावे, होमे व्याप्या शब्द न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो बूजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए समाए। सुही महला चौथा, कर दूजा इक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गुरमत नगरी खोज खोजाए, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई, कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुर मिले सब दुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीना मेरी माई, सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रभु प्यारा टूट टुड़ाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा।

नानक हर रस हर रंग समावे, तू ही महला चौथा। जेवा हर रस रही अघाए, गुरमुख पीवे सहज समाए। हर रस जन चाखो जे पाई, तौ कत अनत साध लो भाई। रहाओ गुरमत रस रासो उर्धार, हर रस राते रंग मुरार। मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, हों मैं करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदासी सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकत कथा सुनो जन पाए, जित सहसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रवदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमस इक गाए। पतित जात उत्तम भया चार वरन पे।

दूजै पाए साकत कामना, अर्थ दुर्गंध स्त्रेम दे सो नेफल सब अज्ञान। जिसनो प्रतीत होवे तिसका गावया थाए पवे, सो पावे दरगे मान जो बिन प्रतीत।

मैं होर काओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख तुझ ही पासे। विचे धरती विचे पानी विच कास अगन तरी जाए, बकरी सिंह इक तै थाए राखे, मन हर जब परम को दूर की जाए। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाने आमान दिवाए, जो धरती चरण तले के ऊपर आवे, त्यों नानक साथ जना जगत आन सब तैरी पाए। तू ही महला चौथा तू करता सब किस आपे जाने, क्या तुझ पे आप सुनाई है, बुरा पला तुझ सब किस सूझे, जेहा को करे तेहा को पाई है। मेरे साहिब तू अंतर की दिव जाने, बुरा पला तुझ सब किस सूझे, तुझ पावे तिवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानस भगत कराए, इतना सतगुर मेल सुख देवे, एक मनमुख तंद पिटाए। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुझ सबना सिर लिखिया लेख, जे ही तू नजर करे तेहा को होवे, बिन नदरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जाने, सब तुझनो नित त्याए, जिसनो तुझ पावे तिसनो तू मिले, जन नानक सो थाए पाए। कोई महला चौथा जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पे जिन हर नाम से आया, तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन आरोग भय, गुरबचनी जिना जपया मेरा हर हर, तिनके हो मैं रोग गए रहाओ। ब्रह्मा विष्ण मां दियो त्रै गुण, रोगी विच हो मैं कार कमाई, जिन किए तिसे न चेते बपड़े, हर गुरमुख सो जी पाई। हो मैं रोग सब जगत व्यापिया, तिनको जन्म मरण दुख पारी, गुर प्रसादी को विरला छूटे, तिस जन को हो बलिहारी। जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने, ताका रूप अपारो, नानक आपे।

रखी है। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किस कर हम साके, ज्यो पावे तिवे बस रहाओ। सब जियो पिंड दिया तुद आपे कार लाया, जिहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे, जिहा तू तुर लिख पाया। पंच तत् कर तुद शिष्ट सब काजी, कोई सेवा करियो जे किसीता होवे, इक ना सतगुर मेल तू बुझावे, इक मनमुख करे सिरोवे। हर की वड्याई हों आख ना साका, हों मूरख मुगद नीचा।

तल फल मैयल रे आपरपूर, निकट वस्ते नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाइये, साथ लगे ताहो मैं जाइये। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर जिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुरु प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोर करो अरदास, खुद पावे ताने रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभु सदा ते आए। सूही महला पंजवां। तन सुहागन जो प्रभु पछाने, माने हुक्म तजे अभिमाने। त्रैस्यों राती रलिया माने, सुन सकिए प्रभु मिलन निशानी। मन तन अर्प तज लाज लोकानी, रहाओ सखी सहेली को समझावे। सोई कमावे जो प्रभु पावे, सा सुहागण अंक समावे। गर्भ गहेली महल ना पावे, सिर पछतावे जब रैन बिहावे। कर्महीन मनमुख दुख पावे, बिनो करी जे जाना दूर। प्रभ अविनाशी रहा भरपूर, जन नानक गावे देख दूर। सुही महला पंजवा। गृहवास गुर की ना हो कर की नार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल समग्री मैं कर की जोड़ी, आस प्यासी तिर को लोड़ी। कौन कहा गुण कंत प्यारे, सुगर स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे। गुण कामन कर कंक रिझाया, वस्त्र लीना गुर परम चुकाया। सबसे ऊंचा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागी प्रियो प्रीतम मेरा। प्रगटिया सूर जोत उजियारा, सेज बिछाई सर्द अपारा। नवरंग लाल सेज रावण आया, जन नानक फिर तन मिल सुख पाया। सुही महला पंजवा। उम क्यों हियो मिलन प्रवताई, खोज चरयो देखो प्रह जाई। सुन सदेश रो प्रह गृह सेज बिछाई, प्रम प्रम आयो तो नदर न पाई। किन विद हीरो तीरे निमानो, मिल साजन हो तुझ कुर्बानो। रहाओ एका सेज विछी तन कंका, तन सूती तिर सज्जा गंता। पियो मधुरो तन मतवंता, तन जागे जे तिर।

क्या सेव कमावो क्या कहरी जावो विद पित पावो दर सारे मित नहीं पाये अंत न लइए मन तरसे चरनारे पावो दान टीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक को।

कुचल कठोर कामी मुक्ति जय। दर्शन देख की वड्याई तुम सुखदासे पुरख वाई। रहाओ दूजा सुही महला पंजवा। बुरे काम को ऊट खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। अवसर अपना बूझे ना आना, माया मोह रंग लपटाना। रहाओ लोभ लहर को बिगत फूल बैठा, सात जना का दर्श ना जीता। कभू ना समझे अज्ञान गवारा, बहुर बहुर लपट्यो जंजारा। रहाओ बिके नाद करन सुन पीना, हर जस सुनत आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखत अंधे, छोड़ जाए चूठे सब तंदे। रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय। कर कृपा मोहे साथ संग दी जय। तो किस पाई है जो हो ये रे ना, जिसे बुझाए किस नाम लेना। सुई महला पंजवा, कर में ठाकुर नदर ना आवे। गल में पान ले लटकावे, परमे पूला सात फिरता। नीर बिरोले खप खप मर।

गुर मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, सुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बतावो मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवी अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पा मलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम देव जतीरी, एक निमुख मिलावो मोय प्राण पतीरी, मान तान अहं बुद्ध हतीरी, सा नानक सोहा।

तै खरीद हों दासरो तेरा तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा कोट दास जा कै दरबारे निमक निमक वसै तिस नाले हों किछ नाही सब किछ तेरा ओत पोत नानक संग।

चाहे गीत नाद अखारे संगा, उहा संत करे हर रंगा, चाहे मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा, दोहज कथा ए गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सुही महला पंजवा, जाके दर्श पाप कोट उतारे, पेट संग ए पवजल।

पादशाह शाह व्यापारी मरना जोधी से सो काले करना पूरे मोह लपताना तोड़ चलिया ता फिर पछताना कृपा निधान नानक कहो करो दात नाम तेरा जपी दिन रात तुही महला पंजवा कट कट अंतर तुम्हें बसारे सगल समगरी सूट तुम्हारे तू प्रीतम तू प्राण आधारे तुम ही पेक पेक मन विसारे रहा अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारे ओट नहीं अब साथ संगारे अगम अगोचर अलखा पारे नानक सिमरे दिन रह नारे सुही महला पंजवा कवन काज माया वड्याई जा को बिन सतबार न काई ए सुखना सोत नहीं जाने।

आंखें सिमरन कछ पौ ना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण वारी, राव सात संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान।

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पतित पावन प्रभु नाम तुम्हारे राख लियो मोहि निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभु अंतर जामी काची देह मानुख अभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया किन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर जाया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा देखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्तु को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किस कर जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा अत कुतीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत।

जा नहीं जाने, कट कट अंतर पार ब्रह्म पछाने, जो किस करे सोई पल माने, आद अंक की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी, सुही महला पंजवा, गुर परमेश्वर करने हार, सगल सृष्टि को दे आधार, गुर के चरण कमल मन प्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पाव जल डूबत सतगुर काडे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे, सुही महला पंजवा, गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पैर हर हर जस गाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी, रहाओ चरण कमल स्यो लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला, सुही महला पंजवा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, ए बिनंती सुन प्रभ मेरे, दे नाम कर अपने चेरे, रहाओ अपनी शरण रास प्रभ।

पहर सनाहा कोट आवद किस बेदक नाहे। हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदार है। नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी। सुही महला पंजवा गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, अनंत दिनोद मंगल सुखताहा। चल सखिए प्रभ

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साहा, नानक दास हर शरण समाहा। तुही महला पंजवा, बैकुंठ नगर जहां संत वासा, सब चरण कमल रिद महि निवासा। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना।

पै जपना मुरारी। दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए। सुई महला पंजवा दीर छाए, दुनी जो लाए दोही सराई खुनामी कहाए। जो जिस पावे सो प्रवान, अपनी कुदरत आपे जान। रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए। सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच साहे।

गाओ प्रभ अविनाशी रैन दिन गाओ जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ सो साहो सेव जित कोट ना आवे खाप खर्चत सुख अनद बिहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद ना।

ठाकुर कौन हमारा रहाओ साथ संगत क्यों प्रीत बन आई पूरब कर्म लिख तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न साके तीने ताप निमख न बिसरे हर

जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करे बसे तिसनेरा, जन की पूछ तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवन हार, राम रमत संतन सुख माना, नानक देवन हार सुजाना, सुही महला पंजवा। दैती जात करे दृष्ट ना तारक, मिथ्या मोह बंदे नित पारक, माद रे पाज दे।

परण पोखण संग औद बिहानी। जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समरथ अगोचर स्वामी, उधर नानक प्रभ अंतर जामी। सुई महला पंजवा, साध संग तरे पैसागर, हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे, गुर पूरे मिल पाप सजायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साज सुहाओ, आठ पैर पार ब्रह्म त्याय, पूर्व लिप्त होए ता पाई है, शरण पे जप दीन दयाला, नानक जाचे संत रवाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना जाने रूड़ा, चूथे तंदे रचियो मूड़ा, जित तू लावे तित तित लगना, जा तू दे तेरा नाव जपना। रहाओ हर के दास हर से तीरा ते, राम रसायन अंदिन माते, वहाँ पकड़ प्रभ आपे काटे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, उधर स्वामी प्रभ कृपा धारे, नानक दास हर शरण द्वारे। सुई महला पंजवा, संत प्रसाद नहीं चल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डुलाया, गुरु त्याए हर चरण मंची ने, ताते करते अस्थिर कीने। रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी, ताते काटी जम की फांसी, कर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सुही महला पंजवा, अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपे तिस की गत होवे, हर हर नाम नित रसन बखानी। रहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन में परवेसा, साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई। सुही महला पंजवा, करती जा गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन देहो पूरन कृपाला, रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला, अमृत नाम चले जपनाला, नानक जाके संत रवाला। सुही महला पंजवा, किस दिन दूजा और न कोई, आपके थम्मे सच्चा सोई, हर हर नाम मेरा आधार, करण कारण समरथ अपार। रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ। तुही महला पंजवा, दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे पाग परा

दया न पाए, अनेक जन्म बीतने पर माई, कर वास न देवे दुत्तर माई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दी जाए।

कामना तौल हर जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभ चित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपताए ईसन पीस ओट कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राज ना किते काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कै ओ शोभा पाए पाठ पटंबर विद्या जे रच लो भाए सब किस तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए साथ साथ सिमरत रहा नानक दान पाए सुही महला पंजवा हर का संत प्राण।

की न्याई, पद अभिमान सरनी परो हर गुण निध पाई, अवलोकन पुने पुने करो जन का दरसार, अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार, कितवो मन आशा करो जन का।

ना जब मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया रहा निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहु विध प्रिया पर कोहिरिया दिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया सुही महला पंजवा रात मंडल की नो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा देखे खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैत बस निरारा।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हों कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपारा।

निमुख सिमरत जी छूटे। संतोषागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी करिए। रहाओ कोट तीर्थ मजन स्नाना, किस कल में महल पर ही जय। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, किन पढ़िया मुक्त न होई। एक अखर जो गुरुमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई।

जो कुछ करे सोई प्रभु माने, ओए राम नाम रंग राते, जिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभु के चरण पर आते, मेरे राम हर संता जेवड़ ना कोई, पगता बन आई प्रभु अपने स्यो, जल थल में यल सोई रहाओ, कोट अपराधी संत संग उदरे, जमता के नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, तिन हर स्यो आन मिलावे, माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जे हा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावे, जन की महिमा केतक बरनो, जो प्रभ अपने पाने, कहो नानक जिन सतगुर केटिया, से सब ते पै निकाने, सुही महला पंजवा, मां अगन ते तुद हाथ दे राखे, पै तेरी शरण आई, तेरा मान पान रिद अंतर होर दूजी आस चुकाई, मेरे राम राय तुद चित आये उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ, अंध फूफ से काढ़ लिए तुम आप पे कृपा।

अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए। परम दया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा, नानक दया करी सुख दाते पेटिया सतगुरु पूरा। तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब क्या करता, कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखे ठाकुर रचन रचाया। मेरे राम राय मुझसे कछु न होई, आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई। रहाओ गणती गणी न छूटे कतू, काची देहे दे आनी कृपा करो प्रभु।

आप खड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से ए आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हों बल जाए के साता कर चवर टुलावा चरण तूर मुख।

सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी टोवा हर जन के पीसन पीस कमावा नानक की प्रपास बेनंती तेरे जन देखन पावा सुई मैला पंजवा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर।

जेवा तुझ चित आए महा आनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुझ सदा त्याए मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी अरदास करे।

तेरे दर्शन को बल जाई, अमृत बचन हृदय उधारी, तो कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पे सारी, तुझ जेवड अवर न कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोए। दो कर जोड़ मांगो एक।

आइए गुरु प्रसाद पाओ करिए आप त्याग होइए सब रीणा जीव त्यागो मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर साथ संग नाव जाते सगल मनोरथ तिसके पूरन जिस दया करें प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सादर वाला राग सुही अस्पदियां महला पहला कर तहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंक मिलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना फुल टंग ना मीठे बैना रहाओ सहसीदार कामन कर आवे पांच सुहागन जा कंते भावे ना किस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लावो।

से पशुआ से टोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगे सुख जियो। करता चित ना आवे, फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसे, तित तन कैसी दुख जियो। बाकी वाला तल भी है, सिर मारे जिंदार जियो। लेखा मंगे देवना, पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरे, बख्शे बख्शन हार जियो। अनको की जय मित्रा, खात रले मर जाए जियो। बहु रंग देख पुलाया, पुल पुल आवे जाए जियो। नजर प्रभु ते छुटी है, नदरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान विहूणिया, गुर बिन ज्ञान ना पाल जियो। खिंचो तान विगुची है, बुरा पला दोए नाल जियो। दिन सब दे तै रत्या, सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया, सबसे दे आधार जियो।

गुण सार अंतर तू वसे मन माहे सहजे रस रसे मूरख मन समझाए आँखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना जे चले गुण नाल ना ही दुख संतापना मनमुख परम पुलाना ना किस रंग है मरसी हो विडाना मन तन पंग है गुर की कार कमाए लावा तारे आने गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया।

आपे रहा समाए सोग समाद कया। ऊना ही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुख वेख हदूर।

बिन सदगुरु नाम ना जाते। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साव ना जाते। कौडी बदले जन्म गवाया, चीनस नाही आपे। गुरमुख हो वे ता एको जाने, हों में दुख ना संतापे। बलिहारी गुर अपने विटों, जिन साचे स्यों लिव लाई। शब्द चीन आत्म प्रगासिया, सहजे रे आसमाई। रहाओ गुरमुख गावे, गुरमुख बूजे, गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कारे सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावे, दिख खटे संसारे। माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चाले सतगुर पाए। साचा साहिब सब सिफत है, साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आखे, हों में विच्चों जाए। आपे दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता, गुर कै सह सुवाए। मनमुख सभी कूड़ो बोले, दिख बीजे बिख खाए। जम काल बादा कृष्णा दादा, बिन गुर कौन छड़ाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए। असठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिफ सच्ची सलाह, पूरे गुरते पाए। तन मन सब किछ हर किसकेरा, गुरमत कह न जाए। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, होमे विच्चों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, कृष्णा अग्न बुझाए। गुर के शब्द राता सहजे माता, सहजे रिया समाए। हर का नाम सब कर जाने, गुर के पाए प्यारे। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच्चे नाए प्यारे।

सबो सच सच सच वरते गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरते गुरमुख आप पछाने नाम से आए ता सब गुरु पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिसदा सब किछ होवे जे विच्चों आप गवाए सोही महला तीजा काया कामन अक्सवाल्यो फिर वसे जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुरु का शब्द समाले हर की भगत सदा रंग रा

पाया अंदर सब कुछ वसे, खंड मंडल पाताला पाया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली, गुरुमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसे, अलख ना लखिया जाए, मन मुख मुगद बूझे नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाए। काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाईए, गुर कै शब्द विचारा। काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलनहारा, यह मन रतन जवाहर माणक किसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाई है, मोल कित ही नाम पाई है, ना ही नाम पाई है गुर विचारा। गुरमुख होवे सो काया खोजे और सब परम भुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे और क्या को करे चतुराई। काया अंदर पाओ पाओ वसे गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौन पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सा पाया जो सतगुर सेवे सच्चे आप सवारी, बिन नामे दर टोई नाही कां जम करे कुआरी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा तारी। राग सूही महला तीजा कर दसवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना साला है जो मर वंजसी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे परवाह रहाओ। दुनिया केरी दोस्ती मन मुख दज मर

जमपुर बदे मारिए वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना भुख ना उतरे अंधन जल फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप दुबे कुटंब सियो सगले कुल डोवन, निंदा पली किसे की नाही मन मुख मुग्ध करन, मोह पा ले ते निंदका नरके कोर पवन, ये मन जैसा सेवे तैसा होवे तेहे कर्म कमाए, आप बीज आपे ही खावना कहना किछु ना जाए, महापुरखा का बोलना होवे किते परखाए, ओए अमृत परे भरपूर है ओना तिल ना कमाए, गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन, सेवट पागी जे ओना मिल रहे अंदिन नाम लेन, जेसी रिजक संवाहे जिन उपाय मेदनी, एको है दातार सच्चा आपणी, सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल, आपे बख्शे मेले सो प्रभ सदा समाल, मन मेला सच निर्मला क्यों कर मिलिया जाए, प्रभ मेले ता मिल रहे हों मैं शब्द जलाए, सो सो सच्चा विसरे त्रिग जीवन संसार, नदर करे ना विसरे गुरमति विचार, सतगुरु मेले ता मिल रहा साथ रखा उधार, मिलिया हो ना विचार।

मनमुख मन ना पिजई अपने ले चित कठोर सपे दूध पियाय अंदर विसने कोर आप करे किस आखिए आपके बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे पास हथ बनया सिगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उठे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर्ज मैं वारो वार पै किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है।

आई। जो तू सेव है सो तू है हो वह तू सेव पैज रखाई। भंडार परे भगती हर तेरे जिस पावे तिस दे वाई। जिस तू दे सोई जन पाए होर ने फल सब चतराए। सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाए। एक दान मंगे नानक बेचारा हर दासन दास तराई। जे गुर चिड़के ता

जे बख्शे ता गुर वडियाए, गुरमुख बोले सो थाए पाए, मन मुख किछ थाए न पाई, पाला ककर वर्फ वरसे, गुर सिख गुर देखन जाए, सब दिन सरैन देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराए, अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई, रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई, नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई, नानक का प्रभ पूर रहो है, जत तत तत गुसाई, राग सूही महला चौथा, अष्टपदियां कर दसवां, इक ओंकार सतगुर प्रसाद, अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल, जां गुर देखा सामने, मैं हर हर नाम विसाहो, गुर पूरे ते पाया, अमृत अगमा थाओ रहाओ, हों सतगुर वेख विगसिया, हर नाम ने लगा प्यार, कृपा करके मेले अन पाया मोख द्वार, सतगुर बिरही नाम का जे मिले ता तन मन देओ, जे पूरब हो वै लिखिया ता अमृत सहज पियो, सुतियां गुर सालाही है, उठदियां भी गुर आलाओ, कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हों ता के तोवा पाओ, कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो, मैं प्रीतम दे मिलाए, सतगुर मिले हर पाया, मिलिया सहज सुभाए, सतगुर सागर गुण नाम का, मैं तिस देखन का चाओ, हों तिस बिन करी ना जीवो, बिन देखे मर जाओ, ज्यों मछली बिन पानी है, रह न कितै उपाए, त्यों हर बिन संत न जीवई, बिन हर नामे मर जाए, मैं सतगुर सेती पिरहड़ी, क्यों गुर बिन जीवा माओ, मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहाओ, हर हर नाम रतन है, गुर तुठा देवे माए, मैं तार सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिवलाए, गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामों दे दृढ़ाए, जिस प्राप्त सोल है, गुर चरणी लागे आए, अकत कहानी प्रेम की, को प्रीतम आखे आए, किस देवा मन अपना निव निव लागा पाए, सज्जन मेरा एक तू, करता पुरख सुजान, सतगुर मीत मिलाया, मैं सदा सदा तेरा तान, सतगुर मेरा सदा सदा

मिथ्या कै संगा, मने व्यापत अनक तरंगा, मेरे मन अगम अगोचर, कब पाये पूरन परमेश्वर रहाओ। मोह मगन मह रहा व्यापे, अब तृष्णा कब हो नहीं त्रापे,

जान ना पाये प्रभ दरबारा, आसा अंदेसा बंद पराना, महल न पावे फिर बेगाना, सगल ब्याज के वस्त्र दीना, फिर प्यास जो जल बिन मीना, कछु सिनान उकत ना मोरी, एक आस ठाकुर प्रभ तोरी, करो बेनती संतन पासे, मेल ले हो नानक अरदासे, पयो कृपाल सा।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रवण गुणा कटिया जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रभ एक ते आए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनुग्रह अपना प्रभ कीना, केवल नाम भगत रस दीना, आद मद अंत प्रभ सोई, नानक किस बिन अवर न कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदिया कारनावा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन रिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यो रंग जियो। तिन स्यो प्रीत ना कुटई, कभू न होवे पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सजना, नाम जपे मन मित जियो। रहाओ देखे सुने ना जाने, माया मोहया अंग जियो, काची देहा विसनी कूड़ कमावे तंग जियो, नाम से आवे से जिन चले, गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया, चलन हुक्म संजोग जियो, हुक्मे परपंच पसरिया, हुक्म करे रस भोग जियो, जिसनो करता विसरै, तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया, दरगे पैदा जाए जियो, ऐखे सुख मुख उजला, इको नाम से आए जियो, आदर दिता पार ब्रह्म, गुर सेविया सत पाए जियो। खान सनंतर रव रया, सर्व जिया प्रतपाल जियो, सच खजाना संचिया, एक नाम धन माल जियो, मन से कबो न विसरे, जा आपे होए दयाल जियो। आन जाना रह गए मन उठा निरंकार जियो, ताका अंत न पाये, ऊंचा अगम अपार जियो, जिस प्रभ अपना विसरे, सो मर जमे लखबार जियो। साच ने हो तिन प्रीतमा, जिन मन उठा आप जियो, गुण सांजी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो, रंग रत्ते परमेश्वर है, बिन से सगल संताप जियो। तू करता तू करणहार, तू है एक अनेक जियो, तू समरथ तू सर्व में, तू है बुद्ध विवेक जियो, नानक नाम सदा जपी, भगत जना की टेक जियो। राग सुही महला पंजवा, अष्टपदी।

काढ़िया जिना ने हो दू जाने लगा चूर मरों से वाडिया हो ना छोड़ो कंथ पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा फिर महिंजा आसरा रहाओ सज्जन तू है सैन तू मैं तुझू पर बहुमानिया जा तू अंदर ता सुखे तू निवाणी मानिया जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल यहा पाई मू दातड़ी नित हृदय रखा समाल पाप जुलाई पंद पाओ नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां।

कह न सका गुण तेरिया। सहिया कौ असंख मंजो हव बदानिया, चुप पोरी नजर निहाल देह दर्स रंगवाणिया। जय जिठे मन तीरी है किल विकवंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे। होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संत सहाय। सुही महला पंजवां सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। नाम निधान अपार भगता मन वसै, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै। रहाओ मोह बाद अहंकार सर पर लुनिया, सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरत अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया, नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दातार।

पहला कुचज जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मंज कुचज जी अमावन दोसड़े हौ क्यों सो रावण जाओ जियो एक दू एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो जिन्नी सखी सौ रावया से अंबी छावड़ी है जियो से गुण मंज न आमनी हौ कह जी दोस्त रे ओ जियो क्या गुण तेरे विथरा हौ क्या क्या किन्ना तेरा नाव जियो इकत तोल नाम बड़ा हौ सब कुर्बान है तेरे जाओ जियो सोयना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की ते रास जियो हों इनी टोली पुलियस तिस कंतना बैठी पास जियो अंबर कूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सातन चली साहुरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वाटड़ी आस जियो तै सहनालो मुतियस दुखा को तरी आस जियो तुद गुण मैं सब अवगुणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सोहागनी मैं डोहागन काई रात जियो सुही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सबको तू साहिब मेरी रास जियो तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा वास जियो पाणे तख्त वडाइया पाणे पीप उदास जियो पाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो पाणे पवजल लंगी है पाणे मंज परियास जियो पाणे सो सोह रंगला सिफ्त रता गुण तास जियो पाणे सोह पिहावला हौ आमन जान मोई आस जियो तू सहो अगम अतोलवा हौ कह कह तै पई आस जियो क्या मांगू क्या कह सुनी मैं दर्शन पूप प्यास जियो

गुणवंती। जोधि सह गुर सिखड़ा तिस निर्निवला गो पाए जियो, आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंक न काहू जाए जियो, ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दिहो बताए जियो।

दुख गवाए जियो। इत मार्ग चले पाई अड़े, गुर कहे सुकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा पाओ जियो। क्यों पावे हर दरसावड़ा, नै लगे तत्ती वाओ जियो। हों आपो बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुकमाओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया फसाओ जियो। मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी, हों रजा तृप्त अघाए जियो। जो गुरु दी सह सिकड़ा, तिस निव निवला।

जोगन बाद गवाया वर कर दर दर्शन नहीं जाता फिर का सह न पाया सतगुरु पूछ न मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बालकन रणे पा बिन फिर तन कुमलानी।

जैसी आशा तैसी मनसा पूर पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रांड न मैले वेसे नानक में वर्षा चा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे बाबा लगन गणाए हम भी बंजा सहरे बलराम जियो सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रभ करे बलराम जियो कृपया करते कर पाया मेट न सके कोई जान जी ना उन रहने केवल रव रहा तिहु लोई।

प्रभु चेते बाबुल दुपड़ी दूर ना आवे कर पहिए बलराम जियो रहती देख दूर फिर रावी कर सोहिए बलराम जियो साचे फिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मग पूरी प्रधाने संजोगी मेला थाम सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने सच संतोष सभा सच पल्ले सच बोले फिर पाए नानक विछड़ना दुख पाए गुरमत पंख समाए राग सुही मेला पहला संत कर दूजा।

सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया स्थाई वस्त्र प्राप्त होई जिससे ती मन लाया हम दिन मेल कया मन मानिया कर मंदर सोहाए पंच शब्द अनहद वाजे हम कर साजन आए आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ता प्रभ पावो सोहिलड़ा जुग चारे अपने घर आया थाम सुहाया कार्य शब्द सवारे ज्ञान महारस नेत्री अन्यन त्रिभुवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया मन तन अमृत इन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो जंत ते तू सफलो दाता सिर सिर देवन हारो तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण की ना सुनो सकी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा।

मेरा राम मंचाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख कहीं नहीं केवल जन्म मरण दुखनासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाए नानक साजन कौबल जाइए साथ मिले कर आए।

पुरुष विदात है। तस्कर मार वसी पंचायण अदर करे विचारे, नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे। वर पायड़ा बालड़िए आशा मनसा पूरी राम, फिर रावेड़ी सगदरली रव रया नह दूरी राम। प्रभ दूर न होई कट कट सोई किसकी नार सवाई, आपे रसिया आपे रावे जो तिसकी वड्याई। अमर अडोल अमोल अकारा गुरपुरै सताई है, नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है। फिर उचड़ी है मारड़ी है ते लोआ सिर ताजा राम, हों विषम तई देख गुणा अनहद शब्द अगा जा राम। शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो, नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवानो। पत मत पूरी।

समाद राग सुई छंत महला पहला कर चौथा जिनकी आतिन देखिया जब पंदड़े लाया दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया वियाहो हुआ सोभ सेती पंच शब्दी आया जिन किया तिन देखिया जग तंदड़े लाया हौ बलिहारी साजना मीता वरीता ए तन जिन सो गा दिया मन लीड़ा दीता लिया का दिया मान जिन सो से सज्जन क्यों मिसरे जिन दिस आया होय रलिया जी सेती गह रहे सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता हौ बलिहारी साजना मीता वरीता गुणा को होवे वासला कड वास नहीं जय जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जय सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मलिए जिथे जाए गई है पला कही है चोल अमृत पी जय गुणा कहो वे वासला कद वास लई जय आप करे किस आखिए होर करे न कोई आखनता को जाइए जे पूलड़ा होई जे होए पूला जाए कही है आप करता क्यों फुले सुने देखे बाद कहे है दान अन मंगिया दिवे दान दे दाता जग विधाता नाम

राता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच पू नायको आप सिरंदा जिन सच का पिंड सवा।

साथ होई, अंजन कैसा अंजिए, जैसा फिर पावे, समझे सूझे जानिए, जे आप जनावे, आप जनावे मार्ग पावे, आपे मनुआ ले वे, कर्म सुकर्म कराए आपे, कीमत कौन अपे वे, तंत मंत पखंड ना जाना, राम हृदय मन मानिया, अंजन नाम तिसे ते सूझे, गुरु सबदी सच जानिया, साजन होन आपने क्यों पार कर जाही, साजन राते सच के संगे मन माही, मन माहे साजन करे रलिया, कर्म कर्म सब आया, अठहठ तीरथ पुन पूजा नाम साचा भाया, आप साजे थाप वेखे तिसे पाना पाया, साजन राग रंगी लड़े रंग लाल बनाया, अंधा आगू जेती है क्यों पादर जाने, आप उसे मत होची है क्यों राह पिछाने, क्यों राह जावे महल पावे, अंध की मत अंधली, विन नाम हर के कछ ना सूजे, अंध बूढ़ो तंदली, दिन रात चानन चाओ उपजे, शब्द गुर का मन वसे, कर जोड़ गुर पे कर बिनंती, राह पादर गुर दसे, मन परदेसी जेती है सब देश पर आया, किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया।

मन परदेसी जेती है सब देश कराए। गुरमहली कर अपने सो कर कुरलीना, सेवक सेवा तों करे सब सबद पतीना। सब दे पतीजै अंक पीजै सो महल महला अंतरे,

सोई, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई। कीमत सो पावे आप जनावे, आप अपुल ना पुले। जय जयकार करे तुद पावे, गुर के शब्द अमूल्य। हीनो नीच करो बेनंती, साथ ना छोड़ो पाई। नानक जिन कर देखिया देवे मत साई। राग सुही संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख सोहेला हर त्यावो, गुरमुख हर फल पावो। गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो, जन्म जन्म के दुख निवारे। बलिहारी गुर अपने बिट्टो, जिन कारे सब सवारे। हर प्रभ कृपा करे हर जापो, सुख फल हर जन पावो। नानक कह सुनो जन पाई, सुख सोहिलड़ा हर त्यावो। सुन हर गुण पीने सह सुबाए।

का हो तेरा तू हमारा, जुग में राम नाम निस्तारा, साजन आए उठे कर माही, हर गुण गावे तृप्त अभाई, हर गुण गाए।

सच्चा सब सच्ची है शोभा साचे ही सुख होए। साच रते भगत इक रंगी दूजा रंग न कोई नानक जिसको मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई। सुही महला तीजा जुग चारे तांजे पवे

तेरे प्रभ आप मिलाए राम, गुरमती कर सांगन होआ, प्रभ रव रहा सब खाई राम, प्रभ रव रहा सब खाई, मन वसाई पूरब लिखिया पाया, शेष खाली मेरे प्रभ पानी सत सिगार बनाया, कामन निर्मल हो मैं मल कोई, गुरमत सच समाई, नानक आप मिलाई करते हैं नाम नमै निध पाई, सूही महला तीजा, हर हरे हर गुण गावो, हर गुरमुखे पाए राम, अंजिनो शब्द रवो, अनहद शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए, हर जियो कार्य आए, हर गुण गावो नारी, अंजिन पंत करे गुर आगे, साथन कंत प्यारी, गुर का शब्द वस्या कट अंतर, सेजन शब्द सुहाए, नाम तिन कर सभी सोहिला, हर कर कृपा कर आए, भगता मन आनंद पाया, हर नाम रहे लिव लाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल हर गुण गाए राम, निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए, हर की अमृत बाणी, जिन मन वसिया से जन निस्तरे, कट कट शब्द समाणी।

सदा होवे सुहागनी हर जियो मरे ना जाए राम। हर जियो मरे ना जाए गुर के सह सुभाए सापन कंठ प्यारी सच संजम सदा है निर्मल गुर के सबसी गारी। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिन

चित तन मैल न राखी, हर प्रभ राखी, मेरा प्रभ मेल मिलाए, अंजन रावे हर प्रभ अपना विचों आप गवाए। गुरमत पाया सहज मिलाया, अपने प्रीतम राती, नानक नाम मिले वडियाई, प्रभ रावे रंग राती।

बहु कृपा तारी हर कै सब सुहाए राम मिल सब सुहाए आप गवाए रंग सो रलिया माने से सुखाली जा प्रपाया हर हर नाम समाने नानक सुहागन सावड पागी जे चले सतगुरु भाए हम नीवी प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम कट कटे सबना विच एको एको राम पतारो राम इकना प्रभ दूर वसे इकना मन आधारो राम इकना मन आधारो सिरजनहारो वड पागी गुर पाया कट कट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे अनद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो

पाया, हो मैं रोग गया पौ पागा, सहजे सहज मिलाया। काया सेज गुर शब्द सुखाली, ज्ञान तत कर तोगो, अंजन सुख माने।

बलराम जियो। अंतर ममता कूड़ कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो। कूड़ कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमे गवारी, खिन खिन थके खाया। आपे दया करे प्रभदाता, सतगुरु पुरख मिलाए। जन्म जन्म के विचे जन मेले, नानक सह सुभाए। आया लगन गणाए, हृदय तन उमाया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो। पत्ती बचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कार आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरुष अगम अगोचर, सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले, विछड़ करे न जाए। सुही महला चौथा, हर कहलड़ी लाभ प्रवृत्ति, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो, पाप सजाया बलराम जियो। कर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो, सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुरु गुरपुरा।

निरपो कै मन होए हों मैं मैल गवाया बलराम जियो। निर्मल पौ पाया हर गुण गाया हर वेखे राम हदूरे। हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्व रहा पर पूरे। अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए। जन नानक दूजी लाभ चलाए अनहत शब्द बजाए। हर चीजड़ी लाभ मन चाव पया बैरागिया बलराम जियो। संत जना हर मेल हर पाया वड पागिया बलराम जियो। निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी। संत जना वड पागी पाया हर कथिये अकथ कहानी। हृदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिये मस्तक पाग जियो। जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो। हर चौथड़ी लाव मन सहज पया हर पाया बलराम जियो। गुरुमुख मिलिया सुभाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो। हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंगिन हर लिव लाई। मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी बधाई। हर प्रभ ठाकुर का

चल चल परमिया मन मुख परम कुलाया नित आसा मन चितवे मन कृष्णा पुख लगाया अंता तन तर दबिया फिर बिख पालन गया जन नानक ना।

राख लाज पगवाना, सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ कराना, सुन बावरे जो आया तिस जाना, निचल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है, हर पाई है पागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जय संत ना की जय, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पवतारण, तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचै कूड़ा मानो, सुन बावरे हब वैसी गर्भ।

गोविंद गुण गावन लागे, हर रंग अंजन जागे, हर रंग जागे पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुर चरण लागे परम पागे, काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी सहज जानी, हर नाम जप वड पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे, अनाथ सबद सुहावा, सच मंगल।

तू वरदाना कर मेरा मत साई, कृपा की जय सौ मत दी जय, हाथ पैर तू त्याई। गर्भ ना की जय रेण हो भी जय, तांगत जी रे तेरी, सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जे ही कण चेरी राम। तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम फिर हम दोरिया राम, तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो इतनी लोहरिया राम, हो किछ नाही एको तू है, आते आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा, सर्व रंग रसमाना। चरण है सरनी दास है दासी, मन मोले तन हरिया, नानक ठाकुर सर्व समाना, आपन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतुराई तेरी, तू जाना है जाना राम। सोई जाने सोई पछाने, जाको नदर सिरंदे, मन मुख फूली बहुती राही, फाती माया फंदे।

जीवन जा तू पर्वत मेरा ओला राम हो बल बल जाई लख लख लख दरिया जिन परम पर्दा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर सो मन माना प्रभ जी पानी पई निकानी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खोला कहो नानक हो निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूरी महला पंजवा साजन कोठ सतगुरु मेरा पूरा तिस बिन अवर न जाना राम मात पिता ताई सुत बंदक जी प्राण मन पाणा राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रहा पर पूरे ताकी शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ को बलिहारे नानक सर्व कुर्बाना। ऐसा गुरु वड कागी पाये जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलविक उतरे हर संत तूरी नित नापे राम हर तूरी नाई है प्रभु ते आई है बाहर जोन ना आई है गुर चरणी लागे प्रम को पागे मन सिंधिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संतापे नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस पर तापे हर हरे हर गुण निदे हर संतन कैवस आए राम संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा तारी सफल जन्म हुआ तो पागा हर पेटिया एक मुरारी जिसका सा तिन ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच सदाई राम रंग रते अपने स्वामी सेती मरे ना आवे जाई राम अविनाशी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए सांस सहज आनंद कनेरे गुरु चरणी मन लाए पूर रहा कट कट अविनाशी थाम थम कर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरु चरणी मन लाए। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा राम लाख जेवा देहो मेरे प्यारे मुख हर आराधे मेरा राम हर आराधे जन पंख सा दे दूख न व्यापे कोई जल कल मैयल पूरन स्वामी जत देखा तत सोई परम मोह विकार नाथे प्रभ नेर हूते नेरा नानक को प्रभ कृपा कीजै नेत्र देखें दर्स तेरा कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अविनाशी राम सो सुन ए मन निर्मल होवे कटिए काल की फांसी राम कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी सगल मंगल सो क्याना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहस्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा कीजै हर गुण सुनिए अविनाशी करोड़ हस्त तेरी टैल कमावे चरण चले प्रभ मार्ग राम पर सागर नाम हर सेवा जो चढ़े तिस पार्ग राम पर जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महाविकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा कीजै मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वड्याई एहो तन होए वडपागा राम एहो रंग एहो रस होगा हर चरणी मन लागा राम मन लागा चरणे प्रभ की शरणे करण पारंग गोपाला सब किस तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा
कहो नानक प्रभु कृपा कीनी चरण कमल मन लागा। सुही महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप सजावे राम हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी अकत कहानी पला संजोग मूरत पल साचा अचल नीव रखाई जन नानक प्रभु कहे दयाला सर्व कला बणियाई आनंदा वजह नितवाजे कार ब्रह्म मन उठाराम गुरुमुखे सच करनी सारी बिन से प्रम पैच उठाराम अमहद बाणी गुरुमुख बखाणी जस सुन सुन मंतन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करया कर मैं नवनिद परे पंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरे पूरन जाके भागा छाया प्रभ छत्रपत कीनी सगली तपत विनाशी राम दुख पाप का डेरा काठा कारज आया राशी राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच कर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याय सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल में यल सोई जन नानक प्रभ की शरण आई तिस बिन अवर न कोई मेरा कर बनिया बनपाल बनिया प्रभ पर से हर राया राम मेरा मन सोया मीत साजन सरसे गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याय साचा सगल इच्छा पाया गुरु चरण लागे सदा जा

मिल सतगुर पार लंघाए राम। गुर शब्दी करिए बहुत न मरिए चूके आवन जाना, जो किछ करे सोई फल मानो तामन सह समाना। दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरणी पाए, हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए। संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम, आत्मड़ा मन आगे तरिया सर्व सुखा कर दीने राम। कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदिर थित पाई, अनग दिनो सिमरो प्रभ साचा बिछड़ कब होना जाए। सावर कागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने, कहो नानक रहे रंग राते प्रेम महारस पीने। अनग दिनो तय मिट सकिए मंगल सदा हमारे राम, आप नरे प्रभ आप सिगारी सोबावंती नारे राम। सह सुहाए पय कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया, कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उधारिया। मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारे, कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारे। गुण गोपाल गावो नित सखियो सगल मनोरथ पाए राम, सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार प्याए राम। जब एक प्रभु अनेक रविया सर्व मंडल छाया, ब्रह्म उपसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल फल मैयल पूर पूरन किस बिना नहीं जाए, एक दर्शन नानक बिकसे आप ले मिलाए। सुही मैला पंजवा अचल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम, करते आप बसाया सर्व सुख पाया उत्पाई सिख बिगाते। गुण गावे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे, प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया। कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन एव थान सुहाया। कर मंदर हट ना ले सोहे जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम अराधे कटिए जम की फांसी राम। काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण होई मन इच्छे फल पाए। संत सज्जन सुख माने रलिया दुख दर्द क्रम नासी, सब सवारे सदगुर पूरे नानक सदगल जासी। बात खत्म की पूरी होई नित नित चढ़े सुहाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वडी वड्याई राम। आज जुगाद भगतन का राखा सो प्रभ कया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर कृपाला। जय दिसपुर रहा जस स्वामी कीमत कह न जाई, कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन अचल नीव रखाई। ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम, अनहद चोज पगद पर कंजन अनहद बाजे तुनिए राम। अनहद तुनकारे पत बिचारे संत गोष्ठ नित होवे, हर नाम आराधे मैल सब काटे किलविट सगले खोवे। तह जन्म न मरना आवन जाना बोर न पाइए जोनिए, नानक गुरु परमेश्वर पाया जिस पर साधे छुनिए। सुही महला पंजवा संता के कारज आख खलोया हर काम करावन आया राम। तरत सुहावी काल सुहावा विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूरन साज कराया सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार पया जग अंतर लाथे सगर विसूरे। पूरन पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया।

खाप खर्चक बिलछक सुख पाया करते की दास सवारी राम। दास सवारी निखुट न जाए अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ ना थे दुख न नेड़े आया। सांत सहज आनंद घनेरे बिनसी पूप सबाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम। जिसका कार्य इतनी ही किया मानस क्या बेचारा राम। भगत सोन हर के गुण गावे सदा करें जयकारा राम। गुण गाए गोविंद अमद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्यम किया काल के रात इसकी उपमा क्या गनी। अखट तीरथ पुन क्रिया महानिर्मल चारा पतित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा। गुण निधान मेरा कब करता उस्तत कौन करी जय राम। संता की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम। नाम दी जय दान की जय बिसरना ही खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाय अंदिनो। जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तने अमृत पी जय बिनवंत नानक इच पुनी पेक दर्शन जी जय। राग सूही महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा हर संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा। कौरा बोल ना जाने पूरन भगवान अवगुण को ना सितारे पतित पावन हर बिर सदाए एक किल नहीं पन्ने काले। खट खट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा। हर विषम पई जी हर दर्शन देखा तारा मेरा सुंदर स्वामी जी हर चरण कमल पग छारा। प्रभु पेखत जीवा ठंडी थीवा जिस जेवल अवर न कोई आद अंत मद प्रभ रव्या जल थल मैयल सोई। चरण कमल जब सागर तरया तब जल उतरे पारा नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा। हर निमक ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण धारो गुर सतगुर कह।

बार राग दोष से न्यारो नानक दास गोविंद शरण आई हर प्रीतम मने सदारो। मैं खोजत खोजत जी

कारण अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा नित स्वामी बड़ पागी हर हर गा।

सूहा वेस छड़ तू तांतिर लगी प्यार, सूहे वेस तिर किने न पायो मन मुख दज मोई गवार, सतगुर मिले सूहा वेस दया हो मैं विचो मार, मन तन रता लाल हुआ रसना रती गुणसार, सदा सुहागन सबद मन पै पाए करे सिगार, नानक करमी महल पाया फिर राखिया उधार। महला तीजा मुंडे सूहा परहरो लाल करो सिगार, आवन जाना विसरे गुर सबदी विचार, मुंद सुहावी सोहनी जिस कर सहज पतार, नानक सातन रावी है रावे रावण हार। पौड़ी मोह कूड कुटंब है मन मुख मुग्ध रता, हो मैं मेरा कर्म वे किछ साथ न लिता, सिर ऊपर जम काल न सुजई दूजे कर्मिता, फिर वेला हथ न आवई जम काल वस किता, जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता। श्लोक महला तीजा सतिया ए ना आखियन जो मड़िया लग जलन, नानक सतिया जा

हार चलन सार न जानी काज सवारण हार महला दूजा रात कारण तन संची है पलके चलन होए नानक नाल न चले फिर पछतावा होए महला दूजा बब्बा चट्टी जो करे ना गुण ना उपकार सेती खुशी सवारी है नानक कार सार महला दूजा मन हठ तरफ ना जिपे जे बहुता काले तरफ जिने सत पाओ दे जन नानक शब्द विचारे पौड़ी करते कारण जिन किया सो जाने सोई आपे सिष्ट उपायन आपे फुनगोई जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई सतगुर एक खा लिया मन तन सुख होई गुरमुख सदा सलाई करता करे सोई श्लोक महला दूजा जिना पाओ तिन नाहे पाओ मुझ पाओ निविव्या नानक एहो पटंतरा तित दी दान गया महला दूजा तुर देखो तुरदा मिले उड़ते को उड़ता

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हो मैं मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंडक मारिया लग पै गवारी जिनकी एक से ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन को सिगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया को बनिया सिगार किया तो परवान है जा सो करे प्यार को सिगार तबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत को नानक तो करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिगार से जय कंत न आयो।

खान सिफती सार ना जाननी सदा बसे शैतान गधो चंदन खौलिए ती साहू स्यो पान नानक कूड़े कत्ते कूड़ा तनिए तान कूड़ा कट्टर कछिए कूड़ा पैनन मान महला पहला बांगा बुरगू सिंगिया नाले मिली कलान एक दाते एक मंगते नाम तेरा प्रवान नानक जिन्नी सुन के मन्या हम तिना विटो कुर्बान पौड़ी माया मोह सब कूड़ है कूड़ो हो गया हमें चगड़ा पायोन चगड़े जग मोया गुरमुख चगड़ चुकायोन इको रब रहा सब आत्म राम पछाणिया पौ जल तर गया जोत समाणी जोत विच हर नाम सुनया श्लोक महला पहला सतगुर पीछिया देह में तू समरथ दार हों में गर्भ निवारी है काम क्रोध अहंकार लग लोग पर जाली है नाम मिले आधार एनस नव तन निर्मला मैला कबू न होए नानक ये बिद छुटी है नदर तेरी सुखोए मैला पहला इको कंस सवाया जिती दर खड़िया नानक कंते रतिया पुछे बातड़िया मैला पहला सबे कंते रतिया मैं दुहागन कित मैं तन अवगुण एतड़े खसमना फेरे चित मैला पहला हों बलिहारी तिनको सिफत जिना देवात सब राती सोहागनी इक मैं दुहागन रात कौड़ी दर मंगत जाचे दान हर दीजे कृपा कर गुरमुख लेहो मिलाए जन पावे नाम हर अनहद शब्द बजाए ज्योति जो कर हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर जग में वर्त आप हर से प्रीत कर।

हंस सिफत सलाहन छड़ के तरंगी लगा हंस फिट इवे हा जीविया जित खाए वदाया पेट नानक सच्चे नाम बिन सबो दुश्मन हेत। पौड़ी आदि गुण गावे नित जन्म सवारिया गुरमुख सेव सदा है चावर भारिया कर दर पावे महल नाम प्यारिया गुरमुख पाया नाम हो गुर को वारिया तू आप सवार आप सिरजन हारिया। श्लोक महला पहला दीवा बले अंधेरा जाए वेद पाठ मत पापा खाए उगवे सूर ना जापे चंद जह ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करे विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उतरस पार। महला पहला शब्द साड़ ना आयो नाम ना लगो प्यार रसना फिक्का बोलना नित नित होए खुआर नानक पया किरत कमावना कोई न मेटन हार। पौड़ी जे प्रभशाला है अपना सो सो बापाए सौ मैं विच्चों दूर कर सच मन वसाए सच बाणी गुण उचरे सच्चा सुख पाए मेल पया चिरी विछुनिया गुर पुरख मिलाए मन मैला इव शुद्ध है हर नाम त्याए। श्लोक महला पहला काया कुमल फुल गुण नानक गुप समाल एनी फुली रो करे अवर के चुनिया डाल महला दूजा नानक तिना बसंत है जिन कर वस्या कंत जिनके कंत दिशापुरी से एनस फिरे जलंत। पौड़ी आपे बख्शे दया कर गुर सतगुर बचनी अंदिन सेवी गुण गवा मन सच्चा रचनी प्रभ मेरा बेअंत है अंत किने न लखनी सतगुर चरणी लगिया हर नाम नित जपनी जो इच्छा सो फल पाए सी सब करे विच जचनी। श्लोक महला पहला पहल बसंत है आगमन पहला मौल्यो सोए जित मौल्य है सब मौल्य है तिसे न मौल्यो कोए। महला दूजा पहल बसंत है आगमन तिसका करो विचार।

हर हर नाम सलाइए सत्कार कमावे, दूजी कहरे लगिया फिर जोनी पावे। नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे, गुर के सब सलाइए हर नाम समावे। सतगुर सेवा सतल है सेवे फल पावे। श्लोक महला दूजा किसी कोई कोई मंज निमाणी कितूं, क्यों ना मरी जय रोए जालब चितना आवई। महला दूजा जा सुख पास रावे हो दुख भी संभालोए, नानक कैसे आनी है क्यों कंत मिलावा होए। पौड़ी हो क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई, तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई। मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई, जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई। नानक दे परवाह है तिस तिल ना कमाई। राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सगना भगता की कबीर के इको अंकार। सतगुरु प्रसाद अवतर आए कहां तुम कीना, राम को नाम न कभू लीना। राम ना जपो कवन मत लागे, मर जाए वे को क्या करो अभागे। रहा दुख सुख करके कुटुंब जीवाया, मरती बार इकसर दुख पाया। कंठ गहन तब करण पुकारा, कह कबीर आगे ते ना समारा। सूही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो। रैन गई मत दिन भी जाए, पर गए बग बैठे आए। रहा काचे करवे रह न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। क्वार कन्या जैसे कर सिगारा, क्यों रलिया माने बाज बदारा। काग उड़ावत पूजा तानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो अमल सिरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगे का आया। रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी, लेओ निबेर आज की राती। किछ भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गुजारो। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सोजन पुरख सभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल तन जोरिया तया कराया। कहो कबीर तेरी नर फूले, खसम विसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित थाके नैन श्रवण सुन, थाके थाकी सुंदर काया। जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना खाक समाया।

जब लग कट में साता जे कट जाए ता पाऊ न जासी हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे तिसे प्यासा हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन टाले पासा जो जन जान पजे अवगत को तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा। सुही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला। सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर के पुकारिया तिन्हों लिया उबारी। रहाओ नौ दाडी दस नु सवतावे रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मा पैना ही बोगस काला ले ही। बेहतर कर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सो दिया बाकी रिजम न काई। संता को मत कोई निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जा का नाओ विवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की इको ओंकार सतगुर प्रसाद। सह की सार सुहागन जाने अज अभिमान सुख रलिया माने तन मन दे नांतर राखे अगरा देख ना सुने अपाखे सो खत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई। रहो दुखी दुहागन दोए पखहीनी जिन ना निरंतर भगत ना कीनी पुर सलात का पंथ दुहेला संग न साथी गमन इकेला। दुखिया दर्दवंद दर आया बहुत प्यास जवाब न पाया कह रविदास शरण प्रभु तेरी जो जानू त्यों करगत मेरी। सूही जो दिन आवे सो दिन जाही करना पूछ रहन फिर नाही संग चलत है हम भी चलना दूर गगन से ऊपर मरना। क्या तू सोया जाके आना तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे सब कट पीतर हाथ चलावे कर बंदगी छाड़ मैं मेरा हृदय नाम सवार सवेरा जन्म सिरानो पंथ ना सवारा सांझ परी दहज संध्यारा कह रविदास निदान दीवाने चेतस नाही दुनिया फनखाने। सोही ऊंचे मंदर साल रसोई एक करी फुन रह न होई यो तन ऐसा जैसे काश की ताटी जल गयो काश रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुटंब सहेरा कोई भी लागे काट सवेरा कर की नार उन्हें तन लागी तो पूत पूत कर पागी कह रविदास सबे जग लूटिया हम तो एक राम कह छूटिया। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सूही बाणी शेख फरीद जी की।

तें साहिब की मैं सार न जानी, जो गुण खोए पाछे पछतानी रहा। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। फिरे बिहून कथे सुख पाए, जा होए कृपाल सा प्रभु मिलाए। विदन कूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभु साथ संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा हो बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बो पीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, से फरीदा पंख समार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब करंग दुहेला। हाथ न लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला रहा। एक पापी ने पतली सह केरे बोला, दुद्दा थड़ी ना आवई फिर होए न मेला। कह करीब सहेलियो सहो अलायसी, हंस चल सी डुमना।

सच में रहो रजाई रहो, जो किछ होआ सब किछ तुझते, तेरी सब सुनाई, तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या सिकराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथ न जाई, जो तुझ पावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई। केते कुकर हो बेगाना, होका स्तन पाई, भगत हीन नानक जे होएगा, तां खसमे नौ न जाए। बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेश कलंदर, कठी तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म नावा। मन बेदया दयाल से ती मेरी माए, कौन जाने पीर पराई, हम ना ही चिंत कराई रहाओ। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी, जल फल मैयल कर पुरलीना, कट कट जो तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध।

चैन तुम्हारी सर्व चिंत तुझ पासे जो तुझ पावे सोई चंगा। एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला।

तू दाता नाम परवान, ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचिक तू अलग।

चूठा दिन चार नाम मिले चांदन ध्यान चक्षुदी सहसा नहीं कोई बाप से वे जात न होए एक एक को ना ही तो कोए करता करे करावे सोए शब्द मोए मन मंगते माया ठाक रहे मन खाते पारिया अवर न सूजे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया बिलावल महला पहला गुर बचनी मन सहित्याने हर के रंग रता मन माने मन मुख करम फुले बौराने हर दिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर दिन जीवरा रह न सके खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ मेरा तब विसरे हो मरो दुखाली सास विरास जतो अपने हर पाली सब बैरागन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख शरणाली अटक कथा कहिए गुर पाए प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करने क्या कार कमाए हो मैं मेठ चले गुर शब्द समाए मन मुख विछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा तारी दासन दास जन नानक हर नाम तन रास बिलावल महला तीजा हर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग पापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहस्यों जित हुन खसम ना पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाओ न गई लिव लागण जिन हर के चरण विसारे जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिनके तें दुख निवारे रहाओ तू दयाल दयापत दाता क्या ए जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझते हुए ऐसा आख बखाने गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिनकी गहन गत कही न जाई सत्य आप सवारे परम कुलाने से मन मुख कहिए ना उर्वार न पारे जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले हर जन माया माए निस्तारे नानक साध होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे बिलावल महला तीजा अतुल क्यों तोले आ जाए दूजा हो तो सो जी पाए किसते दूजा ना ही कोए तिस दी कीमत किको होए गुर प्रसाद वसे मन आए ताको जाने दुखदा जाए रहाओ आप सराफ कसवती लाए आपके परखे आप चलाए आपके तोले पूरा होए आपे जाने को सोए माया का रूप सब चिस्ते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिस आए सब सच दिखा लेता सच समाए आपके लिव पात है आपे आप बुझाए आपे जाते आपे सतगुरु शब्द है आपे नानक आप सुनाए आपे बिलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब में एक समाना सतगुरु परचय हर नाम समाना जिस कर्म हो वैसो सतगुरु पाए अंदिन लागे सहित्याना रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अभिमाना जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी सब कोई करो दिखाव खियाना आपे गुरु चेला है आपे आपे गुणी निधाना जो आप चलाए तिने कोई चाल है जो हर पावे भगवाना कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे कामा इक ना कर मैं देवड़े आई इक परम पवे अभिमाना बिलावल महला तीजा पूरा खाद बनाया पूरे देखो एक समाना इस परपंच में साचे नाम की वड़ाई मत को करो गुमाना
सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माए समाना ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा रहाओ। चौ जुगा का हुन वेड़ा नर मनुखानो एक निधाना जत संजम तीरथ ओना जुगा का कर्म है कल में कीरत हर नामा जुग जुग आपो अपना कर्म है सोध देखो वेद पुराना गुरमुख जिनी त्याया हर हर जग से पूरे परवाना कहत नानक सच्चे सो प्रीत लाए चूके मन अभिमाना कहत सुनत सबे सुख पावे मानत काहे निधाना। बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए मंगल मारी गावे आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए सौ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुवाए रहाओ। सदा रंग राते तेरे चाए हर जियो आग वसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते सबद रंग आए निज पर वासा हर गुण गाए रंग चलू ले हर रस आए यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंसर सबद मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सत राते तिन बहुत न फेरा नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई हौ में माया सब जलाई दर फाते गुर ते शोभा पाई जगदीश सेवो मैं और न काजा हम दिन अनुभ होवे मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई पूरे गुर ते शब्द गुजाई जीवन मरण को संसर वेखे बहु न मरे न जम पेखे कर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभिमान सद ही लागा सहस्यान हम दिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुर ते नाम से आई जह देखा तैरिया समाई सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई पूरे पाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया गुर का शब्द अक मीठा लाया नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा धरती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उदम मत प्रव अंतर जामे ज्यो प्रेरे त्यों करना ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती क्यों वाजे जंत जना जप मन राम नाम रसना मस्तक लिख लिखे गुरु पाया हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना जो प्रहला धरना कुछ ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत नित कही है हर की ये पतित पवन्ना ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे हर उद्रयो करो सरना। प्रभ दीन दयाल पगत पग कारण हम पापी राख कपना हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना। बिलावल मेला चौथा हम मूरख मुगत अज्ञान मती शरणागत पुरख अजन्मा कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा मेरे मन पज राम नाम है रामा गुरमत हर रस पाई है होर त्यागो ने फलकामा। रहाओ हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर हर जति है वड्डे कर्मा नामहीन त्रिग जीव से तिन वड दुख सम्मा ओए फिर जोन पवाइए मंद पागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है तुर पूरब लिखे वड परमा गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया
जन नानक सफल जन्मा। बिलावल मैला चौथा। हमरा चित लुगत मोह बिखिया, बहुत दुर्मत मैल परा, तुमरी सेवा कर ना सकते हैं, प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा, जन ऊपर कृपा कर तारी, मिल सतगुरु पार करा। रहा हमरे पिता ठाकुर प्रभ।

में हर देहो मती जस करा तुमरे संग लगे से उदरे जो संग पासत लोह तरा साकत नर होची मत मदन जिन हर हर सेव न करा ते नर पाधीन दो चारी कोई जन्म मोए फिर मरा जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोष गुरसरा दुर्मत मैल गई हर पजया जन नानक पार करा बिलावल महला चौथा आवे संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम दोहे थे कल युग खेवट गुर सबत करो मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिख लिखे गुण गाए मिल संगत पार करो रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम क्यों पाई है उपदेश जन करो सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाक दिखो गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब दिख रसो राम नाम रस राम रसायन हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर तजो बिलावल महला चौथा खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापे हर मंत्र जपैनी गुर सतगुर पार गम कर पूजो नित सेवो दिन सब रहनी हर जम देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ अनिक उपाव चितवी है बहुत तेरे सा हो वै जे बात हो वै नहीं अपना भला सब कोई बात है सो करे जे मेरा चित ना चितैनी मन की मत त्यागो हर जन एहा बात कठैनी हम दिन हर हर नाम से आवो गुर सतगुर की मत लेनी मत सुमत तेरे वक स्वामी हम जंत तू पुरख जंत रहनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी जो पावे तुम्हें बुलैनी बिलावल महला चौथा अनद मूल से आयो पुरखोत्तम अम दिन अनद अनंदे कर्म राय की कान चुकाई सब चूके जम के छंदे जप मन हर हर नाम गोविंदे वड पागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे राव साकत मूड माया के बद्धिक विच माया फिरें फिरंदे कृष्णा जलत कीर्त के बादे ज्यो केली बलद पहंदे गुरमुख सेव लगे से उदरे वड पागी सेव करंदे जिन हर जप्या तिन फल पाया सब टूटे माया संदे आपे ठाकुर आपे सेवक सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे आप सब वरते जो राखे तिवे रहंदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग बिलावल महला चौथा पड़ताल हर तेरवा बोलो भैया राम नाम पतित पावनो हर संत भगत पारनो हर पर पूरे रहा जल फले राम नाम नित गाये हर दुख विसारनो राव हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख विसारन हारा गुर पेटिया है मुकुट दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निराशी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नाम किस पगलावनो राग बिलावल महला पंजवा चौक देख हर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नदरी आवे तिस्यो मोह क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोहे कर कृपा मोह मार्ग पावो साथ संगत के अंचल लावो क्यों करिए दिखिया संसार सतगुरु बोहित पावे पार रहाओ पवन चुलारे माया दे हर के पगत सदा फिर से
हर शोक से रहे निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड माया सर्प पुयंगा, हौ मैं पचे दीपक देख पतंगा। सगल सिगार करे नहीं पावे, जहाँ होए कृपाल तो गुरु मिलावे। हौ फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तुसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल। जिन चाखिया तिस आया फाग, जो गूंगा मन में विस्माद। अनद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आप समाया। बिलावल मैला तन्यवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव। विघ्न न लागे जब अल्प वेव, तरत पुनीत सही गुण गाए। दुर्त गया हर नाम से आए रहाओ, सबनी थानी रवे आप। आज जुगा जाका वड प्रताप, गुर प्रसाद ना होए संताप। गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाई उठे। सब सुख पाए सतगुरु टूटे, पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले। जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रभ पाले। बिलावल मैला पंजवा सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे। मोए अनाथ तूरी शरण आई, पर कृपा हर चरण से आई। दया करो बसो मन आए, मोए निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ। प्रभु चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जम पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै सन सदा प्रभु दसे। प्रभु का नाम मन तन आधार, विसरत नाम हो संसार। प्रभु चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम होता। चरण कमल संग लागी प्रीत, विसर गई सब दुर्मत रीत। मन सन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कह कर सदा आनंद। राग बिलावल मैला पंजवा कर दूजा।

मैं मंग तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मंग तेरी टेक। अवर स्यान पा बिरथियां प्यारे, राखन को तुम एक रहाओ। सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे, सोजन होत निहाला। गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला। सफल मूरत गुरदेव स्वामी, सब कला पर पूरे। नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता। हर नाम अरादे नाम वखाने, हर नाम ही मनवाता। सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा। नाम की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखन पावा। वड पागी से काढ़िए प्यारे, संत संगत जिना वासो। अमृत नाम आराधिए निर्मल, मने होए प्रगासो। जन्म मरण दुख काटिए प्यारे, चूके जम की काने। तिना प्राप्त दर्शन नानक, जो प्रभ अपने पाने। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। गावते उदरे सुनते उदरे, दिन से पाप नेरे। पशु प्रेत मुग्ध को तारे, पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी शरण आई, सदा सदा बलिहार है। बिलावल मैला पंजवा, दिखे बन फीका त्याग री सकिए। नाम महारस पियो, बिन रस चाखे बुड़ गई सगली। सुखी ना होत जियो, मान महक ना सकती काई। सादा दासी थियो, नानक से दशोभा बनते, जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित क्रम सकिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया। चंचल संग ना चालती सकिए, अंत तज जावत माया। रस ओगण अतरूप रस माते, इन संग सूख न पाया। तन तन हर साधन सकिए, नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वड पागणी सकिए, संता संग समाये। कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे, चरण कमल लिव लाये। कहे जन्म ना मरण ना आंग जाना, नेचल सरनी पाये। प्रेम बिचो न मोह व्यापे, नानक हर एक ते आये। दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे, रतड़े सह सुहाए। से सुहावी संग मिल प्रीतम, अर्ग मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इच्छु जाए। नानक अचरज अचरज सो मिलिया, कहना कछु न जाए। राग बिलावल महला पंजवा, कर चौथा। इको उदार सतगुरु प्रसाद, एक रूप सगलो पासारा। आपे बनज आप व्यवहारा, ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए। जब जप जाइए तप दिश पाए। रहाओ अनेक रंग निर्गुण इक रंगा, आपे जल आप ही तरंगा। आप ही मंदिर आपे सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा। आपे जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभु सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सुधरना। आप करावन दोष न लेना, आपन वचन आप ही करना। आपन विपो आप ही जरना। रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना, आप ही अचल न जाई चलना। आप ही दुख आप प्रगटना, आप ही कट कट आप अलिखना। आपे अवगत आप संरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, फूले मार्ग जिन्हें बताया। ऐसा गुरु वड़पागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे।

बंधन काट मुकुट गुर कीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्नि सागर बूढ़ संसारा, नानक बाह पकड़ सतगुरु निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रब मांगन, तुम पे खत्सोगा मेरे आंगन, रहा, अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साथ संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतो के प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया, बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साथ संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जक रसना दुख ना व्यापे, रहा तिखा पूख बहुत तट व्यापया, शीतल पे हर हर जस जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मन तृप्ता ना हर गुण गाया, देहो पगत प्रबंध कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी, बिलावल महला पंजवा, गुर पूरा वड पागी पाई है, मिल साधु हर नाम त्याई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना, रहाओ, अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत साख वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए, बिलावल महला पंजवा।

一章，चरण कमल सुन लाइए चीता, हूँ बलिहारी जो प्रभु ते आवत, जन्म बुझे हर हर गुण गावत रहा, सफल जन्म होवत वट पागी, साध संग्राम में लिव लागी, मत पत तन सुख सहज आनंदा, एक निमत न विसरो परमानंदा, हर दर्शन की मन प्यास तनेरी, अमत नानक शरण प्रभु तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहि निर्गुण सब गुण बिहुना, दया तार अपना कर लीना, मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभ कर मैं आया रहा, भगत वचल कह का तुम्हारे, संसार सागर अब उतरे पारे, पतित पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया, साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायण। बिलावल महला पंजवा, कौन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी अलख अपेवा, गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे, ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरंपर ठाकुर मेरे रहाओ, एकत बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा, आपको कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवे सो नाम पाई, कहो नानक जो जन सब पाया, गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ में हाथ दे राख्या, हर वस छोड़ बिखिया फल चाख्या, पज गोबिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए सिंगारे मूड़े, तब तन बिनस जाए बेहाल रहाओ, तन मन तन अपना कर था पया, कर्ण हार एक निमक न जापया, महा मोह अंधकूप परया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरया, वड्डे पाग सब कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंदो पाई, नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई, सुख सहज आनंद कणे, गुर पूरा पूरी जाकी बाणी, अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ, सगल संजाम करे प्रभ आपे,

पूरी तई सिमर सिमर विदाता। साथ संग नाम करंग मान्या कर आया पूरे गुरियाण्या। बिलावल महला पंजवा। सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ। हर हर नाम जपत नर जीवे, नर सुवार सातक नर थीवे। राम नाम हुआ रखवारा, शक मारो सातक बेचारा। निंदा कर कर पचे कनेरे, निरपट फास दले सिर पैरे। कहो नानक जपे जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बिलावल महला पंजवा। कर चौथा दो पदे

परम सोमाप्जित प्रीतम पावो रहाओ, ऐसी कृपा करो क्रम मेरे, हर नानक बिसरना चाहू बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय पे आए, रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काट्या दीनो दान, सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अतक कथा अमृत प्रभ वाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांत पाई गुर सदगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। पाप पाप संताप विनाशे, हर सिमरत तिल विक्षवनाशे, अनंत करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पै सवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता, बंधन बाध्या अत विकराल,

दिन दिन छिजत बिकार करत औद फाही फाफा जम कह जाल। तेरी शरण प्रभु दीन दयाला महा बिकम सागर अत पारी उधरो साधु संग रवाला रहा। प्रभु सुख दाते समरथ स्वामी जियो पिंड सब तुमरा माल। कम के बंधन काटो परमेश्वर नानक के प्रभु सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिद समारया। सात जना होए कृपाला दिखे सब परवारया। कारज सतगुरु आप सवारया। वड्डी आरजा हर गोविंद की सुख मंगल कल्याण विचारया रहा। वंत्रण त्रिभान हरिया होए सगले जी सधारया। मन इच्छे नानक फल पाए पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल हर सिमरत का तैसो काल रहा। सात संग पजिया गोपाल गुण गावत तू तै जंजाल। आपे सतगुरु आपे प्रपाल नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में संचो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुण गान। ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पहर प्रभ जानो मेरे रहो। कहो नानक जाके निर्मल पाग हर चरनी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज कर आया रहो। राज राज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम रिद माहे त्याई। नानक गुरु पूरे शरण आई जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार रहाओ। जो जो निंद करे इन ग्रहण की तिस आगे ही मारे कृपार। नानक दास ता की शरणाई जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। ताप संताप सग ले गए बिन से ते रोग पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाओ। सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन आरोग। गुण गावो नित राम के ए अवसत जोग। आए बसो पर देश में ए तले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे लह गए बियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग ना चाल ही माया जंजाल। ऊट सिधारे छत्र तक संतन के ख्याल रहाओ। अहं बुद्ध को बिन सना एक उर की टाल। बहु जोनी जन्मे मरे बिख्या विकराल। सत बचन साधु कहे नित जपे गोपाल। सिमर सिमर नानक करे हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाज अनंत सुख पूरे गुरदीन। सदा सहाय संग प्रभु अमृत गुण चीन रहाओ। जय जयकार जगत में लोचे सब जिया। सो प्रसन्न पे सतगुर प्रभु कस बिघन न थिया। जांका अंग दयाल प्रभु ताके सब दास। सदा सदा वडियाईया नानक गुरु पास। राग बिलावल महला पंजवा। कर पंजवा चौक दे इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू कर बार। बिन सत बार ना ला गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार। सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए कर बार रहाओ। जैसा सुखना रैन का तैसा संसार। दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार। कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार। एक चाल से सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्थिर हर द्वार। जन नानक हर का दास है राख तैज मुरार। बिलावल महला पंजवा। लोकन किया वड्याईया बैसंतर पागो। जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो। जो प्रभ जियो दयाल होए तो पंक्ति लागो। लप रहो मन बासना गुर मिले त्यागो।

गुर अमर कराया। सो जाने जिन क्या किया हर नाम अमोला, कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्द तेरा पार जम गुण तेरी बाणी, पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी। बिलावल मेला पंजवा, राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे, सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे, मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद गुण थे तुम बक्षण हारे, रहाओ हम अवगुण करें असंख्य नीत तुम निर्गुण दाता रे, दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे, तुम देवो सब कुछ दया तार हम अकीर्त कनारे, लाज परे तेरे दांस्यों ने चित कसमारे, तुझते बाहर किछ नहीं पाव काटन हारे, कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बिलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याये, जित सेवे सुख होए कहां मन सोई गाये, कही है काय प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमां, रहाओ जो तुम राखो त्यों रहा अवर नहीं चारा, नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा, जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता, चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे, हो कृपाल दयाल प्रभु नानक गुण गावे। बिलावल महला पंजवा, निर्प हसे सिर ऊपरे कसुआ नहीं बूझे, बाद साध अंकार में मरना नहीं सूझे, सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अभागे, देख कुसुम्बा रंगुला काहे पून लागे, रहाओ कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई, माटी से माटी रली नांगा उठ जाई, जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी, अंतकाल पद जाएंगे काहे जलो क्रोधी, दास ऋण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा। बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भुजीता,

have had on the path. Sing bilai ho gayo trin mer dikhita, sram karte dam aad ko te ganit neeta. Kaman vadai keh sako beant gunita, kar kirpa moy naam deho nanak dar srita. Bilawal mahala panjwa. अहं बुद्ध प्रबाद नीत लोग रसना साध लपट कपट गृह वेदिया मिथ्या विख्याद ऐसी पेखी नेत्र में पूरे गुरु प्रसाद राज मिलक तन जोगना ना मैं बिन बाद रहाओ रूप तूप सोगंधता कातर कोगाद मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद फिरत फिरत मानस पया खिन पंगन देहाद ए अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद सुख सहज नानक आनंद ताके पूरन नाद बिलावल महला पंजवा चरण पाए संत बोए था तरे सागर जेत मार्ग पाए उद्यान में गुर बसे पेत हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत उठत बैठ सोवते हर हर हर चेत रहाओ पंच चोर आ गए तगे जब साथ संगेत पूंजी साबत कणो लाभ गृह शोभा सेत नेकल आसन मिटी चिंत नाही दोलेत परम पुलावा मिट गया प्रत्येक नेत गुण गंभीर गुण

प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छड़ जाए। तुमरी कृपा ते छूटी है बिन से अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिन पूर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जत तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किच तुम ते मांगना वड पागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुन गाए। लीलावल महला पंजवा, सात संगत के बास में कलमल सब नसना। प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना, नाम कहत गोविंद का सूची भई रसना। मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना। रहाओ हर रस चाखल त्रापिया मन रस ले हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट भई उलट कमल बिरसना। शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा, दैद सतावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हार राखिया पय प्रम पसना, नाम निधान नानक सुखी पेक साध दर्शना। बिलावल महला पंजवा, पानी पखा पीस दास के तब हुए न्याल, राज मिलक सुखदारिया अग्नि में जाल। संत जना का छोरा तिस चरणी लाग, माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग। रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान, गृह साकत छत्ती प्रकार के बिकु समान। भगत जना का लूगरा ओढ़ नगन ना होई, साकत सिर पाओ रेशमी पहरते पत खोई। साकत स्यो मुख जोरे है अदवी चो टूटे, हर जन की सेवा जो करे इत उतह छूटे। सब कुछ तुम ही ते हो आप बनत बनाई, दर्शन पेट साध का नानक गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, श्रमनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो, संत चरण कर शीश तर हर नाम से आवो। कर कृपा दयाल प्रभु ते निज सुध पावो, संत जना की रेण का ले माथे लावो। रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर दिनो बुलावो, पाप मलोवा आप त्याग संत संग समावो। सास सास न विसरे अनपते न तावो, सफल दर्शन गुर पेटिए मान मोह मिटावो। सत संतोष दया कर्म शिगार बनावो, सफल सुहागन नानका अपने प्रभावो। बिलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना सब ने प्रगताया, जिस जन हुआ साध संग तिस पे हर गाया। ए प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया, अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया। रहाओ शरण परे की रास्ता नाही सहसाया, कर्म पूम हर नाम दोए अवसर दुलभाया।

मत फूलो मानस जन्माया परमाया। नानक तुस पत राक्षी जो प्रभ पहराया। बिलावल मेला पंजवा। माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, अनक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे। क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण एहे, प्रभ तज रचे जे आंसू सोर लिया खे। रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत गिलम करे हे। छोड़ प्रपंच प्रभ सो रचो तज कूड़े ने हे। जिन अनक एक बहुरंग किए है होशी एहे, कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले हे। ऊंचे ते ऊंचा वडा सब संग बरने हे, दास दासन को दासरा नानक कर ले हे। बिलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अनास, सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुण पास। जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है, दीन दयाल कृपा निजे सास सास समार है। करनहार जो कर रहा साई वडे आई, गुरपुर उपदेशिया सुख समर जाए। चिंत अंदेशा गणत ताज जन हुकम पछाता, न बिन सह में छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा। महा तपत ते कई शांत पर सत पाप ना थे, अंधकूप में गलत थे पादे देहा थे। ओए हमारे साजना हम उनकी देन, जिन पे तत होवत सुखी जी दान देन। रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए, वस्त संग हर साध के पूरन आसाए। पैदन से तिल लोक के पाए सुख थान, दया

कीमत कहीं ना जाइए ठाकुर प्रतापे। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरे नानक जतै सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल तोवो ए शीश कर, कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श तेख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ के पावो, देव सुहनी साध के बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, ओआ रस में सांप तृप्त होए दिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो, नानक की प्रभ बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तू सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर के काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुर पहे सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिर्फ प्रम मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हो आ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नदर निहाल। गुरपुरे कृपा करी काटया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहाओ औषध हर का नाम है जित रोग ना व्यापे, साध संग मन तन हिते फिर दुख ना जाते। हर हर हर हर जाती है अंतर निवलाई, किलिक उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभ अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया

पार मन से कभो ना विसरे सुर पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरुदेव जाको कृपा करो प्रभ ताको लाओ सेव निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद नानक कभो न विसरे प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा कृष्ण बुजी ममता गई नाथे तय परमा चित पाई अनद भया।

कर पचे जम काल ग्रसिए रहाओ। संता एक त्यावना दूसर को नाहे, एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत बचन नानक कह प्रगत सब माहे, प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिनको पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे सो प्रभु जाते कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है रातो हर नाथ। कौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल, छूट जाए

समग्री मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपार। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया, तुमरी प्रतीत महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमादा हर का पैथर तो छुटे, जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संयम तुम खंडे, जम के दुख डांड सिमरे नाही, जोन दुख निर्लज्जे पांड। हर संग सहाई महामीत, तिस्यों तेरा खेद दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस कीना तन तन सर्व सो अपना प्रभ जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे, सब के मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ कोच। तन सो खान बसंत तन जह जपिय नाम, कथा कीर्तन हर अत कना सुख सहज विश्राम। मन से कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाके सब कुछ हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़या, कुन सुख में पाया सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया। जीवतया अथवा मोया।

शीत करता करे काम को काटे, कीवी के हस्ती करे टूटा ले गांडे, अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभु की एक किरत, किरत कमावन सर्व फल रवि हर मृत। हम से कछु ना होना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड। बिलावल मेला पंजवा, खोजत खोजत मैं सिरा खोजो बन खान, अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान, कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग, जागन के सुपना भला बसिए प्रभ संग रहाओ। बरन आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप न देख न पंच तत् ठाकुर अविनाश, ओ स्वरूप संतन कहे विरले जोगी सर, कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर।

प्रभ की वजाई, नानक अंत न पाई है बेअंत गुसाई। बिलावल महला पंजवा। सिमर सिमर पूरन प्रभु कारज भय रास, करतारपुर करता वसै संतन के पास। रहाओ विघ्न ना को लागता गुर कै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास। चोट ना आवे कदे मूल पूरन पंडार, चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार। वस्त कमावत सब सुखी किछ ऊन न दिसे, संत प्रसाद पेटे प्रभु पूरन जगदीश। जय जयकार समय करे सत्थान सुहाया, जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा। हर हर हर आराध्य होइए आरोग, रामचंद की लस्तुता जिन मारया।

अवर उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया, राखन हार राख्या अपनी करमया रहाओ, बां पकड़ प्रभ का दया कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा। कर कर मस्तक थापया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित में साध जन सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप, राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर त्याय है किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है कई दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा। मन तन प्रभ आराधी है मिल साथ समाज है, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भाग है, राम नाम जो जम जपे अंजन सब जागे, पंत मंत नह जोई तित चाप न लागे। रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागे, आनंद मगन रस

तो कुछ नहीं करना, दुख ना लागे कदे तुद, पार ब्रह्म सितारे जम कंकर नेड़ ना आवे, गुरसिख प्यारे रहाओ। करण कारण समरथ है किस बिन नहीं होर, नानक प्रभु शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभु अपना, नाथा दुख ठाओ, विश्राम पाए मिल साथ संग, ताके बहुर ना पाओ। बलिहारी गुर आपने चरणन बल जाओ, अनद सुख मंगल बने पेखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद तुन इह बनियो सुआओ, नानक प्रभु सो प्रसन्न भए बाँचत फल पाओ। बिलावल महला पंजवा, दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास, चरण कमल का आसरा प्रभु प्रगुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लख सास रहाओ। मात पिता बंधक तू है तू सर्व निवास, नानक प्रभु शरणागति जाको निर्मल जास। बिलावल महला पंजवा, सर्व सिद्ध हर गाय सब कला।

पार। तुझे ना जो है को मीत जन, तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राख्या, दे अपने हाथ रहाओ। जीवन का दाता एक है, दिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक हो गए।

सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जय अपार जगत में सफल जाती सेव। ऊंच अपार अगणित हर सब जीव सहाथ, नानक कब शरणागति जत तक मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा राजा होए कृपाल, मार्ग संत बताए।

आप जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार में फिरते तय नाम नानक के शरणागति कट कट सब जान बिलावल मेला तनिमा। रोग मिटाया आप प्रभु उपजिया सुख शांत वद प्रताप अचरज रूप।

हम अरबाब जानी तुम अंतर जामी, खान खनन कर लाव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा। ताकि भाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई। सतगुरु पूरा भेतोया जिन बंत बनाई, राम नाम और सब दिया एक।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन से जय चितार है, सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरे परिवार है, जो तुम करो सोई पल हमरे, तेरे नानक सुख चरनार है। बिलावल महला धन्यवाद सुनियत।

कृपा अपने प्रभु की ने, नाम अपने की कीनी दात, आठ पहर गुण गावत प्रभु के, काम क्रोध स्तंभ से जात। त्रिपत अघाय तेज प्रभु दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात, चरण शरण नानक प्रभु तेरी, कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल मेरा पंजवा, राख लिए अपने जनाप, कर कृपा हर हर नाम दीनो, बिनस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हरजन, राग रतन रसना आलाप, कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाते, गुर के बचन जपे हर जाप, सागर तरे परम तै बिनसे, कहु नानक ठाकुर प्रताप। बिलावल महला पंजवा, पाप लाया गुर सृजनहार, सदगुर अपने को बल जाई, जिन पैज रखी सारा संसार। रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो, प्रभ अमृत नाम महारस दीनो, दास की लाज रखे मेहरबान, गुरु नानक बोले दरगे परवान। राग बिलावल महला पंजवा, चौक दे दुख दे कर सतवा, इको अंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिनसो अंधकार ते मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। रहाओ विस्मन विषम पे जो पेठियो, कह न जाए वडियाई, मगन पे ऊहा संग।

एक है अपर अपारा, एक विस्थिरण एक संपूर्ण, एक है प्राण धारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंश ना अंता सदा बिरंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा, बिन हर कामना आवत है, जासु राच माच कुम लागे, ओ मोहनी मोहावत है त्रहाओ, कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ छिने में जावत है, उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो, बिखै ठगोरी खावत है। त्रिन को मंदर साज सवारे हो, पावक तने जरावत है, ऐसे गर में ऐठा ठीलो, फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर खाडे, केस दहे फिर आवत है, दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी, सोए रहो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी, पंखी ज्यो पहावत है, कहो नानक बंधन कातन कहो, मैं सतगुरु पुरख के आवत है। बिलावल महला पंजवा, हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारो मने अधारो, चीत चितवो जैसे पान संबोली। रहाओ सहज समायो, गुरे बतायो, रंग रंगी मेरे तन की चोली, त्रै मुख लागो जो वड़कागो, सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा, पोत पोत अंग अंग संग।

गोविंद गोविंद मई, जब के पेटे साथ दया रहा, तब ते दुर्मत दूर पही रहा, पूरन पूर रहो संपूरन, शीतल सांप दयाल दई, काम क्रोध तृष्णा अंकारा, कमते हुए सगल खई, सत संतोष दया कर्म सुख संतन ते ए मंत लई, कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिनको सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा, क्या हम जी जंत बेचारे, वर्ण न साके एक रोमाई, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई, क्या कथिय किस कथन न जाई, जह जह देखा तहरिया समाई, रहाओ जह महाप्रयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभु तुहें सहाई, शरण पर्यो हर चरण गहे प्रभु, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, अगम रूप अविनाशी करता, पतित पवित्र एक निमख जताई है, अचरज सुनियो प्रापक पेटले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित युक्ति त्याई है, रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, को किसकी लई लई फुन जाई है, नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है। बिलावल महला पंजवा, संत शरण संत टहल करी, तंद बंद हर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज हर कनो आनंदा, गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बरन ना सातू, गुर पूरे मेरी उल्ट करी, देखियो मोहन सब कै संगे, पूर्ण न काहू सगल करी, पूरन पूर रहो कृपा निद, कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हूँ क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभु मेरे, किस आगे क्या कह

ज्यों कालर पीत गिरिए रहाओ, जो देखे छिदर तो निंदक कुमा है, पलो देख दुख परिये, आठ पैर चितवे नहीं पहुँचे, बुरा चितवक चितवित मरिये। निंदक प्रभु पुलाया काल नेरे आया, हर जन स्यों बाद उठरिये, नानकारा था आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करिये। बिलावल महला पंजवा, ऐसे काहे पूल परे, करें करावे मुकर पावे, देखत सुनत सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छादन, बैरी संग हेत साजन क्या करे, होवन तोरा अनहोवन मीठा, बिख्या में लपटाए जरे। अंध कूप में परयो प्राणी, परम गुबार मोह बंद परे, कहो नानक प्रभु हो दयारा, गुर पेटे का दे बहा फरे। बिलावल महला पंजवा, मन तन रसना हर चीना, पै अनंदा मिटे अंदेसे, सर्व सुख मोको गुर दीना रहाओ। त्यानप ते सब परिश्यानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे राखे अपने को, काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोस है, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा, गुर पूरे मेरी राख ले, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई रहाओ। निवरे दूत दुष्ट बैराई, गुर पूरे का जपया जाप, कहां करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे का बड़ प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख पा।

पंजवा सदा सदा जपी है प्रभ नाम, जरा मरा कछ दुख न व्यापे है, आके दर्द है पूरन काम रहा, आप त्याग परिय हित करनी, गुरते पालिय हो निधान, जन्म मरण की कटिय फांसी, साची दर्गे का निशान, जो तुम करो

मन तन अंतर प्रभ आही। हर गुण गावत पर उपकार नित, किस रसना का मोल किस नाही। रहाओ कुल समूह उदरे छिन कीतर, जन्म जन्म की मल लाही। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अनद से की बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए, पव सागर पार पर आही। संत सेवक भगत हर काके, नानक मन लागे है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा। तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही बसे साध कै संगा। रहाओ छिन में थाप निवाजे ठाकुर, नीच कीर्त ते कहरा जंगा। कभू न बिसरह ही मोरे ते, नानक दास एही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचुत पूजा जोग गोपाल, मन तन अप रखो हर आदय। सर्व जिया का है प्रतपाल। रहाओ शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल। कंठ लाए राखे अपने को, किसनो लगे न ताची बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्व सो संत जना तन माल। नानक जाचक दर्श प्रभ मांगे, संत जना की मिले रवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन भये। साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन को त्रास कहे। रहाओ जेते पुनः चरण से कीने, मन तन प्रभ के चरण गहे। आवन जान परम पौ नाथा, जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपो होए पजो जगदीश, तुह पदार्थ बड़ पाग लहे। कर कृपा पूरन प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण रात, सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे। सुलही होए मुआ ना पात। रहाओ काट कुठार खसम सिर काटया, छिन में होए गया है खाक। मंदा चितवत चित

आपे आप वर्ते स्वामी कार्य रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना थाट बनायो आप, अपने सेवक की आपे राखे प्रभ मेरे को वड प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु

आप पाप से राखे आप शीतल पर गुर चरनी लागे राम नाम हृदय में जाप रहो कर कृपा हस्त प्रभ जी ने जगत उधार नवखंड प्रताप दुख दिन से सुख

सूरे हल्क पलक पार ब्रह्म सवारे पारज हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आवन जान रहे थित पाए जन्म मरण के मिटे बिसूरे प्रम पै तरे छुटे पै जम के कट कट एक रहा पर पूरे नाम शरण परयो दुख पंजन अंतर बाहर के खजूरे बिलावन महला पंजवा दर्शन देखत दोख नसे कभो ना हो वो दृष्ट अगोचर जीते संग बसे।

जंत की करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जाते, नानक प्रीत लाई प्रभाते। बिलावल महला पंजवा। पन पन जोबन चलत गया, राम नाम का पदन ना कीनो, परत विकार निष्फोर पया रहा, अनेक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता कस खीन खया, मेरी मेरी कर कर मुठो, पाप करत नह परी दया।

कंठ लाए राखे जन अपने, उधर लिए लाए अपने पाल। सही सलामत मिल कर आए, निंदक के मुख होए काल। कहो नानक मेरा।

फूल जियो अल मकरंद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक है हर लाहे अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मन हर रस टूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे राग बिलावल मैला नावा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद दुख हरता हर नाम पहचानो अजामल जनता जिन सिमरत मुक्त पाए जी जानो।

कोना है। तुम नर जन्म अकार खोया, यह राखो मन माही राव। तीर्थ करे व्रत फुन राखे, ने मनुआ बस जाको। नेफल कर्म ताहे तुम मानो साच।

सब कोई कत कत बाद करे दुख होई कत कहने ते रहे न कोई दिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रहत साचा मन सोई मनमुख कथनी है पर रहत न होई नामो पूले थाओ न कोई मन माया बंदे हो सरजाल कट कट

नाट साला, नाम विसार माया मद किया, बिन गुरु भगत नाही सुखतिया, सूकर स्वान गर्दव मंजारा, पशु मलेच नीच चंदाला, गुर के मुंह फेरे तिन जोन पवाये, बंधन बांधिया।

आप न बुझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, डर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामे।

गुरमुख मनुआ इकत कर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मन तृप्त, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है तीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई, गुरमुख आपके अलख लख।

सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहके तृप्त न

हट करम दृढ़ैया मनमुख पाखंड परम विगूत लोभ लहर नाव पार बुढ़ैया। नाम जपो नामे गत पावो सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया। हो में जाए ता निर्मल होवे गुरुमुख परचे परम पद पैया। एहो जग वरण रूप सब तेरा जित लावे से कर्म कमैया। नानक जंत बजाए वाजे जित पावे तित राहे चलैया। बिरावल मेला चौथा। गुरुमुख अगम अगोचर त्याया हौ बल बल सतगुर सतपुरखैया। राम नाम मेरे प्राण वसाए सतगुर परस हर नाम समैया। जन की टेक हर नाम कितैया सतगुर की तर लागा जावा। गुर कृपा ते हर

मन मांगे रिद सिद चेतक चेत कहिया त्रिपत संतोख मन शांत न आवे मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद कहिया अंडज जेरज सेतज उत्पुज

बहुत मन चाहिया मन तन काट दियो गुर आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाइया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगाइया। मस्तक काट दियो चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधे गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वचल ओआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे तैया। सीमा सिदार करे प्रभ खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो कट।

नैया सतगुरु दया करे प्रभ मिले, मैं तुस आ गए सिर कट कट पैया रहाओ। रोम रोम मन तन इक बेदन, मैं प्रभ देखे बिन नींद न कैया। वैदक नाटक देख पुलाने, मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया। हौ खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम, जो बिन अमले अमली मर गैया। जिनको प्यास हुए प्रभ केरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दोइया। कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हौ तिस विटों बल बल कुम गैया।

प्रभु ठाकुर महल न पावे मन मुख परमैया गुरु गुरु करत शरण जे आवे प्रभु आए मिले छिन टील न पैया कर कर क्रिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ कह कर बेटा जन्मया पिता ताए क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया तब आन आन मेहंदी पिसाई आपे कोल को।

चोटा खाए, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पखंड कीने मुक्त ना होए। आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़,

पंचपूत बेताला आप अगोचर पुरुष निराला इक परम पूखे मोह प्यासे इक रस चाखे सब तृप्ता से इक रंग राते इक मरतूर इक दर कर

किसमें मनुआ रहा लिव लाए, प्रणवत नानक काल न खाए। नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा, कट कट नाथ महाबलवंडा।

डागर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पत खोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने। चौथे थावे ले पावे, राज तामस सतकाल समावे, ससियर के कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहया लिवलाए।

आप गवाये। नानक नाम रखो उर्धार, देवन हारे को जयकार। वीरवार वीर परम पुलाए, प्रेत भूत सब दूजे लाए। आप

गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए। सत गुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सच लिवलागी। तेरे रंग राते सह सुबाए।

जी जंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मरे अपागे, सतगुर पे ते सो जी पाए, परपंच चूके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक रहाओ, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेख है, कोई न मेटे तेरे लेख है, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवे जाए, सतगुर से वै सो जन बूझे, हमें मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वक्त है अवर न बिया, दूजे से जे एको जाने, गुर के शब्द हर दर

अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्द क्यों पाए पार, आप उपाय उपावन हार, आपे की सुन गुर विचार, बहुते पेख करें पेख तारी, पव पव पर मैं काची सारी, ऐसे सुख ना आगे होए, मन मुख मोए अपना जन्म खोए, सतगुरु सेवे परम चुकाए, कर ही अंदर सच मैल पाए, आपे पूरा करे सोए, एक कितनी वार दूजा दोए, सतगुर बाजो अंग गुबार, कितनी वार सेवे मुग्ध गवार, नानक गुरमुख बूजे सोजी पाए, इकत नाम सदा रहया समाए।

मुंड नवे लड़िया गोयल आई राम, मटकी डार तरी हर लिवलाई राम, लिवलाए हर सो रही गोयल, सहज सब पिगारिया, कर जोर गुर पै कर बेनंती, मिलो सास प्यारिया। तन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक मुंड नवेल सुंदर, देख फिर साधारिया। सच नवेलड़िए जो बनबाली राम, आओ न जाओ कहीं अपने सैनाली राम, ना अपने संग दासी मैं भगत हर की पावे, अगाध बोध अकप कथिय सहज प्रभ गुण गावे, राम नाम रसाल रसिया रवे साच प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया। श्री तर मोहड़ी पिर संकूती राम, गुर के पाए चलो साथ संगूती राम, तन साथ संगूती हर संगसूती, संग सकी सहेलिया, एक पाए एक मन नाम वसिया, सतगुरु हम मेलिया, दिन रैन करी ना चसा विसरे, साथ साथ निरंजनो, शब्द ज्योत जगाए दीपक नानका पौ पंजनो। ज्योत सबाइड़िए त्रिभुवन सारे राम, कट कट लव रहा अलख अपारे राम, अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाइए, हो मैं ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाइए, दर जाए दर्शन करी पाने तार तारण हारिया, हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उधारिया। मिलावल मेला पहला मैं मन चाओ कणा साथ विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभ अवनासी राम, अब गतो हर नाथ नाथे तिसे पावे सोची है, कृपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जिये, मैं अवर ज्ञान ना ज्ञान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे, देख पवनी हठ न जाना नानका सच गह रहे, पिंगड़ी रैन पली दिन सुहाए राम, निज कर कूटड़िए पिरम जगाए राम, नव हान नव तन शब्द जागी अपने पिर पानिया, तज कूड़ कपट स्वभाव दूजा चाकरी लोकानिया, मैं नाम हर का हार कंठे साथ शब्द निशानिया, कर जोर नानक साथ मांगे नगर कर तुद पानिया। जाग सलोनड़िए बोले गुरबानी राम, जिन सुन मने अड़ी अकथ कहानी राम, अकथ कहानी पद निर्बाणी को बिरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिभुवन को जी सूजे, रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया, ओ पूरया सर्व ठाई नानका उर्धारिया, महल बुलाईड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी सीजस देही राम, मन मार विजय शब्द सीजय त्रै लोक नाथ पछाणे, मन डीग डोल ना जाए कतही अपना फिर जाने, मैं आधार तेरा तू खसम मेरा, मैं कान तकिया तेरो साथ सूचा सदा नानक, गुर शब्द चगर निवेरो। संत बिलावल मेला चौथा मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा हर प्रभ से जय आया मन सुख समाना राम, गुर पुत्र है हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम, वड पागिया सुहागनी हर मस्तक माना राम, हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाना राम, निमानिया हर मान है हर प्रभ हर आपे राम, गुरमुख आप गवाया नित हर हर जाते राम, मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रापे राम, जन नानक सहज मिलाया हर रस हर कृपे राम, मानस जन्म हर पाये हर रावण मेरा राम, गुरमुख मिल सुहागनी
रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म ना पाया तिन भाग मंगेरा राम हर हर हर हर राख प्रभु नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभु अगम दृढ़ाया मन सन रंग पीना राम भगत वत्सल हर नाम है गुरमुख हर नीना राम बिन हर नाम ना जींदे ज्यो जल बिन नीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम। बिलावल मेला चौथा श्लोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लो मन वसै वड भाग गुर पूरे वेखा लिया नानक हर लिव लाग संत मेरा हर प्रभ रावण आया हो मैं बिच्चा जे राम गुरमत आप मिटाया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड पागे राम हर प्रभु हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया ज्योत प्रगट आई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो दुलक मसाई राम गुरपूरे हर मेलिया हर रस अधाई राम जन नानक नाम विदसिया हर हर लिव लाई राम हम मूर्ख मूर्ख मिलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु सवास है जिन हो मैं मारी राम जिन वड पागिया वड पाग है हर हर उधारी राम जन नानक नाम।

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम, अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते, सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिये मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया, दिन वंत नान करो कृपा लहो मोहे लड़ लाया। पया समारा

एक चित एक मन त्याय स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभ ते कर बिनंती मिले हर जस लाह बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथाह सा।

मिल एकत्र होए सहज तोए मन प्रीत उपजी मांझिया मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली सब कारण करण जोगो पवन सुहावरा तर्क सभा जी राम प्रभ कर आयरा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत पूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंगुल वजे बाजे अहमत मन की त्यागी बिनवंत नानक शरण स्वामी संत संग लिवलागे बिलावल मैला पंजवा पाग सुलखना हर कंका मारा राम अनहद बजित्रा तिस सुंदर वारा राम आनंद अंदिन वजे बाजे दिन स्रे उमा तह रोग सोग ना दुख दिया तै जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत पगत परे पंडारा बिनवंत नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सकी सहेलड़ियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसे पावे एक निमुख पलक ना त्यागी है जय कंठ लाई है नह लजाई है चरण राज्य मन पागी है पलक थगौरी पाए मोह है अंत कथु न पावे बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे दिस मन दिसम पई पेट गुण अविनाशी राम कर जय पूजा गही कट जम की साफी राम जय पूजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोक जनाया मलन मोह विकार नाथे दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक पई निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप पुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जाने जिन्नी हर रखिया।

आओ सखी वस आओ सखी असी तिरका मंगल गावे तज मान सखी तज मान सखी मत अपने प्री संपावे तज मान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण शरण दयाल प्रीतम सगले दुर्फे दिखंडनो होए दास दासी।

वो जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी, मोहनी माँ विचित्र चंचल अनित पाग दिखावे। ओए पीठ मीठी मने लागे नाम लेन ना आवे, गृह बने तीर व्रत पूजा बात काटे जोनी, नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंधले तोहनी। मोहे अनाथ प्रे नाथ जो जानो त्यों रखो, चतुराई मोहे नाहे री जावो कै मुखो, मैं चतुर सुगर सुजान दे।

क्यों सर है मोहित तात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख पर है हरे प्यास मेरी जी जिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी हुए गते कीत चित हो मित अंधारे जो आस चतुरी दिन चरे नानक पयम तय प्रिय संग मिली मछली नीर न विसरे तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रसना नवल नव तन नाव बाला कमल रसना गुण

नानक प्रभ शरणागति जप अनंत तरंगे राम। इक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किस दीना राम। वड पागी ने लावड़ा गुरमुख तिरछी ना राम। बहां पकड़ तम ते काडया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवै शीतल मन सीना राम। क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम। सुमर सिमर नारायण पय पार जरामी राम। गुण गावत गोविंद के सब उच्च पुजामी राम। नानक उदरे जप हरे सबू का स्वामी राम। रस्त

भगता के आनंद कार हर भगता का मेली सर्वत सौ निशुल जन संग तार हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर खुद अपर कोई न सके सब चक चक पवे चर।

इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर कच्चा के नाम रहे लिलाए। मैला तीजा सतगुरु की सेव ना की किया, सबल ना लगो पाओ, हो मैं रोग कमावना अत दीर्घ बहु स्वाओ, मन हट कर्म कमावने फिर जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे ले मिलाए, नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्ले पाए। कौड़ी सब वडियाईया हर नाम विच हर गुरमुख त्याये, जे वस्त मंगिए साई पाईए, जे नाम चित लाईए, गुहज गल जी की कीचे सब गुरु पास ता सर्व सुख पाईए, गुरु पूरा हर उपदेश दे सब भुख ले जाइए, जिस पूर्व हो वह लिखिया सो हर गुण गाइए। श्लोक महला तीजा सतगुरु पे खाली को नहीं मेरे प्रभु मेल मिलाए, सतगुरु का दर्शन सफल है जिहा कोई खेते हा फल पाए, गुरु का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए, हर रस की संतोष हुआ सत रसिया मन आए, सच के आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए, सचो दैव पथरिया गुर कहते सुबाए, नानक जिन अंदर सच है से जन छपे ना किसे दो छपाए। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई जा को नदर करे, मानस के देवते पे सच्ची पगत जिस दे, हो मैं मार मिलायन गुर के शब्द सुचे, नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे। पौड़ी गुर सतगुर विच नाम है की वड्डी वडियाई, हर करते आप वधाई, सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओना अंदर हृदय पाई, निंदक दुख वडियाई वेख न सकन ओना पराया पला ना सुखाई, क्या होवे किस ही की चख मारी जा सके स्यों बने आई, ये गल करते पावे सा नित नित चले सवाई, सब चक चक मरे लुकाई। श्लोक महला तीजा रुद ए आशा दूजे पाव की जो मोय माया चित लाए, हर सुख पल्लव से आ गया नाम विसार दुख पाए, मन मुख अज्ञानी अंगले जन्म मरे फिर आवे जाए, कार्य सिद्ध ना होनी अंत गया पछताए, जिस कर्म होवे तिस सतगुरु मिले सो हर हर नाम से आए, नाम रते जन सदा सुख पाए, जन नानक तिन मल जाए।

ये जो कुछ हर करावे सो ओय करे सब हर के अर्थिये। सो ऐसा हर सबना का प्रभु सतगुरु के वल है। तुम सब वर्ण चारे खाने सब सृष्टि को लेकर सतगुरु अग्गे कार कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो जिन विच्चों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कदिए। हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा अंदर कपट सभा दुख है मन मुख ध्यान न लागे। दुख विचकार कमावनी दुख वर्त है दुख आ गए। कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम।

हर का नाव मन पाया, गुरुमुख वेखन बोलना, नाम जपत सुख पाया, नानक गुरुमुख ज्ञान प्रगासिया, सिमर अज्ञान अंधेर छुपाया, मैला तीजा। मन मुख मैले मरे गवार, गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार, पनक नानक सुनो जन पाई, सतगुरु से वो हो मैं मल जाई, अंदर संसार दूख व्यापे, सिर तंदा नित मार, दूजे पाए सूते कबो न जागे, माया मोह प्यार, नाम न चेते शब्द न विचारे, तो मन मुख का विचार, हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव, किसकी मोहताजी लोक कटदा, होर को हट ना वत ना वेसाओ, भगत जना को सन्मुख होवे, सो हर रास ले वे मुख पट पाओ, हर के नाम के व्यापारी हर भगत है, जम जागाती किना नेड़ न जाओ, जन नानक हर नाम तन लग्या, सदा वे प्रवाओ। श्लोक महला तीजा। इस युग में पगती हर तन खटिया, और सब जगत परम पुलाया, गुरु प्रसादी नाम मन वसिया, अंगिन नाम के आया, दिखिया माए उदास है, हो मैं शब्द जलाया, आप तरिया कुल उदरे तन जनेंदी माया, सदा सहज सुख मन वसिया, सत्य सो लिव लाया, ब्रह्मा विष्णु मां देव त्रै गुण पुल्ले, हो मैं मोह वदाया, पंडित पर मोहनी पुल्ले, दूजे पाए चितलाया।

न कोई गुरुमुख अंतर मन वसै सदा सदा सुख होए पौड़ी। जिन्नी गुरुमुख हर नाम तन ना खट्यो से देवालिये जुग माहे। कोई मंगदे फिरे सब जगत में कोई मोह थुक ना तिनको पाए। पराई बकीली करें अपनी प्रतीत फोन सगवा भी आप लखाए। जिस तन कारण चुगली करें सो तन चुगली हथ ना आवे कोई पावे तिथे जाए। गुरुमुख सेवक पाए हर तन मिले तुच्छो कर्महीन ले न सके। होर थे देश दिसंतर हर तन नाहे श्लोक में ऐला कीजा। गुरुमुख संसा मूल न हो गई चिंता विच्चों जाए। जो किस हुए सो सहजे हुए कहना किसु ना जाए। नानक तिनका

अंगन जागै कदे न सोवै सहजे अमृत प्याओ। मीठा बोले अमृत बाणी अंगन हर गुण गाओ। निज घर वासा सदा सोंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवे हरी सो गुर हर तन हर पासो देवाया। जो कुसै क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मंग ले अक्के कोई क्यों देवाए। इहो हर तन जोर कीते किसे नाल ना जाए वंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर श्रद्धा लाए तिस हर तन की वंड हत आवे। जिसनो करते तुर लिख पाया इस हर तन का कोई शरीक नाही किसे का खत नाही। किसे के सीव बन्ने रोल नाही जे को हर तन की वकीली करे। इसका मोह हर चौ कुंडा विच काला कराया। हर के दिते नाल किसे जोर वकीली ना

नानक जो पावे सो होए पौड़ी, पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुरे मेहरवान परम पौ मारिया, काम क्रोध विकराल दूत संभारिया, अमृत नाम निदान कंठ उधारिया, नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया। श्लोक महला तीजा। जिन्नी नाम विसारिया कूड़े कहन कान, पंच चोर तिना कर मोहन, हौ मैं अंदर सन साकत मुठे दुर्मती, हर रस ना जानन, जिन्नी अमृत परम लुटाया, विक्षो रचे रचन, दुष्टा सेती तिरहड़ी, जंक्षो वाद करन, नानक साकत नरक में जम बजे।

किस सास गिरास सदा मन वसे है, जम जोए ना सके तिस हृदय हर हर नाम रस कवला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस नानक मन तन जिस प्रभु वसे हौ सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया रस संत जना से।

सूदे सूदे रे चलो तुम नतर को तक्का दे गई है रे राव बारे बूढ़े तरने भैया सबू जम ले जई है रे मानस बपरा मूसा कीनो मीस बिलैया खई है रे तनमंता अर निल तन मन ही पापी कछु न कानी रे राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बनानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे आवे न जाए न

बिलावल विद्या ना परो बाद नहीं जानो हर गुण कथत सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक स्यानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत बौरा रहा आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत कोई मेरे परम पूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ताए कह जाने अब है न माता सो कबू न माता कह कबीर राम रंग राता। बिलावल गिरो तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजो विकार न छोड़े पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो पौजल निरपारी राख राख मेरे बीचला जन शरण तुम्हारी राव बिखे बिखे की बात ना तजी न जाई अनित जतन कर राखी है फिर लपटाई जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का ए जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का कहू कबीर मेरे माधवा तू सर्व्यापी तुम समसर नाई दयाल मोहि समसर पापी। बिलावल नित उठ कोरी गागर आने लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूजे हर हर रस लपयो हमारे कुल कौने राम के हो जबकि माला लई निकूते तब के सुख ना पयो राव सुनो जिठानी सुनो जिरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए यह मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुरु नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाशक नख बिदरयो करके देव पितर की छोड़ी गुरु को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संत लय उदरयो। बिलावल को हर समान नहीं राजा एक ऊपर शब्द विचार के चूठे कर दिवाजा रहाओ तेरो जन होए सोए सत डोले तीन पवन पर छा जा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूर मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसार परम क्यू को रूप है लाद निवाजा। बिलावल राख लो हम ते बिगरी शील कर्म जब भगत न कीनी हो अभिमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संखी ए काया ओ मिथ्याता की जगरी जिन्हें निवाज साज हम किए किसे विसार अवर लगरी संगत तोय साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर ए गिनती सुनियो मत पालो जम की खबरी। बिलावल दरमा दे ठांडे दरबार कुछ दिन सुर्ख करे को मेरी दर्शन दी जय खोल के वार रहाओ तुम तन तनी उदार त्यागी श्रवणन सुनिय सुगत तुम्हार मांगो काए रंग सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार जय जो नामा दुख सुदामा तिनको कृपा पई है अपार कह कबीर तुम समरस दाते चार पदार्थ देखना बार। बिलावल डंडा मुंदरा सिंसा आधारी क्रम कै पाए पवे तेज तारी आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हर पद बवरे राव जिन तू जाते सो त्रिगुण भोगी कह कबीर के सो जग जोगी। बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत ना उपजे जन को जन कहा करे बेचारे राव त्रिग तन त्रिग तन त्रिग ए माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फन्नी किस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचनी क्या खेती क्या लेवा दही परपंच झूठ घुमाना कह कबीर के अंत बिगूते आया काल निदाना। बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप परम ज्योत पुरखोत्मो जाके रेख न रूप रे मन हर पाजे परम सजो जग जीवन राम रहाओ आवत कछु न दी सही न दी सह जात जय उपजे दिन सह तही जैसे पुरवन पात लुखिया कर माया तजी सुख सहज विचार कह कभी सेवा करो मन मंज मुरार। बिलावल जन्म मरण का परम गया
गोविंद लिवलागी जीवत्सुन समान्या गुर सासी जागी रहाओ काशी के तुन उपजे तुन काशी जाई काशी फूटी पंडता तुन का समाई तृप्ति संग मैं पेखिया कठू कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी कट माए त्यागी आप आपते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना बिलावल चरण कमल जा कह हृदय बसे सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निज ताके सहज सहज जस बोले देव रहाओ तब ए मत जो सब मैं पेख है कुटल गांठ जब खोले देव बारंबार माया ते अटके ले नर जा मन को ले देव जे ओ जाए तई सुख पावे माया तास न चोले देव कह कबीर मेरा मन

सफल जन्म मौको गुर कीना। दुख विसार सुख अंतर।

बिलावल जिह कुल साध बैसनो होए वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहा ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन के आप तार तारे कुल दोए तन सो गाओ तन सो ठाओ तन पुनीत कुटम सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे दिस खोए पंडित सूर छत्रपत राजा तगत बराबर और न कोए जैसे पुरैन पात रहे जल समीप।

महला चौथा कर पहला। जी मन चित आस रखें हर ऊपर का मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए। हर जाने सब किस जो जीवर तै प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाई। हर किसकी आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाई। मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय। साले फल आस सब बिरथी जाय रहा जो दिसे माया मोह कुटुंब सब मत किसकी आस लग जन्म गवाई। इनके कुछ हाथ नहीं कहा करें ए बकुड़े इनका वाहया कछ ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटुंब सब चढ़ाई। जो कुछ आस

दिन में झूठ दिल सब जाए, मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब खाए पाए, आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई, कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाए, जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई, गोंड महला चौथा ऐसा हर से नित त्याई है, जो खुन में किलवित सब करे विनाशा, ये हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर नेफल सब काल गवासा, मेरे मन हर सेवियो सुखदाता स्वामी, जिस सेवे सब दुख लहासा, मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह

अपनी बिरसा बहुत बहुत कदाचा अपनी बिरसा कहूँ हर अपने स्वामी पे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरसा अवरा पह कही है अवरा पह कह मन लाज मरासा जो संसारे के कुटुंब मित्र पाई दी से मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा जित दिन उनका स्वाव हो ना आवे तित दिन नेड़े को ना चुकासा मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुझ उपकरे दुख सुखासा किसका परवासा क्यों की जय मन मेरे जो अंति अवसर रख ना सकासा हर जप मन के गुर उपदेश ले जा तो तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा जन नानक अन दिन नाम जपो हर संतो इहो छूटन का साचा परवासा गौंड महला चौथा हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सांत शीतल मन अपना जैसे सक

पूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना, मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना। जहाँ कहाँ तुझ राखे सब थाई, सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा में सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रत्ना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, तिनके चरण मलो हर दसना। शब्द पछाण राम रस पावो, ओ उत्तम संत पयो बद बडना। इस जन की वडियाई हर आप वधाई, ओ कटे ना किसे की कटाई इक तिल तिल तिलना। जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना। जन नानक को हर दान इक दीजे, नित बसे हृदय हरि मोहे चरना।

हरे अविनाशी सदा चिर निर्चल तुष मेरे मन पद परवान, मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान। जो हर महल पावे गुरु बचनी, तिस जेवड अवर नाही किसे दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिन सजाए ज्यो रंग कुसुम्भ कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान। जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, क्यों सत संगत मिल पतित परवान।

करिए सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लई है। मेरे मन हर जप हर नित पड़ी है हर दिन को मार जीवाल न साथ है ता मेरे मन कायत करी है रहाओ। हर पर पंच किया सब करते विच आपे अपनी जोत तरई है हर एक को बोले हर एक बुलाए गुरपूरे हर एक दिखाई है। हर अंतर नाले बाहर नाले कहो तिस पासों मन क्या चोरई है निकपट सेवा की जय हर तेरी ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैवस सब चीज सो सब दू वड्डा सो मेरे मन सदा त्यई है जन नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा त्याए तू तुद लय छड़ई है। गौन महला चौथा हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते ज्यो त्रिखावंत दिन नीर मेरे मन प्रेम लगो हर कीर हमरी बेदन हर तब जा।

मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुरु की मत पीर। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन सांस

देखत करता अदृष्टो करता दृष्टो करता ओपत करता परलो करता व्यापत करता अलिप्तो करता वक्तो करता बूझत करता आवत करता जात भी करता निर्गुण करता सरगुण करता गुर प्रसाद नानक समदृष्टा गौण महला पंजवा आंख्यो मीन कपक की आई तू उर्ज रहो कुसुम भाए ले पग तारे सास ले खेले तो उदरे हर गुण गाए ले मन समझ छोड़ अवाए ले अपने रहन को ठोर न पावे काए पर कह जाए ले रहाओ जो मैगल इंद्री रस प्रेरियो तू लाग पड़े कुटुम्बाए ले जो पंखी कत्र होए फिर बिछरे फिर संगत हर हर चाय ले जैसे मीन रसन साध बिन सो ओ मूठो मूड़ लोभाए ले तू हो आ पंचवास वैरी के छूटे पर शरण आए ले ओ कृपाल जीन दुख पंजन सब तुमरे जी जन पाए ले पावो दान सदा दर्श देखा मिल नानक दास दसाए ले रागौन महला पंजवा चौक दे कर दूजा।

बर्तन को सब कुछ भोजन पोगाए, सो प्रभ तज मूड़े कत जाए। पार ब्रह्म की लागो सेव, गुरते सुजय निरंजन देव। रहाओ जिनकी ये रंग अनेक प्रकार, ओ पत पर लो निमक मजा।

मिटय कोट अग मनुख जस दाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत कौन महला पंजवा नाम संग कीनु व्यवहार नामो ही इस मन का आधार नामो ही चित कीनी ओट नाम जपत मिटे पाप कोट रास दी हर एको नाम मन का इष्ट गुरु संग ध्यान राव नाम हमारे जी की रास नामो संगी जत कत जात नामो ही मन लागा मीठा जल थल सब में नामो गीता नामे दरगे।

कहो नानक सुख सहज निवास गौण महला पंजवा। निमाने को जो दे तो मान सगल पूछे को करता दान गर्भ कोर में राखन हार इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए कट अवकट जत कट है सहाय रहाओ रंक राओ जाके एक समान ईट हस्त सगल पुराण बियो पूछ ना मसलत करे जो किस करे सो आपे करे जा का अंत ना जान कोए आपे आप निरंजन सोए आप आकार आप निरंकार कट कट कट सब कट आधार नाम रंग पग पुपहे लाल जस करते संत सदा निहाल नाम रंग जन रहे अघाए नानक तिन जन लागे पाए गौण महला पंजवा। जाके संग इहो मन निर्मल जाके संग हर हर सिमरन जाके संग किल बिख हो है नास जाके संग हृदय प्रदास से संतन हर के मेरे नीत केवल नाम गाये जाके नीत रहा जाके मंत्र हर हर मन वसे जाके उपदेश परम पौनस है जाके कीरत निर्मल सार जाकी रेन बांछे संसार कोट पतित जाके संग उदार एक निरंकार जाके नाम आधार।

गुर के शब्द मंत्र मनमान, गुर के चरण हृदय ले तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कार, मत को परम पुले संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार रहा, पुले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगति लाया, जन्म मरण की ताप मिटाई, गुर पूरे की बेअंत वडाई, गुर प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास, जिनकी आसो गुर के जानिया, गुर कृपा ते मुग्द मन मानिया, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, जिन गुरु मुक्त ना पाये पाए, गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहूं दिन रात, जा की कोई न मेटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ, गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक देह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहा समाए, कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणी ताका मन लाग, गौंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोविंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अभियो, सर्व पूज चरण गुर सेओ, गुर बिना

अंधकार, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुर के संग सगल निस्तारा, गुर पूरा ताये वड पागी, गुर की सेवा दुख न लागी, गुर का शब्द न मिलते कोई। गुरु नानक नानक हर सो

रमत राम सब रहो समाए, संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूरन काम। रहाओ राम राम।

ताए राम राम राम सदा सहाय राम राम राम लीलाए राम राम जप निर्मल भय जन्म जन्म के किल बिछ गए रमत राम जन्म मरण निवारे उचरत राम तय पार उतारे सबते ऊच राम पर गास निस्बासुर जप नानक दास गौण महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संगते मार बिदारे गोविंद भगत का मैल न पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार राव जगत पाते लेते दान गोविंद भगत को करें सलाम लूट ले सात पत सोवे सात जना पग मलमल तोवे पंच पूत जने इकमाए उत्पुज खेल कर जगत वे आए तीन गुना के संग रच रसे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए चढ़ाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभ सार दिन पगति सब हो खुआर गौन महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अघाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपते जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे अग्न सागर से उतरे पारे जन्म मरण सब मिटि उपाद प्रभु लागी सह समाद सांख अंतर एको स्वामी।

प्रकाश भगत पाए हर कीर्तन करिए जप पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गौण महला पंजवा गुरु के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध इस संते मार होए रही है सगल की रीना कट कट रमैया सब में चीना इन विद रमो गोपाल गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ जी प्राण को यह सुहाओ पज अभिमान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर सो मन रंग जिन तू किया तिसको जान आ गए दर्जे पावे मान मंकन निर्मल हुए।

ओहो दयाल देहो प्रभ दान। नानक जप जीवै प्रभ नाम, गौन महला पंजवा, धूप दीप सेवा गोपाल, अनेक बार बंदन करतार, प्रभ की शरण गही सब त्याग, गुरसो प्रसन्न पय वडपाग, आठ पहर गाये गोविंद, तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद, रहाओ हर गुण।

साध संग जपिए हर नाम, सागर कर बोहित प्रभ चरण, अंतर जामी प्रभ कारण करण, राख लिए अपनी कृपा तार, पंच दूत पागे विकराल, जुए जन्म न कबहू हार, नानक का अंग किया करतार, गौण महला पंजवा, कर कृपा सुख आनंद करे, बालक राख लिए गुरुदेव, प्रभ कृपाल।

कटपट अंतर सर्व समाही अपने दास का हल्क पल तुम्हारे पतित पावन प्रभिर तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद पंक मंत पजिये भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बांचित पूरन फल पाए कर्म कारण समरत दयार सर्व निधान महाविचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गौण महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटे बलाए दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत करी।

कोई न सके जमकाल, जग में आया सो परवान, गुरमुख अपना खत्म पछाण, हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उन्माद, सदा हजूर जान भगवंत, पूरे गुर का पूरन मंत, हर तन काट किए पंडार, मिल सतगुर सबका सवार, हर के नाम रंग संग जागा, हर चरणी नानक मन लागा, गौन महला पंजवा, पाव सागर बोहित हर चरण, सिमरत नाम नाही फिर मरण, हर गुण रमत नाही जम पंत, मां विचार पंच दूते मंत, सौ शरण आई पूरन नाथ, जंत अपने को दी जय हाथ, रहाओ सिम

तारो संत का निंदक आकाश के तारो संत को राखो अपने जी नाल संत उधारो तक्षिण ताल सोई संत जे पावे।

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सुमृत पाप बिलायण। रहाओ ना

गायन बस अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही गौन मैला पंजवा। जा को राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है काम क्रोध लोभ मोह न पो है। साध संग जपे निरंकार निंदक के मुहि लागे चार। राम कवच दास का सना हो दूत दुष्ट तिसको वत ना है। जो जो गर्व करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो सर

संतन के मन महा आनंद, संत जपे गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल खान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाए, पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए, सगल पै मिटे जा की शरण, निंदक मार पाए सब तरन, जन की निंदा करे न कोए, जो करे सो दुखिया होए, आठ पैर जन एक से आए, जमुआ ता के निकट न जाए, जन निर्वैर निंदक अहंकारी, जन पल माने निंदक बेकारी, गुर कै सुख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ खर पर जाए, नितरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कहो नानक तिस गुरु बलिहारी, जां कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले कित सुनिए कही है, मिले असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है रहाओ, संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चखमारी, बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा, कहो कबीर छूछा कट बोले, करया होए सो कबहु न डोले। गौंड नरु मरे नर कामना आवे, पशु मरे दस

जले जैसे काश का पूला, कहो कबीर तब ही नर जागे। जम का दंड मूंड में लागे गौंड, आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिस गगन रहा एले, आनंद मूल सदा पुरुषोत्तम, कट बिन से गगन न जाएले। मोह बैराग पयो एहो जियो, आए कहां गयो रहाओ, पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो, कर्म किन जियो दीन रे, हर में तन

सतगुर प्रसाद। पूजा बांध पिला कर डारियो, हस्ती क्रोध मूल में मारियो, हस्त पाग के चीसा मारे, क्या मूरत के हो गलिहारे, आए मेरे ठाकुर तुम राज।

अंत ना को उपाय रहाओ, ना एहो गिरही ना उदासी, ना एहो राज ना तीख मंगासी, ना स्पिंड ना रक्तूरासी, ना एहो ब्रह्म ना एहो खाती, ना एहो तपा कहावे शेख, ना एहो जीवे ना मरता देख, इस मरते को जे कौ रोवे, जो रोवे सोई पत होवे, गुर प्रसाद में डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया, कहो कबीर हो राम की अंश, जस कागद पर मिटे न मंस, गौंड सूते तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलकावे कान, कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सिर चढ़ गोकाल, एहो मुंडिया सगलो डब खोई, आवत जात नाक सर होई रहाओ, सुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वहां का मन राता, लड़की लड़कन खैबो ना है, मुंडिया अंदिन ताते जाहे, एक दोए मंदर एक दोए बात, हमको साथर उनको खात, मूड पलोस कमर बद पोची, हमको चाबन उनको रोटी, मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बूढ़क की टेक, सुन अंधली लोई बेपीर, इन मुंडियन पद शरण कबीर, गौंड खस्म मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरो होवे, रखवारे का होए विनाश।

सार शंख को बिख बिछे संसार कर सीगार बह पकियारी संत की ठिठकी फिरे बिचारी संत पाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारो डरे साकत की ओ पिंड परायण हमको दिष्ट परे तक डायण हम तिसका बोझ

जो लग प्राण तऊ लग संगे नाए ता चली बेग उठ नंगे सुहागन पवन त्रे लिया दस अठ पुराण तीर्थ रख किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े पूपत राजे है छेदे सुहागन उरवार ना पार पांच नारद के संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टिकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रहे मैं चेते रहाओ जैसे हल हर बिना जिनी नहीं बोये सूत बिना कैसे मणि परोये कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाये साधु बिन कैसे अवगत जाये जैसे मात पिता बिन बाल न होई बिंब बिना कैसे कपड़े तोई कोर बिना कैसे असवार।

कह कबीर कह कर करना, गुरुमुख होए बहुर नहीं मरना। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार राव। नाचन सोए जो मन स्यो नाचे, झूठ न पतिये परचे साचे।

बजारी सो जो बजारे सो दे, पांच पलीते को प्रभो दे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने, तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन, तन गुरुदेव अतरूप विचखन। गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूखे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी, आद पुरख ते होए अनाद जप

जग में बकते दूधा तारी, गुप्ती खावे वटका सारी, अन्य बिना न होए सुकाल, तजे अन्न ना मिले गोपाल, कहो कबीर हम ऐसे जान्या, तन अनाद ठाकुर मन मान्या, राग गौंड बाणी नाम देव जी की, कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। असुमेद जगने तुला पुरख दाने, प्राग इसनाने तो न पुजे हर कीर्तनामा, अपने रामे पाजरे मन आलसिया, रहाओ गया पिंड परता, बनारस अस बसता, मुख बेद चतुर परता, सगल कर्म अछता, गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता, खट कर्म सहत रहता, सिवा सकत संबादं, मन छोड़ छोड़ सगल पेदं, सिमर सिमर गोविंदं, पदनामा तरस पव सिद्धं, गौंड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए, प्राण सजे वहां को ध्यान न जाए, ऐसे रामा ऐसे हेरो, राम छोड़ चित अनत न फेरो, रहाओ जो मीना हेरे पसुआरा, सोना गढ़ते हिरे सुनारा, जो बिखई

तेरे नाम अविलंब बहुत जन उदरे, नामे की निजमत एहे।

मुक्त की बरिया कहाँ छुपानी। गुरमत राम नाम गहु मीता, तन में नामा यूं कह गीता। बिलावल गोंडे आज नामे बीथल देखिया, मूर्ख को समझाओ रे राव। पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी। पांडे तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था। मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था। पांडे तुमरा

मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए अवतार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राणं, जप मुकंद मस्तक।

कौ रविदास अब तृष्णा चूकी। जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड, जे ओ अषट तीरथ नावे, जे ओ द्वादश सिरा पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सर बेथा जावे, साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ। जे ओ ग्रहण करे कुल खेत, अर्पे नार सिगार समेत, सगली सिमरत श्रवनी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने। जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजोनी हांडे। निंदा का करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा, निंदक सो दुसा

जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कौन गते हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ कबहू जियरा ऊब चरक है कबहू जाय प्याले लोभी जियरा फिर ना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजे माई एक चले हम देखे स्वामी पाए बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक जो

कहे नरहरि जीवन तलब निवार स्वामी अंधकूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ जा पीतर कब पीतर बसिया बार काहे नाही तिनकी सार कहे नित साहिब सदा चिंत मन माही आपे नेड़े आपे दूर आपे सर्व रहा पर पूरे सतगुरु मिले अंधेरा जाए जय देखा तैरिया समाए अंतर सहसा बार माया नैन लागस बाणी प्रणवत नानक दासन दासा परता पेंगा प्राणी राम कली महला पहला जित दर वसे कौन दर कही है।

बात करे, जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले, इन विद सागर तरी है जीवतियां यूं मरी है, रहाओ दूजा राम करी महला पहला। सुरत शब्द साखी नृसिंगी बाजे लोक सुने, पचोली मंगल कहताई पीखिया नाम पड़े, बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठा ली, करते बार न लागे रहाओ, पानी प्राण पवन बंद राखे, चंद सूरज मुख दिए।

आखा तामन सेव करे कागज लून रहे कृत संगे पानी कमल रहे ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे राम करी मैला पहला सुन मा छिंद्रा नानक बोले वसगत पंच करे न डोले ऐसी जुगत जोग को पाले आप तरह सगले कुल पारे सो अवधूत ऐसी मत पावे ओनस सुन समाज समावे रहाओ पिछया पाए भगत पै चले होवे सो तृप्त संतोष अमूल्य।

सत जन जाओ पांडव पाओ पवे तुत आए तुरते छोड़ी कीमत पाए जिन किस किया सो किस करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक पिकार कहे मंगत जन मांगत मान न पाया सैकिया गल्ला दर

कौन बुझे विद जाने उत्पुज चलत आप कर चीने आप तत् पछाने ऐसा ज्ञान विचारे कोई किसते मुक्त परमगत होई रहा दिन में रैन रैन में दिन उसन सीत बिद सोई ताकि गत मित और न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख में नार नार में पुरखा बुझो ब्रह्म ज्ञानी तुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन में ज्योत ज्योत में मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिन के सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जहाँ हर प्रव कृपा तारी ताहो में विच्यों मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी विचारी सो हर जन हर प्रव पावे इन भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद कोरा मन मान्या हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाग देद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तें तीर्थ वर्त तप सारे गुर मिलिया हर निस्तारे जह आप गया पौ पागा गुर चरणी सेवक लागा गुर सत गुर परम चुकाया कहो नानक शब्द मिलाया राम कली महला पहला छादन पोजन मांगत पागे खुदया दुष्ट जले दुख आगे गुरमत नहीं लीनी गुरमत पत कोई गुरमत परत पावे जन कोई योगी जुगत सहज करवासे एक दृष्ट एको कर देखिया पीछिया पाए शब्द तृप्ता से रहाओ पंच बैल गडिया देह तारी राम कला निभे पत सारी तार टूटी गाडो सिर पार लकड़ी दिखर जरी मंज पार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग देओगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर कंध जपे निरंकारी सहज जगोता बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन में मुंदरा हर गुर शरणा नानक राम भगत जन करना।

मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखिया तुर करते, हम कैसी कीर्त कमाई, मन तन साफ किया।

छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो न कोई, सतगुरु मिलो नवे निड पावो, इन विद तत् बिलोई, परम चुकावो गुरमुख लिवलावो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर, किसो करो बुराई, सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता, सहज मिले स्वामी, तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया, जन नानक सद कुर्बानी, राम कली महला पंजवा, आवत हरख ना जावत दुखा, ने व्यापे मन रोगनी, सदा आनंद गुरपूरा पाया, तो उतरी सगल बेगनी, ए विद है मन जोगनी, मोह सोग रोग लोग ना व्यापे, ते हर हर हर रस पोगनी, रहाओ सुर्ग पवित्रा, व्यर्थ पवित्रा, पयाल पवित्र अलोगनी, आज्ञाकारी सदा सुख पुंचे, जत कत देखो हर गुनी, मैं शिव शक्ति जल नहीं पवना, तह अकार नहीं मेदनी, सतगुर जोग का ता निवासा, जय अवगत नाथ अगम तनी, तन मन हर का, तन सब हर का, हर के गुण हों त्यागनी, कहो नानक हम तुम गुर खोई है, अम्बे अम्ब मिलोगनी, राम कली महला पंजवा, त्रै गुण रहत रह निरारी, साधक सिद्ध ना जाने, रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण, सतगुर के खजाने, अचरज किस तैन न जाई, बस

सर मेरा अनतराज भोग रस मानी नाव जपी परवासा तेरा रहाओ चीतना आवस दूजी बाता सिर ऊपर रखवारा दे परवाओ रहत है स्वामी एक नाम के आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई पूर्ण काई बाता तत् सार परम पद पाया छोड़ न कतू जाता बरन न साको जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथा अडोल स्वामी नानक खसमा हमारा।

पूरन हम भी संग अधाए मिल गया नानक कहन न जाए। राम कली मैला पंजवा कर कर पाल पखावज नैनो माफे वजैर बाबा करनो मद बासुरी बाजे जेवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृत कारी देखे देखनहार दयाला।

रोवन हार दे ऊट सुदाए, परम मोह के बांधे बंद, सुपन पया पखलाए अंद, ते तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुकम

पाए खिंचया सूत आई खाए चो में एक मत है किया तें बिखरे थान अनक खिड़कियां खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया क्यों किंकुरी अनूप वाजे।

बैसा कर डंडा करया, क्या तू जोगी गर्दह परया, जप नाथ दिन रहनाई, तेरी चिंता दो दिहाई, रहाओ जहरी विपूत लाए बैठा तारी, मेरी तेरी मुंद्रा तारी, मांगे तू का तृप्त ना पावे, नाथ छोड़ जाते लाज ना आवे, चल चित जोगी आसन तेरा, सिंगी बाजे नित उदासेरा, गुर गोरख की तै बूझ ना पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे चिंता नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, क्यों जपिया नाथ दिन रहनाई, हुन पाया गुर गोसाई, राव दूजा राम कली मेला पंजवा, करन करावन सोई, आन न दिसे कोई, ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, पौसोरे हर रस मीठा, गुरमुख किने विरले गीठा राव, निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर पहने काम, तन मन शीतल अग्न निवारी, अनद रूप प्रगटे संसारी, क्या देवो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जाऊं लख बेरा।

कहो नानक सब पर्दा टूटा, हाँ तेरा तू मैं मन बूठा, राम करी महला पंजवा।

आज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूर सतगुर रहाओ महिमा जाकी जहर गंभीर होए निहाल दे जिस तीर जाके बंधन काटे राए सोनर बौर ना जोनी पाए जाके अंतर प्रगटो आप ताको ना ही दुख संताप लाल रतन किस पाले परया सगल कुटुंब ओ जन ले करया ना कुछ परम ना दुबदा दूजा एको एक निरंजन पूजा जत कत देखो आप दया।

पीत सो पंडित गुरु शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी सरणी पाए राम कली महला कन्या कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकि चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पही कर पार जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओआ के संजाम रहाओ करता राखे कीता कौन तीरी जी तो सगला पवन बेअंत मह माता की केतक वरण।

चाम संत जने परदास पया पूरे गुरबत मिली रहाओ तन तन कलक मिथिला विस्तार हैवर गैवर चालन हार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दिल दिर्धानी सात इन्हीं करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माहे इहो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद।

दे अनहद बाजे अचरज विस्मा दे केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावे ते रोग सोग।

आधार नीचल आसन बेसुमार दुगना डोले कतहु जावे गुर प्रसाद को इहु मेल पावे परम पे मोह न माया जाले सुन समाद प्रभु कृपाले ताका अंत न पारावारे आपे गुप्त।

संत हमारा राख्या पर्दा, संत प्रसाद मोहे कबू न करदा, संते संग दिया कृपाल, संत सहाय पै दयाल, सुरत मत बुद्ध परदास, गैर गंभीर अप

तेरे काज ना गृह राजमाल, तेरे काज ना भुखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले, राम नाम गुण दायले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ ना कहे, रहाओ दिन हर सगल निरा

कर कर ठाके वडे वडेरे किन्हीं ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आशा पूरन होए हर पगतन को

बिन हर नाम न टूटस पटल, सो दे शास्त्र सिमरत सगल, सो नाम जपे जिस आप जपाए, सगल फला से सूख समाए।

पंजवा जो किछ करे सोई सुख जाना मन असमझ साध संग पतियाना डोलन के क्यूका ठहराया सत माहे ले सत समाया दुख गया सब रोग गया प्रभु की आज्ञा मन में मानी महापुरुष का संग भया रहा सगल पवित्र सर्व

नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रसे गुरुमुख नाम निमख हृदय वसे हर के नाम की वडियाई कीमत कहन ना जाई रहाओ सूरबीर तीरज मत पूरा

पंजवा संत के संग राम रंग खेल आगे जम स्यों होए न मेल अहं बुद्ध का पया विनाश दुर्मत होई सगली नाश राम नाम गुण।

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुरपुरा पेटत उधार राव।

अभिमान दिन रहन सदा गुण गाओ पूरन एही स्वाओ आनंद कर संत हर जप छाड़ सियानप बहु चतुराई गुरु का जप मंत्र निर्मल रहाओ एक की

नानक करम प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दुलभ देह सवारे जाहे न दरगे हारे हालत पलत तुद होए वड़ाई अंत की बेला ले चढ़ाई राम के गुण गाओ हालत पलत हो है दो वै सुहेले अचरज।

गुर का उपदेश सुनी जय, नानक सुख सहज समी जय।

बूढ़त लो साध संग तरे, नानक जिसे प्राप्त करे। राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरे इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूरन होई आस, सफल सेवा गुरुदेवा, कीमत किछ कह न जाई, साच सच अलख अवे।

एक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर के ते गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा हो वह पूरा। हर हर हर

पाप पुण्य हमरे वस नाहे, रसक नानक गुण गाहे। राम कली मैला पंजवा, ना तन तेरा ना मन तोहे, माया

साध संग दुख जाए रहाओ। जा कै राम बसे मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तरे।

के बैसंतर पा गए, माटी को जल बैदिश त्याग, ऊपर चरण तले आकाश, खट में सिंध कियो परगास, ऐसा सम्राट।

छिन छिन औध कटे निष्बासुर बिरथा जात है देहे राव। तरना को बिखियन सो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझे कौन कुमत उर्जान।

राम भगत जम का पौ पागे, जम जंदार न लागे मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार पै निरंकारी, गुरमत जागे दुर्मत परहारी, हम दिन जाग रहे लिवलारी, जीवन मुक्त गत अंतर पाई, अलिप्त गुफा में रहे निरारे, तस्कर पंच शब्द संगारे, पार कर जाए न

जय, वर्त तपन कर मन नहीं पीजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग पीजे, जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर का।

तीरथ परम सुजाद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जमपुर बादो लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, शिव साधक के ते मुन देवा, हाथ निज रहे न तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल अभिमान।

जिन गुरु शब्द नहीं कर बार, नानक गुरुमुख तक विचार, राम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावे बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस भोग किए तीता दुख लागे, नाम विसार पव जल पया, तन तन देखत गर्व गया, कनिक कामनी सो

हृदय नाम ना सर्वदया, बिन गुरु शब्द ना गत पग पावे, राम नाम बिन नरक गया, तिन में वेश करे नटुआ ज्यो, मोह पाप में गलत गया, इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया, करे विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया, हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान भया, जिसका यो तन तन सो फिर लेवे, अंतर कैसा दुख पया, अंत काल किछ साथ न चाले, जो दिसे सब तिसे मया, आज पुरख अपरम परसो प्रभ, हर नाम हृदय ले पार पया, मुए को रोवे किसे सुनावे, पैसा गर असराल पया, देख कुटुंब माया गृह मंदिर।

जिन एह चाख्या राम रसायन तिन की संगत खोज पाया रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पाया दुख सुख गुरमुख सम कर जाना हरख सोग ते बिरकत भया आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहज समाए लया राम कली दखनी मैला पैला जप सत संयम साच दृढ़ाया साच शब्द रस लीना मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना एनस रह एक लिव लागी साचे देख पति ना राव रह गगनपुर दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन परपुर लीना जेवा रंग रसीना मिले गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक में सर्व सर्व में एका ये सतगुरु देख दिखाई जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन न जाई दीपक से दीपक प्रगासिया त्रिभुवन ज्योत दिखाई।

सतगुरु सच सिखाए राम कली मैला पहला औहठ हस्त मलि कर छाया करण गगन कल तारी गुरुमुख केती शब्द उधारी संतो रहाओ ममता मार हो मैं सुख है त्रिभुवन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मने में राख है सतगुरु शब्द विचारी छिन्नी सुरत अनाद बाजे कटकट ज्योत तुम्हारी पर पंच बेन कहीं मन राख्या ब्रह्म अगन पर जारी पंच तत् मिल एनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राम सच लोके एहो तन किंगुरी वाजे शब्द निरारी शिव नगरी में आसन औदु अलख अगम अपारी काया नगरी एहो मन राजा पंच वसे विचारी शब्द रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन मारी।

शोध करे पावसागर आत्म तत् विचारी गुरु सेवा के सना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता हो मैं कृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते तेहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चिन्ह हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द

हर चेती चितनाए सतगुरु नाल तेरी पावनी लागे ता ए सो जी पाए एहो जोग न होवे जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करे गृह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहे एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवे सोई बूझे जोग जुगत सो पाए जोगे का मार्ग दिखम है जोगी।

भगत खजाना गुरुमुख जाता, सतगुरु बूझ बुझाई, संतो गुरुमुख देव डियाई रहाओ। सच रहो सदा सहज सुख उपजे, काम क्रोध विचों जाई, आप छोड़ नाम लिख लागी, ममता शब्द जलाई, जिसते उपजे तिसते दिन से, अंते नाम सिखाई। सदा हजूर दूर नह देखो, रचना जिन रचाई, सच्चा शब्द रवे कट अंतर, सच्चे सो लिव लाई। सत्संगत में नाम निर्मोलक, वड़े पाग पाया जाई। परम न पूलो सतगुर सेवो, मन राखो इकठाई। बिन नामे सब पूली फिर दी, देखा जन्म गवाई। जोगी जुगत गवाई हंडे, पाखंड जोग न पाई।

दे नाम नमन निध पाए मनसा मार मन सह समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी चित अदुष्ट लगा।

बूझ बुझाए नानक एक कहे बेनंती नावो गत पत पाए राम कली मैला तीजा हर की पूजा दुर्लभ है संतो कहना कछु न जाए संतो गुरुमुख पूरा पाए नामो पूज कराए रहाओ हर दिन सब कुछ मैला संतो क्या हो पूज कराए हर साचे पावे सा पूजा होवे पाना मन वसाए पूजा करे सब लोक संतो मन मुख थाए न पाए शब्द मरे मन निर्मल।

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाए आपे निर्मल पूज कर आए गुरु शब्द खाए पाए पूजा करें पर दुज नहीं जाने दूजे पाए मन लाए गुरुमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाए पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सकाई अपना आप ना पछाणे संतो कूड़ करें वड्याई पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप

निखंजन मेरा प्रभु अंत सखाए सब कुछ आपे आप वरते नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुछ

एक पेट करें फिरें अभिमानी, तिन जुए बाजी हारी। एक अंदिन भगत करें दिन राती, राम नाम उर्धारी। अंदिन राते सहजे माते, सहजे हो मैं मारी। सह दिन भगत ना हुई कभी।

कृपा तुम्हारी, सतगुरु ना सेवे माया लागे, डूब मुए अहंकारी, जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय, जाय मिलिए राम मुरारी, अंगिन जागत रहे दिन राती,

जिस हृदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, वाणी सब सुनाई, नानक सुन वेख रहा विस्माद, मेरा प्रभ रहा सर्व थाई।

किन्हि मून अवतूत सदाया, कोई कह तो अनन पगौते, मोहे दीन हर हर ओट लेते। किन्हि कया हो तीर्थवासी, कोई अन पज पया उदासी, किन्हि पवन सब करती करया, मोहे दीन हर हर दर परया। किन्हि कया मैं कुल्हे

मोहे दीन हर हर हर सेवा। कोई चतुर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत सो मंडित। कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी। सगले कर्म कर्म जुग तो दे, दिन नाम यो मन ना प्रबोधे। कहो नानक जो साध संग पाया, बूजी कृष्णा महा शीतलाया। राम कली महल।

इस सेवत मन आलस करे, जिस विसरे इस निमख ना सरे, हम अपराधी निर्गुनिया रे, ना किस सेवा ना कर मारे, गुरबोहित वड पागी मिलिया। नानक दास संग

जहाँ का नाम सिमरत पहुँच जाए, कैसे संत जना राखे हर राय, ऐसे राखन हार दयाल, जब तक देखो तुम प्रतपाल रहाओ, जल पीवत ज्यों सुखा मितंत, तन बिज सैग्रे आवत संत, लोभी का तन प्राण आधार, क्यों हर जन हर हर नाम प्यार, किसानी जो राखे रखवाला, मात पिता दया जो बाला, प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, क्यों हर जन राखे

जो पावक संग सीत को नाश, ऐसे प्राचक संत संग विनाश। जो साबन कापर उजल होत, नाम जपत सब परम पौखोत। जो चकवी सूरज की आस, जो चात्रिक बूंद की प्यास। जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने। तुमरी कृपा से लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत। दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार। सब थान देखे नैन अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए। क्रम तै टूटे गुरु प्रसाद, नानक ते सो सब समाद। राम कली मैला पंजवा, जी जंत सब के।

की तृप्ताई संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई पूरे गुरपुरी मत दिनी हर बिन आ

गुर साचे लाए तराई अपने जीते आप संभाले आप लिए लड़ लाई सात कर्म का बेड़ा बांधिया पवजल पार पवाई बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूरत अजूनी संभो कल अंधकार दी पाई अंतर जामी जीवन का दाता देखत तृप्त अघाई

निराला हर सिमरत तृप्त अघाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कट आवे कट जाई संतो आप जुगादी है भी होसी सब दुनिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाये पूर रहा सब खाई संतो मीत साजन माल जो बन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली मेला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी उमन केर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बार सूखा हर जप मलन पै

तुम समरथ अकथ अगोचर रविया एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत ना पारावारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी। राम कली महला तीजा आनंद इको अंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु ता पाया सहज सोती मन वदियां वादाइयां राग रतन परवार परियां सबद गावणियां आईयां।

नाम निराधारो वाजे पंच सवत कर सवागे शब्द वाजे कला दूत कर तारिया पंच दूत तुद वस्ती ते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुझ जिन कौ से नाम हर कह लागे कह नाम कैस को हुआ तुद कर अनहद वाजे साची लिवे दिन देन मानी लिवे बाजो क्या करे विचारिया तुद बाज समर्थ कोई नाही कृपा कर बनवारिया एस नो होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवे बाजो क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा तिल कटे जान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका सब सत्य सवारिया कह नानक यू आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जिसनों होर क्या करे विचारिया एक परम पूले फिरें दे जिस एक नाम ला

कर्म कमाए सहसे जियो मलिन है कुछ संगम तोता जाए मन तो वो शब्द लागो हर सो रहो चित लाए कह नानक गुरु प्रसादी सहज उपजे तू सहसा उजाए जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमैले कुन्नी जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर जो बेतालिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी पूर्ति सोए पहुँचे नाही मनसा सच कमाणी जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले सेवन जा रे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु से सन्मुख हो गए ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मे समाले आप छद सदा रह परने गुर बिन और न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जो को गुर के बेमुख होवे।

सब रतन है, हीरा जित जड़ाओ। सुर सकत आप उपाय कह करता, आपे हुकम वर्ताए आप वेखे गुरमुख किसे बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक कस्यों लिवलाए। कहे नानक आप करता आपसे हुकुम बुझाए, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी, तत्तै सार न जानी गुरु बाजो तत्तै सार न जानी। तेरी गुणी संसार कम सुत्ता सुत्या रहन विहानी, गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए जिसनो अंगिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है ए वरदाता जे अगन में आहार पहुंचावे।

सदा समानिए, कहे नानक केवट दाता सो क्यों मनो विसारिए। जैसी अग्न उदर में तैसी बार माया, माया अग्न सब को जे ही करते खेल छाया। जात पाणा ताजमिया परवार पल्ला पाया, लिव सुरती लगी कृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया, कहे नानक गुरु प्रसादी जिना लिव लागी तिन विच माया पाया। हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए, मूल न पाया जाए किसे वित्तों रहे लोक विललाए। ऐसा सतगुरु जे मिले किसनों सिर सौंपिए विच्चों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए, हर आप अमूलक है पाग सुना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मनवन जारा, हर रास मेरी मनवन जारा सतगुर के रास जाने। हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना। कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा, ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बोर न पुछना लागे आए। एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए, कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी तातू जग में आया, हर जोत रखी तुझ विच तातू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चल।

हर मंगल गांव सती गृह मंदिर बनया, हर गांव मंगल नित सतिये सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर सब ज्ञानी।

क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुझ शरीरा, जा तू जग में आया, जे हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुरु प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चितलाया, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम में जो तरी, हर दिन अवर न देखो कोई, हर दिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने आ लिया, यो विश्व संसार तुम देख दे, यो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा देखा, हर इक है, हर दिन अवर न कोई, कहे नानक के नेत्र अंध से, सतगुरु मिले दिव्य दृष्ट होई, ए श्रवणो मेरे ओ साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी, जित सुनी मन तन हरिया होआ, रसना रस समानी, सच अलख विडानी ताकि गत कहीं न जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वो साचे सुनने नो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रखते वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए पावनी, इतना दसवां द्वार दिखाया, कहे अनेक रूप नाव नवनि किसका अंत न जाई पाया, कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रखते वाजा पवन बजाया, एहो साचा सोहेला साचे कर गावो, गावो ता सोहेला कर साचे, जिथे सदा सच प्यावे, सचो प्यावे जात पावे, गुरमुख जिना बुझावे, वो सच सबना का खसम है, जिस बक्से सो जन पावे।

हमारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाना गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कहे साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरे हर पाना आओ मैं पास जियो हर पाना गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाना

गुरु जाए हर प्रभु पास जियो। सतगुरु पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया। मित पैजे मित बिगसे जिस मित की पैज पावे, तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पहनावे। सतगुरु परतख होंदे बहराज आप टिकाया, सब सिख बंदक पुत पाई रामदास पैरी पाया। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। केशो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो।

फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो।

कट कट अंतर सोनिया एक दासी तारी सबल प्रसारी जी जंत लै मोनिया जिसनो राखे सो सच पाखे गुर का शब्द भी

अनहद बाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे बधाई सो प्रवत्याय सब किच पाये मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूरन आसा गुरुमुख मिल निर्गुनी।

राम रामा राम रमा कंठ उर्धारिय उर्धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसें दुख पव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिय बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरेण चितारिय चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक पंडार नाम अनंत तारा नाम नरहर निधान जिनके रस भोग।

सतगुरु तुम सेव सखी मन चिंदियड़ा फल पावो। राम कली मैला पंजवा रुत्ती श्लोक इको अंकार सतगुरु प्रसाद कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म बाछो साधे तूर आप निवार हर हर पजो नानक प्रभ भरपूर किलविख काटन पै हरण सुख सागर हर राय दीन दयाल दुख पंजनो नानक नीत त्याय छंत

जियो बिनवंत नानक सिमर जीवान जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सात उदपावसी नानक नाम आधार संत शरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया नानक जप भगवंत चंत। रुत सरस बसंत महाचेत वैसाख सुख मास जियो हर जियो नाओ मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाओ ने चल अनद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वड भाग पाया।

सर्व ठाई हर नाम नव निध गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे त्रै रंग जागे न छिद्र लागे किरपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नान।

मारे। बिन मिलबे सांत ना उपजै, तिल पल रहन न जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। छंत रुत सर्द अडंबरो, असूकत के हर प्यास जियो, खोजंती

आए हरकंत जियो, ग्रहलाल आए मनति आए सेज सुंदर सोहिया, वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया, मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो, बिनवंत नानक नित करो रलिया, हर मिले श्री तरकंत जियो। श्लोक संत

या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त्र प्राप्त।

गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

आप अगोचर तंदे लोई, जोग जुगत जग जीवन सोई, कर आचार सच सुख होई, नाम विहूणा मुक्त किव होई, विण नाम है विरोध शरीर।

ज्ञान प्राप्त होए गुणदाता विरला संसार साची करनी गुर विचार अगम अगोचर।

है सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ, जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करते करनी कर पाई, जिनकी ती तिन कीमत पाई, और क्या कही है किछ कहन न जाई, खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया, खरा खरा आखे सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए, खात पियंत मुए नहीं जानिया, खिन मैं मुए जा शब्द पछानिया, अस्थिर चीत मरण मन मानिया, गुर कृपा ते नाम पछानिया।

विलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत्सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात असंख अंत

वार वर एक समाल, गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दै दिस टूंड करे मैं पाया, मेल पया सतगुरु मिलाया, गुरमुख गावे गुरमुख बोले, गुरमुख तोल तुलावे तोले, गुरमुख आवे जाए निसंग, पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार।

मुक्त पया पक्षों कर जाए। छी जय दे खुले एक गंड, छिया नित देखो जगहंड। तूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूची जगत पुलाना।

तिन जाइए, हर गुण गाए सदा रंग राते, बौड़ न पछोताइए। पब्बे पाले गुरमुख बूजे ता निज कर वासा पाइए, पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा आस निराशा तरिए, गुर

आए वन तेन तू डत फिर रही मन मैं करो विचार लाल रतन बहुमान की सतगुर हास भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए ना।

पुरब लिखे की पाए संपै कारण चातर चोर संपै साथ ना चाले होर बिन साचे नहीं दरगे मान हर रस पीवे छुटे निदान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हों हों करती मैं मुई शब्द रवे मन ज्ञान हार डोर कंकन कने करथा की सीगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाये।

मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटे बिख खाए मूरख शब्द ना चीने सूझ बूझ नहकाए पांदा गुरमुख आखिए चाटड़िया मत दे।

सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो मस्तक

क्या पवि है सच सूचा होए, साथ सबद बिन मुकुत न कोए रहाओ। कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुहाओ, साच कहूं अरदास हमारी, हूं संत जना बल जा।

कट कट बैस निरंतर रही है। चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए नानक सदार जाए। आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूजे आप पछाने सच्चे सच समाए। दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाए पारो चरपट बोले औदू नानक देहो सच्चा विचारो।

क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा, एहो तत विचार है सो गुरु हमारा। दुर्मत बांदा सरपन खादा, मनमुख खोया।

कार। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते एहु मन लाया, मनसा आसा शब्द जलाई, गुरुमुख ज्योत निरंतर।

अवगत समाय तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सो खोज लह हुकम बिस्माद हुकम पछाने जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कही है सोई अवगत तो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचे परम पद पाये साचे शब्द समाए लिया एक एको सच एका जाने हो मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाने अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे तसा

गुरमुख बाणी अगर कड़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साज समावे, गुरमुख परचे वेद विचारी, गुरमुख परचे तरिय तारी, गुरमुख परचे सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचे अंतर विद जानी, गुरमुख पाये अलख अपार, नानक गुरमुख मुकत द्वार, गुरमुख अकथ कथे विचार, गुरमुख निभे सब परवार, गुरमुख जपिए अंतर प्यार, गुरमुख पाये शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक हो मैं जाल समाई, गुरमुख तरती साजे साजी, तिसमें ओपत खपत सोबाजी, गुर के शब्द रपे रंग लाए, साच रतो पत स्यो कर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावे, नानक बिन नावे क्यों साच समावे, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख पाव जल तरिये सच शुद्धि, गुरमुख सर अपसर विद जाने, गुरमुख परवित नरवित पछाणे, गुरमुख तारे पार उतारे, नानक गुरमुख शब्द

जोग जुगत सच रहे समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड पागी जिनी सच रखिया उधार, गुरमुख रतन लह लिवलाए गुरमुख परखे रतन सुभाए, गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मन पति आए, गुरमुख अलख लखाए तिस पावे नानक गुरमुख चोट न खावे। गुरमुख नाम दान इसनान गुरमुख लागे सहज ध्यान, गुरमुख पावे दरगे मान गुरमुख पाव पंजन प्रदान, गुरमुख करनी कार कराए नानक गुरमुख मेल मिलाए। गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद गुरमुख पावे कट कट भेद, गुरमुख वैर विरोध गवावे गुरमुख सगली गणत मिटावे। गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता, बिन गुर पर मैं आवे जाए बिन गुर काल न पवी थाए, बिन गुर मनुआ अत डोलाए बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए, बिन गुर बिसियर डसे मरवाट नानक गुर बिन काटे काट। जिस गुर मिले तिस पार उतारे अवगुण मेटे गुण निस्तारे, मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार गुरमुख कदे ना आवे हार। तन हटड़ी एव मन मन जारा नानक सहजे सचवा पारा, गुरमुख बांध्यो सेत

गुरमुख कोट तेती सुधारे, गुरमुख चूके आवन जान, गुरमुख दरगे पावे मान, गुरमुख खोटे खरे पछाण, गुरमुख लागे सहचान, गुरमुख दरगे सिफत समाए, नानक गुरमुख बंद ना पाए, गुरमुख नाम निरंजन पाए, गुरमुख होमे शब्द जलाए, गुरमुख साचे के गुण गाए, गुरमुख साचे रहे समाए, गुरमुख सात नाम पत उत्तम होए, नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले, एक कथा का दे विचार, पव जल शब्द लंगावन हार, पवन आरंभ सतगुरु मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुरु गोपाला, एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख हो मैं अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाये सार, जित गर्भ जाए सो कवन आहार, हृदय का कार मंदर अग्न पिराहन, कवन गुफा जित रहे आवाहन, इत उत किसको जान समावे, कवन त्यान मन मन है समावे, हौ हौ मैं विचों खोवे, दूजा मेटे एको होवे, जग करड़ा मन मुख गावार, शब्द कमाये खाये सार, अंतर बाहर एको जाने, नानक अगन मरे सतगुर के पाने, सच पैराता गर्भ निवारे, एको जाता शब्द विचारे, शब्द वसे सच अंतर हिया, तन मन शीतल रंग रंगिया, काम क्रोध बिख अगन निवारे, नानक नदरी नदर प्यारे, कवन मुख चंद हिवे कर छाया, कवन मुख सूरज तपे तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहे, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे, कवन जोत जो काल संगारे, बोले बाणी नानक बिचारे, शब्द पाखत सस जोत अपारा, सस कर सूर वसे मिटे अंधे।

तत मिले मन माने, दूजा जाए इकत कार्याने, बोले पवना गगन गरजे, नानक ने चल मिलन सहजे, अंतर सुनंग बाहर सुनंग, त्रिभवन सुनंग मसुनंग, चौथे सुनने जो नर जाने, ताको पाप न पुनंग, कट कट सुन का जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ, जो जन नाम निरंजन राता, नानक सोई पुरख विदाता, सुनो सुन कहे सब कोई, अनहत सुन कहाँ ते होई, अनहत सुन रते से कैसे।

नानक पार परे सच भाए, सो शब्द का कहां वास कथि अले, जित तरिय पव जल संसारो, त्रै सत अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन आधारो, बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर अलख लखाए, सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपने मन समझाए, गुरमुख शब्दे सच निव लागे, कर नदरी मेल मिलाए, आपे दाना आपे दीना, पूरे पाग समाए, सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जय देखा तह सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला तर सोई, नदर करे शब्द कट में वसे, विच्चों परम गवाए, तन मन निर्मल निर्मल

मन पाए, आपे आप खाए ता निर्मल होवे, तावत वर्ज रहाए, क्यों मूल पछाणे आत्म जाने, क्यों सस कर सूर समावे, गुरुमुख हो मैं विच्चों खोवे, तो नानक सहज समावे।

तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचे रह समाए नामे नाम रह बैरागी साच रखिया उधारे नानक बिन नावे जोग कदे न होवे देखो हृदय बिचारे गुरमुख साच शब्द बिचारे कोए गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन पीजे विरला बूजे कोए गुरमुख निज कर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणे गुरमुख नानक एको जाने बिन सतगुर सेवे जोग न होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न कोई।

कीजा। परम पुलाई सब जग फिरी, फावी होई पाल, तो सब सांत ना दे रही, क्या चले तिस नाल। गुर प्रसादी हर त्याय, अंतर रखिए उधार, नानक कर

ऊपर जम डंड है दूजे पाए पत खोए, हर नाम कदे ना चेत्यो फिर आवन जाना होए। गुर प्रसादी हर मन वसे जम डंड ना लागे कोए, नानक सहजे मिल रहे कर्म प्राप्त होए। पौड़ी इक अपनी शक्ति लायन दे सतगुर मत्ती, इक नानो नाउ बख्शियोन अस्थिर हर शक्ति। पौन पानी बैसंतरो हुकुम करे पगती, इनानो पौ अगला पूरी बनत बनती। सब इको हुकुम वर्तदा मने सुख पाई। श्लोक कबीर कसौटी राम की चूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। महला तीजा क्यों कर इहो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानई हों मैं छड़े न कोए, गुर प्रसादी हों मैं चुटे जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिले तिस बिघन ना लागे कोई। महला तीजा जीवत मरना सबको कहे जीवन मुक्त क्यों होए। पैसा संजम जे करे दारू पाव लाए, अंदिन गुण गावे सुख सहजे बिख पाव जल नाम करे। नानक गुरमुख पाईए जाको नदर करे पौड़ी, दूजा पाव रचायन त्रै गुण वरतारा। ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा।

इसका पूजन नानका विरला पाए कोई महला तीजा। अभ्यागत ए नाथियन जे पर कर पूजन करे उदरे कारण अपने बहले पेख करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सो अपना निज कर रहन करेन। पौड़ी अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तखत सच्चा।

सच्चा सब समाए पौड़ी। आप अलिपत सदा रहे होर तंदे सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याय गुरमुख सुख पावे, निज कर वासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर सब।

मिले वडाई, जिस कट पीतर सब दरवे, सब कट मेरे हो सब ना अंदर, जिसे खुआई तिस कौन कहे, जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे फुलावे कौन, जिसे फुलाई पंध सिर तिसे दिखावे कौन, मेला पहला सो गिर ही जो निग्रह करे, जब तब संजम पीछा करे, पुन दान का करे शरीर, सो गिर ही गंगा का नीर, बोले ईश्वर सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप, मेला पहला सो अवधूती जो तू कह आप, पिख्या भोजन करे संताप, औ हठ पट्टन में पीख्या करे, सो अवधूती शिवपुर चढ़े, बोले गोरख सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप, मेला पहला सो उदासी जे पाले उदास, अर्ध

हर जाता। मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम सचाता। बाहर मूल न खोजिए कर्माए विदाता। मन मुख हर मंदिर की सार न जाननी। तिन्नी जन्म गवाता सब में एक वरदा।

था कडवही तलबा फौसन आकिया बाकी जिना रही अजराइल से रस्ता होशी आए तई आवन जान नस जई पीड़ी गली फई कूड़ निकुटे नानका ओड़ सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रव रहा सब आपे हर की कीमत ना पवे किस कह न जापे गुर प्रसादी सलाही है हर पगति रापे सब मन तन हरिया होया अहंकार गवापे सब किच हर का खेल है गुरमुख किस

जा जप तप सब किच मन्ने अवर कारा सब बाद नानक मन्या मन्निए बुझिया गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुर मेल करते लिख पाया तब मैं गुप्त वर्त दा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उचरे गुण माए समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किच आपे आप।

पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जाए। वज्र कपाट ना खुलने गुर शब्द खुली जाए। अनहद वाजे तुन वज दे गुर शब्द सुनी जाए। तित कट अंतर चानना कर भगत मिली जाए। सब में एक वर्त दा जिन आपे रचन रचाई। श्लोक महला दूजा अंधे कह राहे दसे अंधा होए सुजाए। होए सुजा था नानका सो क्यों उजड़ पाए। अंधे एना आखियन जिन

कोय, जिथे सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने, नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा। सो क्यों अंधा आखिए जे हुक्म अंधा होए, नानक हुक्म ना बुझे अंधा कहिए सोए। पौड़ी काया अंदर गरकोट है सब दिसंतर देसा, आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा, आपे श्रेष्ठ साजियन आप गुप्त रखेसा, गुर सेवा ते जानिया सच प्रतिये सा, सब किस

सगल विजोग पौड़ी मन मुख मोह गुबार है दूजे पाए बोले दूजे पाए सदा दुख है नित नीर विरोले गुरमुख नाम ते आई है मच तप कढोले अंतर प्रगास कट चानना हर लब्दा तोले आपके परम पुलाइंदा किसके न जाई श्लोक महला दूजा नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है जल में जंत उपायन तिना बेरोजी दे ओथे हट ना चल रही।

नानक चिंता मत करो, चिंता किस ही है। मेला पहला नानक इहो जियो मछली चीवर कृष्णा काल, मनुआ अंध न चेत पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है,

मत्सिर आवे पार पौड़ी। सो सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले, सच त्यायन से सच्चे जिन हर फर्ज तम पल्ले। भगत सोन गुण गाउं दे गुरमत अचले, रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पल्ले। आपे मेल मिला।

सोई सेवी है सदा सदा जो दे। नानक सोई सेवी है जित सेवी है दुख जाए। अब गुण वंजन गुण रवे हैं, मन सुख वस आए पौड़ी। आपे आप

सतगुरु संत मिलाया, मस्तक पर के हाथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया, जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया, पाया तुर संजो।

मन तन हुए निहाल बिंदक नजर चाक नौ निध नाम निधान गुर के शब्द लाग तिसे मिले संत खाक मस्तक जिसे पाग। श्लोक महला पंजवा हरनाथी को सच वैन सुनाई जो तो

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जाने, जिस तू आवे चित बहुता तिस्ताने, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

भावे, अंदर मैल ना उतरे हो मैं, फिर आवे जावे, नींद व्या प्या काम संता प्या, मुखो हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता।

ना पौड़ी। जिस कै मस्तक कर्म हुए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंगिन जागा। लगा रंग चरणार बिंद,

पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई। दागे हुए सुरन में जूझे, बिन दागे पग जा

जी मुखभेद गायत्री निपसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे। जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे। काहे मेरे बामन हर ना कहे राम न बोले पांडे दोजक परे। रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हठ कर्म कर उदर परे। चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे। तू ब्राह्मण मैं काशी जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने। हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे।

बारे ले उधरिया सोने मजे पवन चकोरिया आकाशे फर फरिया सहज सुन एक बिरवा उपजिया करती जलहर सोखिया

रह निरालम तारी, कहत कबीर सुनो रे संतो, कर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सृजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया, पवन निज तरन तारन चिंता मन, एक निमख ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी।

आवागमन होत है फुन फुन एह प्रसंग न टूटे। जिह कर कथा होत हर संतन एक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा।

जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे बहु।

अंदर सोवे पटंबर तान सेज सुखाली बिरसै जियो सो सिमरन तू अंगन पियो जे सिमरन तेरी जाए बलाए जे सिमरन तुझको है नमाए सिमर सिमर हर हर मन गाये यो सिमरन सतगुर ते पाये सदा सदा सिमर दिन रात।

सोची अंतर करे अपसार रहाओ। हीरा देख हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजन अलेख। दुनिया हुशियार बेदार, जागत मुसीयत हौ रे पाई। निगम हुशियार पहरुआ देखत जम ले जाए रहाओ। नींब पयो आंब आंब भयो, नींबा केला पाका झार। नालियेर फल सेबर पाका, मूरख मुग्ध गवार। हर भयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई। कह कबीर।

कान शास्त्र आनंद का गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बीन बजावोगो। बैरागी रामे गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओगो। रहाओ पीड़ा पिंगला और सुखमना पौने बंद रहाओगो। चंद सूरज दो समकर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देख ना जल में पैसो जी जंत ना सतावोगो।

गुर प्रसादी पाया नामा प्रणवय परम तत्व है। सतगुरु हुए लखाया राम कली कर दूजा। बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दह काया कल्प की जय। अश्वमेध जग की जय सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजे।

सार सतगुरु प्रसाद इरा पिंगुला और सुखमना तीन बसे एक ठाई बेणी संगम तह प्राग मन मज्जन करे तुथाई संतो

तहबा जे शब्द अनाहद बाणी तह चंद ना सूरज पौन ना पानी साथी जागी गुरमुख जानी उपजय ज्ञान दुर्मत चीजे अमृत रस गगनंतर बीजे इस कला जो जाने पे हो ए तैतास परम गुरुदेव दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की काटी ऊपर हाथ हाथ पर आला आले पीतर थाती जागत रहे।

मन जप अहनस नाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास खरे। रहाओ हर हर नाम जपे आराधे, सेवक पाए खरे। किल बिखे दोख गए सब नीकर, जो पानी मैल हरे। किन किन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे। पंच दोख असाद नगर में, एक खिन पल दूर करे। वड पागी हर नाम त्यावे, हर के भगत हरे। इनकी संगत देह प्रभ जाचो, मैं मूड मुगद निस्तरे। कृपा कृपा तार जग जीवन, रख ले वो सर्ण परे।

चटनी हर तारी हर किरपले रहाओ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन के बल बलले पुरखो तम हर नाम जन गायो सब दालग दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई जो देखे सस कमले उनवे कन कन कन हर गर्जे मन बिगसे मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवे देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सके गुर प्रसादी हर नाम दियायो हम सतगुरु चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशर हम पापी शरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख पंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊंच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सके जो चंदन संग बसे।

प्रभु जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभु तुम ही गुण जानो प्रभु अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने जो जल कुंचर तदुए बांधेओ हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने तुमरी खा पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभु वड ने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभधारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर

उस तब तारो हम करें प्रभु सिमरण तुम जल निध हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांचे हर

मन सेव सफल हर काल, ये गुर पग रेन रवाल, सब दालद पंज दुख दाल, हर हो नगर निहाल, राव हर का ग्रह, हर आप सवारे हो हर रंग रंग महल बेअंत लाल, लाल हर लाल, हर अपनी कृपा करी आप गृह आयो, हम हर की गुर की है बसी थी, हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल, हर आपते की खबर गुर पाई, मन तन अनदो अनद भये।

नट महला चौथा। मन मिल संत संगत शुभवंती, सुन अकथ कथा सुखवंती, सब किलबिख पाप लहंती, हर हो लिखत लिखंती रहाओ। हर कीरत कल युग विच उत्तम मत, गुरमत कथा कदंती, जिन जन सुनी मनी है जिन जन, तिस जन कह हो कुर्बानंती। हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया, तिस जन सब भूख लहंती, नानक जन हर कथा सुन तृप्ते, जप हर हर हर होवंती। नट महला चौथा, कोई आन सुनावे हर की हर गाल, तिसको हो बल बल बाल, सो हर जन है पल पाल,

अंतर कपट चुकावो मेरे गुरसुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नत नारायण मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भाव है मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू प्यावे कवन जोग कवन

जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हूँ मैं पीर रहाओ। तपत बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बार खीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विषम पे नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो हाथ पैर जन के संग बस्यो मन ते नहीं विसारियो रहाओ बरन चेन नहीं किछ पेखियो दास का कुल ना विचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवारियो महा बिखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो।

पूरन पूर रहे कृपा निध कट कट दुष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास।

हर पज जन्म पदार्थ जीत कोट पतत होए पुनीत नानक दास बल बल कीत नट

हरे रहाओ, हर हर हर हर हर मन प्यावो, मैं हर हर नाम प्यारे, दीन दयाल पय प्रभु ठाकुर, गुर के शब्द सवारे, मधुसूदन जग जीवन माधो, मेरे ठाकुर अग

सहस मूरत एको प्रभ ठाकुर प्रभ एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उर्धारे हर हर कथा बनी अत मीठी जो गूंगा गटक समारे रसना साध चखे पाए दूजे अत पीके लोग विकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अंग साध विसारे गुरमत राम नाम तन

मैं गुरमत नाम संवारे सास सास जाए ना मैं बिन सो बिरथा सास बिकारे कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरनी मोको हर जन मेल प्यारे। नानक दासन दास कहत है हम दासन के पनिहारे।

क्या बलिहारे पखंड पखंड कर कर कर में लोभ पखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सुर मारे उगवे दिन आल जाल समाले दिख माया के विस्थारे आई रैन पया सुपनंतर दिख सुपने भी दुख सारे कल्लर खेत ले।

किए कर सेवक पग लगवारे जगन्नाथ सब जंत्र उपाए नक्खीनी सब नथहारे नानक प्रभु खिंचे तिग चलिए जो पावे राम प्यारे नट महला चौथा राम हर अमृत सर नवारे सतगुरु ज्ञान मजन है नीको कीनो मिल कलमल पाप उतारे रहाओ। संगत का गुण बहुत अधिकाई परसुआ गणक उधारे परस न परस पै कुब जाको ले बैकुंठ सिधारे अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी कर नारायण बुलारे मेरे ठाकुर के मन पाए पावनी जम शंकर मार बिदारे।

किछ ना समारे। जब पर मंदर आग लगानी तब कूप कदै पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल में लाल गुलारे। जैसा रंग दिल सो होवे क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर शरण प्रभु रखवारे। जो कुंचर तदुए पकड़ चलायो कर ऊपर कर निस्तारे रहाओ। प्रभु के सेवक बहुत अपनी के मन श्रद्धा कर हर तारे। मेरे प्रभु श्रद्धा भगत मन पावे जन की पै सवारे। हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे। एक पुरुष एक नदरी आवे सब एका नदर निहारे। हर प्रभु ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारे। आप दयाल दया दान देवे बिच पाथर कीरे कारे। अंतर वास बहुत मुस्काए ब्रह्म फूला मृग सिंहारे। बन बन टूट

कहते हैं सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया फैवारे जो जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जा रे प्रभु को जन अंतर हृदय लोचे प्रभु जन के सांस निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे आपन आप आप प्रभु ठाकुर प्रभु आपे सृष्ट सवारे जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारे नट महला चौथा राम कर कृपा लेहु उबारे ज्यो पकड़ द्रौपदी दुष्टा आनी हर हर लाज निवारे रहाओ कर कृपा

विचारे निज पर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे। तो गुण ईश बरन नहीं सातो तुम मंदर हम निकीरे नानक कृपा करो गुर मिलो मैं राम जपत मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगम अपा।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया। शरणांगति प्रभ पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो तराया। हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन।

आया हर हार हर उधारियो जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुख दाता सत्संगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पचाता रहाओ वड पागी गुरु दर्शन पाया गुरु मिले हर प्रभ जाता दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की बात।

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब तुल पाप गवाता। राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन पावनी हर त्यायो, अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो। रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो। प्रभु मस्तके तुरली किया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगे बाजया, हर मिलियो मंगल गायो। पतित पावन नाम नर हर, मंद पागिया नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालियें, जो लोन जलें गलायो। मत दे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नामे रहो लागो, जन नानक नाम समायो। माली गौड़ा महला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगाश कया गुरु पाया, हर जप्यो प्रमतो पागा। रहो कह पाए भगत लागो, मेरा हीरा मन सोयो गुरमत जागा, किलबित खीन पय शांति आई, हर उर्धारयो वड पागा। मन मुख रंग कसुंभ है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए पर पापे, दंड धर्म राय का लागा। सत संगत प्रीत साध अत गूरी, जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे, हर रंग ना लहे सवागा, हर चारे ओ रंग मिले गुर शोभा।

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नाम है, मत गुरु मत राम रसाला रहाओ। गुरु मत नाम के आई है हर हर, मन जपिए हर जप माला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला। जिन हर नाम ते आया तिन चूके सर्व जंजाला, तिन जम नेड़ ना आवई गुरु राखे हर रखवाला। हम बार किछु ना जान हूं हर मात पिता प्रपाला, कर माया अगन नित मेलते गुरु राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किल विख हर जस जाला, मन अनंद भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किल विख काट, हर हर उतारे हो गुरपुर है मेरा शीश की जय गुरवाट। राव मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावे, तिस मन देवो कटकाट। हर साजन मेलियो गुरपुर है गुर बचन बिकानो हट हाट। मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अध काट, बिन हर नाम को मुक्त न पावे बहु कंचन दी जय कटकाट। हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर परम पव पागा लज पानी मटकी माट। कल युग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट, जन नानक रस अमृत पिया सब लाथी पूख तिखाट। छक्का पैरा माली गौड़ा में।

अवर टहला चूठिया नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तज हो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होवना सो होया को न मिटनहार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार।

नमस्कार जास जपत होवत उधार रहाओ जा कै सिमरन मिटे तंद जा कै सिमरन छूटे बंद जा कै सिमरन मूरख चतुर जा कै सिमरन कुल्हे उदर जा कै सिमरन पौ दुख हरै जा कै सिमरन अपदा टरै जा कै सिमरन मुच्चत।

साध संगत पज पूरन काम रहाओ बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत।

जैसे पालन सरन सेंग, गरुड़ मुख नहीं सर्प त्रास, सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास, जैसो आंडो हृदय माहे, जैसो दानो चक्की दराहे, बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाध तुही, ऊंचो मूचो बहु अपार, सिमरत नानक परे।

नैन दर्श पेखो निस्पोर, हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल, संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत, संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिकसे संत डीठ, संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास, संत बचन मेरे मने मंत, संत प्रसाद मेरे

करण करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे। जा के कर सगले समाहे, जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे तत्पाल, सदा सदा सेवो कृपाल। सदा कर्म जा के दीबान, बे मोहताज नहीं किछ कान। सब किछ करना अपन आप, रे मन मेरे तू ताको जाप। साध संगत को हों बलिहार, जास मिल हो वै उधार। नाम संग मन तन्हे रात, नानक को प्रभ करी दात। माली गौरा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी। प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल। रव रया सर्वत ठाए, सुख मो अस्थूल। आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो

माली गौड़ा महला पंजवा। प्रब समरथ देव अपार, कौन जाने चलत तेरे किछ अंत नाही पार रहाओ। इक खिने थाप उथापदा, कर पन करने हार।

बाप मादो तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत

अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसारे। प्रणवे नामा पहने कामा को ठाकुर को दासारे। राग मारू मैला पहला कर पहला चौप दे।

नानक शरण तुहारिया देखो सदा हजूर शब्द पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

दुख पर फुड़े पूरब लिखे माए, सुख थोड़े दुख अगले दुखे दुख विहाए। विछड़िया का क्या विछड़े, मिलिया का क्या मेल, साहिब सो साला ही है जिन कर देख्या खेल। संजोगी मेलावड़ा इत तन कीते भोग, विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग। मारू मैला पैला मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करते लेख लिखाया। लिख दात जोत वड़े आई, मिल माया सुरत गवाई। मूर

कोई किछ खा जाए किछ तर जाए जे बाहर दुनिया आए सज काया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखाली सोवे हाथ पौंदी काहे रोवे कर कुमन वाणी पाई पाप पत्थर तरन न जाई पौ बेड़ा जियो चढ़ाऊ कहो नानक देवे काहू मारू मैला पहला कर पहला।